وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل. ولا

0: कने गलो पुराणो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमजोरी कन जो वहण कन जो सूर घट ॿुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी ख़ारिश फट फुरड़ियूं ॿारनि में कद जो न वधण मर्दनि ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-2196-851
1: माल तैयार है ट्रक खड़ा है मजदूर खड़े हैं बस एक चीज का इंतजार है पेमेंट कारोबार चलाने के लिए सिर्फ सामान नहीं रिलायबल बैंकिंग भी चाहिए होती है बिजनेस करना आसान नहीं लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए इसलिए मेरे पास है बैंक अलहबीब का अलहबीब करंट अकाउंट जिसमें मिले फ्री चेकबुक डेबिट कार्ड बैंकर्स चेक ई स्टेटमेंट ऑनलाइन बैंकिंग अलहबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट फैसिलिटी ATM और कैश डिपॉजिट मशीन की इजी एक्सेसिबिलिटी मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क अलहबीब करंट प्लस अकाउंट भरोसा भी रफ्तार भी बैंक अलहबीब रिश्ता भरोसे का
2: अस्सलाम वालेकुम अदा
3: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
2: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
3: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
2: न अदा
4: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे
2: मुझे दुकान जी बेड हलंदी
3: हां दा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी
2: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
4: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर
3: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
5: 03013992836
6: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है सुनते रहो जी FM 94

प्रोग्राम रोशन सुबह में सभी लिसनर्स के दिल जी गेरन से घर बिहार पे प्रोग्राम में भलीकार चमा दी प्रोग्राम रोशन सुबह में शामिल थे जो तमाम घो आसानी सोलो तरीको है मां पे हम तमा के बुधा चुकी मैं दफरी हम बुधाई दला थी नोट कयो पेंजे गोट या पेंजे शहर नाले लिखित पले बनते सेंड कयो यानी 8881 ते मोकलियो तलिसन असन यालो ता मैसेज इन तरफ जेके सा मैसेज पैनल ते मौजूद अन ता मैसेज लिखी पेसी पेरो जे प्रोग्राम में शामिल कना लंदा सी आफ्ताब बलोच जन असा के मैसेज क्यों लिखन ता ता लेला में आफ्ताब बलोच हूं सरसो बैंक से इन चवंदा क्या हाल है कैसी हो आप जी अलहमदुल्ला आफ्ताब आऊं ठीक आया आई तवा की आयो आफ्ताब बलोच जन असा जा सीनियर जेके सर भी आए ना असा सा गजी उनन ड्यूटी भी कई आ आई असा सा उनन सुठो वक्त गुजारे तमाम घणा सुठा मतलब मानु आइन जन असा की मैसेज कियो चवंदा त उम्मीद है आप ठीक होगी और खुश होगी और हमें यारी आपको दुआ है कि आप बैंक के बाद भी इतनी तरक्की कर गई और हमें बहुत खुशी हुई है जी मेहरबानी सर मेहरबानी अलहमदुल्ला अल्लाह कंदो तमाम जिते बंदो खुश हुंदो या आबाद हुंदो अल्लाह ताला तमा के तरक्की दींदो जन फरमाइश के याद असा के कें भी मतलब जो सिंगर जी सॉन्ग बुधरा मतलब उन डेडिकेट किया सर वजीर अली के मुखे मतलब चवंदा डेडिकेट आपको और सर वजीर को जी मेहरबानी सर आफ्ताब तवाजी तमाम घनी मेहरबानी जो तमा सनी प्रोग्राम के बुधो पियो आई असन प्रोग्राम के लाइक पिया कयो तमाम घनी तवाजी मेहरबानी विलेज हाजी अब्दुल गफूर बुगियो खान जन मैसेज आयो है मंजूर अहमद बुगियो जो जन चवंदा अस्सलाम वालेकुम बाजी जी वालेकुम सलाम अब्दुल गफूर की आयो भाव उम्मीद है तुम ठीक होंदो आई खुश होंदो आई तवा के आऊं पने प्रोग्राम रोशन सुबह में भलीकार चवा थी जन असा के फरमाइश कई आए ते हमें मुमताज लाशरी का सॉन्ग सुनवाओ जी जी इंशाल्लाह कोशिश किया थी जे कडे असन जी लाइब्रेरी में मौजूद होंदो मुमताज लाशरी जो सॉन्ग ताऊं जरूर तमा के बधराइंदम एरिकेशन रोड का मोरो का जन असा के मैसेज कियो है फकीर रियाज कीरियो आई शोना कीरियो जन चवंदा अस्सलाम वालेकुम बाजी जी वालेकुम सलाम की आयो रियाज आई शोना आई तमाम जिन के आऊं प्रोग्राम में भलीकार चवा दी जन फरमाइश के आया में सॉन्ग सुनवाओ दिल वरी प्यार में फाती आ दिल ता घड़ी घड़ी वासंदी आ बाबा वा किथा मणंदी दिल ते सफा नंडड़ी शे आ वा तो बार वांगुर होंदी आ ने केड़ी खबर ते सही है गलत आ जन चवंदा त फैजा अली का हमें सॉन्ग सुनवाओ और डेडिकेट हम करते हमीदा अच्छा हमदान को

0: அதாவது என்ன சார், மெசேஜ் வலைக்கணும் பண்ணி நாலோ நான் லிக்கோ நினைச்சு வாத சலாம் பென் லேலா ஜி வலைக்கம் சலாம் அதா கி ஆயோ பா ஜன் சவந்தாத அபி அபி ஆக குலி ஓர் எஃப் எம் ஆன் கியா தோ ஆப்கி மீட்டி மீட்டி ஆவாஸ் ஹமாரே கானோ மே கூஞ்ச உட்டி شکر الحمدللہ تواں دے کنن تے مجھے آواز پہ تواں نندر ماتو تو بھلا چوندا ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے اور ہم آپ کا پروگرام بھی بہت شوق سے سنتے ہیں جی مہربانی جو تواں سنجے پروگرام کیترو تمام گھنو شوق سا بدھا دا ائی نندر ما اوتھے یوتی جی تواں پجو فہمان کے تواں دے کنن تے مجھے آواز پہ ائی تواں مجھے آواز کی ائی مجھے پروگرام کے لائک پہ کرو تواں جی تمام گھنی مہربانی अच्छा जी उन्होंने दोबारा मैसेज किया था मुझे नालो राशिद बिरोई आए जी राशिद तवाजी मेहरबानी भा जन फरमाइश कही था हमें सॉन्ग सुनवाओ अच्छा फरजाना बहार जी आवाज में जन बोल क्या इनते लगी तो प्यार जी का बिल मतलब अदा जन के पेंजो में वो बजरात निंड में आयो उन्हें मतलब ख्वाब में डिठो है ना जे करे जी सॉन्ग जी फरमाइश किन तो लगी तो प्यार जे काबिल मतलब उन्हें के निंड में जो महबूब आन वो प्यार जे काबिल नजर आयो इन जे करी अदारन या फरमाइश कई है तलिसन से हेलो ता शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक जी तरफ ब्रेक आ मत सब लिसनर सा हूं गजी नम सागे प्रोग्राम रोशन सुबह में तेसी तई बदन रहो जी एफएम नेटवर्क
1: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चुपर एटमाट आईमा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कल रेट ते दस्तियाब है सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी है होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिन्हें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट आरपीएम जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वने थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जेर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राप्ती जिलाए आसिम हुसैन आराई 0307-3592120
2: जहां उम्मीद के दिए जलते हैं
3: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर शानदार तालीमी इमारत प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन एयर कंडीशन एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला सरसब्ज बागीचा बेहतरीन फर्नीचर शानदार कंप्यूटर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जा एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिल तहसीन नतायज खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले स्टडी टूर्स अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम तरबियत के लिए आज ही मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें مزید رابطے کے لیے ڈاکٹر الطاف حسین میمن مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم 03000027234 نثار احمد میمن پرنسپل مظہر اسکول سسٹم مہراپور 03013865453
4: खुशखबरी जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वदन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेहरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम पी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर

0: मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वजन जो न वधण उन्हें सभी बीमारियों जो कामयाब इलाज कयो वने तो राबते लाए 0301-9196-851।
1: खूबसूरती जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम इन में मौजूद विटामिन ई बीड्स ए जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी ए चमकदार सिर्फ बिन दीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म ए दिए कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर दिन जो शो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
2: मेहरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड
3: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तयाब आई
2: हाँ अचो मेहरान आयरन स्टोर नज बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी
3: राबते लाए प्रोपराइटर गुलाम नबी मुगल 03003204372 0242460100।
4: रेस्टोरेंट बिजनेस में हर सेकंड मैटर करता है कस्टमर्स क्वालिटी के साथ डिस्काउंट्स भी चाहते हैं बिजनेस करना आसान नहीं लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए इसीलिए मेरे पास है बैंक अल हबीब का अल हबीब करंट प्लस अकाउंट जिसमें मिले फ्री चेकबुक डेबिट कार्ड बैंकर्स चेक ई स्टेटमेंट ऑनलाइन बैंकिंग अल हबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट्स फैसिलिटी ATMs एंड कैश डिपॉजिट मशीन्स की इजी एक्सेसिबिलिटी मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क अल हबीब करंट प्लस अकाउंट भरोसा भी रफ्तार भी बैंक अल हबीब रिश्ता भरोसे का
5: शादी का इवेंट और स्टेज आधा तैयार क्यों क्योंकि वेंडर्स को चाहिए फौरी पेमेंट इवेंट प्लानिंग हो या कोई और बिजनेस पेमेंट रुक जाए तो काम भी रुक जाता है बिजनेस करना आसान नहीं लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए इसलिए मेरे पास है बैंक अल हबीब का अल हबीब करंट अकाउंट जिसमें मिले फ्री चेकबुक डेबिट कार्ड बैंकर्स चेक ई स्टेटमेंट ऑनलाइन बैंकिंग अल हबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट फैसिलिटी ATM और कैश डिपॉजिट मशीन की इजी एक्सेसिबिलिटी मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क अल हबीब करंट प्लस अकाउंट भरोसा भी रफ्तार भी बैंक अल हबीब रिश्ता भरोसे का
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
6: अस्सलाम वालेकुम अदा
7: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
6: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
7: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
6: न अदा
8: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे
6: मुझे दुकान जी बेड हरंदी
7: हां दा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी
6: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
8: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर
7: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
9: 03013992836
10: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है सुनते रहो GFM 94

अल्लाह अल्लाह, दिल भरी प्यार में फादिया। उम्मीद तो मां सब लिसनर्स के तमाम घणो प्यारो सॉन्ग लगो हों दो। तो लिसनर्स तमाम बुधी रहे हो GFM नेटवर्क प्रोग्राम रोशन सुबह में भली का।

नथी बेदर्द छॾ जोड़ो जफ़ा खे, नथी बेदर्द छॾ जोड़ो जफ़ा खे, हली आ हिकु दफ़ो मञ तू खुदा खे। जुदा तो कीअं कयो केॾो सब्र मूं, जुदा तो थे कयो केॾो सब्र मूं, मिठा मञणो पियो तुंहिंजी रज़ा खे। हुसन तोखे ॾिनो आ पाक परवर, विसारींदो न कर रब जी अता खे। हज़ारे ॾोह थींदा माफ़ आहिनि, खणी को दर गुज़र मुंहिंजी खता खे। जोखियो पांधिन चवे न जी हाण ईंदी, न ॾिसंदे दाद मां तुंहिंजी सखा खे। नथी बेदर्द छॾ जोड़ो जफ़ा खे, हली आ हिकु दफ़ो मञ तूं खुदा खे।

दिल लॻी कंहिं सां कजे तोखां सवाइ, वाकई हक़ीक़त आहे महबूब खां सवाइ त ॿिए कंहिं सां दिलि लॻी नथी थी सघे न, हिकिड़ो ई आशिक़ हूंदो, हिकिड़ो ई महबूब हूंदो, हिकिड़ो ई ख़ुदा हूंदो आहे न. त वाकई बि मतिलबु हज़ारे सुहिणा हुजनि, हज़ारे हसीन हुजनि, जंहिंसां दिलि लॻी त पोइ बाबा ॿिए कंहिंसां त नथी लॻी सघे न. पोइ भले कारो हुजे, कोजो हुजे, पोड़ो हुजे, खणी कीअं बि हुजे, बसि दिलि हिकु सां ई लॻी वेंदी आहे न. तव्हां ॿुधायो भला तव्हां कंहिंसां प्यार मोहबत कई आहे या न? ऐं तव्हां ॿुधी रहिया GFM नेटवर्क. ऐं असां सां समीर स्टेशन बि मौजूदु आहिनि. प्रोग्राम रोशन सुभा तव्हां ॿुधी सघो था सिर्फ़ ऐं सिर्फ़ खमीस अंगार अंगार ऐं खमीस ऐं छंछर जे ॾींहुं, यानी हफ़्ते में टे ॾींहं. प्रोग्राम रोशन सुभा तव्हांजी ख़िदमत में पेश कयो पियो वञे मोरो जी लाइव स्टूडियो मां. प्रोग्राम रोशन सुभा में शामिल थियण जो तमामु घणो ऐं आसानी सवलो तरीक़ो आहे. मां पहिरियों तव्हांखे ॿुधाए चुकी आहियां, हिकु दफ़ो वरी तव्हांखे ॿुधाईंदी हलां थी. नोट कयो, पंहिंजो मोबाइल खणो, राइट मैसेज वारे ऑप्शन वञो, MR लिखो, स्पेस ॾियो, कंहिं बि सॉन्ग फरमाइश कयो या कंहिंजे नाले डेडिकेट कयो, पंहिंजे घोटु या पंहिंजे शहर नाले लिखी त प्लेट 1 ते सेंड कयो, यानी 8881 ते मोकिलियो. त ॾिसी असां हींअर वक़्त बि पंहिंजी पुॼाणी ते पहुची वियो आहे. ऐं जेके असांजे मैसेज पैनल ते मौजूदु आहिनि, तनि मैसेजनि खे बि असीं पंहिंजे प्रोग्राम में वेंदे वेंदे शामिलु कंदा वञूं था. जन असांखे मैसेज कयो आहे अब्दुल हकीम सोलंगी, हाफिज़ ख़ान, मोहम्मद सैद, अदीलेला केसी हो जी, अलहमदिल्ला आऊं ठीकु आहियां, तव्हां कीअं आहियो? ऐं अब्दुल हकीम जन असांजा उस्ताद जन बि आहिनि मुंहिंजा. जन लिखनि था त आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे. जी आमीन आमीन. तव्हां उस्तादनि जी दुआयूं ते त ज़ाहिर सी ॻाल्हि, असां आबाद ऐं ख़ुशि हूंदासीं. अली नवाज़ उर्पर खां जन असांखे मैसेज कयो आहे, हींअर वेंदे वेंदे मतिलबु आख़िरी टाइम ते असांखे हींअर मैसेज कया आहिनि, शायदि सुता पिया हलाए छा निंड अची वई हुननि खे, हुनखे यादि न हो त अॼु मुंहिंजो प्रोग्राम आहे. जन असांखे मैसेज कयो आहे त अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम सलाम अली नवाज़, कीअं आहे बाबा, किथे हो तव्हां हींअर ताईं? सुबुह खां तव्हांजो इंतज़ारु हुयो, लेकिन तव्हां त मैसेज ई कोन कयो. जन चवंदा लैला जी, नशा तो हम भी करते हैं, नशा लोग भी करते हैं, पर फ़र्क़ इतना है उनमें और मुझमें, लोग शराब पीते हैं और हम मोहब्बत करते हैं. वाह वाह, नूरपुर वारा री कॾहिं खां मोहब्बत करण सिखन. अली नवाज़ जन असांखे मैसेज कयो, लैला जी आप जो मतिलबु आपका जो प्रोग्राम बहुत अच्छा है और आप लाजवाब और आपका जो आप गुल गुलाब, मतलब आपका प्रोग्राम भी बहुत अच्छा है. बिल्कुल खास से हमें मैसेज है अब्दुल्ला उमर, अस्सलाम वालेकुम. जन चवन था जी वालेकुम सलाम अब्दुल्ला उमर, की है तमाम चवंदा लैला जी, आपका शो बहुत नाइस है और हम आपका शो बहुत शौक से सुनते हैं, शो मेरस भी आपका शो इंजॉय करें. जी मेहरबानी तव्हांजी, जो तव्हां असांजे प्रोग्राम खे एतिरो लाइक पिया कयो, इंजॉय पिया कयो, तव्हांजी तमामु घणी महिरबानी. फ्रॉम थरी स्टॉप से हसीब रहमान जन असांखे मैसेज कयो आहे त सलाम वाजी. जी वालेकुम सलाम हसीब रहमान, कीअं आहियो बाबा? जन लिखंदा था सॉन्ग भाई शमन अली मीराली का प्लीज प्ले. जन मैसेज कयो आहे हिकिड़नि मतिलबु ॾिसण नालो पंहिंजो नए ॿुधाए चवंदा त मैडम लैला जी आप शो कब करती हैं? जी मुंहिंजो शो बिल्कुलु मतिलबु अंगारे खमीस ऐं छंछर जे ॾींहुं हूंदो आहे, मतिलबु हफ़्ते जा टे ॾींहं. गुलाब लगारी से शेर गाज़ी ख़ान रिंद जन असांखे मैसेज कयो आहे त फैज़ान अली रिंद हम आपका सॉन्ग सुन रहे हैं, मतिलबु प्रोग्राम सुन रहे हैं. तव्हांजी तमामु घणी महिरबानी सभिनी ॾिसण जो, तव्हां पंहिंजो ख़ासि टाइम कढी असांजो प्रोग्राम पिया ॿुधो ऐं प्रोग्राम रोशन सुबुह में भलीकार सभिनी लिसनर्स खे चवां थी. गुलाब लेखारी जन असांखे चयो आहे त असांखे फौज़िया जन जो सॉन्ग ॿुधायो. त ॾिसण असां वक़्तु पंहिंजी पुॼाणी ते पहुची वियो आहे, हींअर मूंखे ॾींदा इजाज़त त पंहिंजो ख़्यालु रखिजो तमामु घणो ऐं हमेशह ख़ुशि हुजो, आबाद हुजो. वरी परीहं तव्हां सां नेक्स्ट मतिलबु प्रोग्राम में या तव्हां सां मुखातिबु हूंदमि, तेसीं ताईं पंहिंजो ख़्यालु रखिजो, ख़ुशि हुजो ऐं आबाद हुजो. अलाए निगेबान अलाही यालीमत ऐं वेंदे वेंदे सॉन्ग मां तव्हां सभिनी ॾिसण जे नओं कंदी वञा थी.

0: FM 88 Network, Sindh ki Awaaz.
1: KTN News.

ॿिए ते ॿीहर ड्रोन, बैलिस्टिक मिसाइलनि ऐं जंगी जहाज़नि सां हमला, हिक ॿिए ते अगराई जा इल्ज़ाम। अमरीकी सेंटकॉम चयो आहे त ईरानी ड्रोन हमलनि जे जवाब में कशम ऐं गोरख में ईरानी रेडार ऐं फौजी ठिकाणनि खे निशानो बणायो वियो। ईरान पारां नार तरफ़ इतिहादी मुल्कनि ॾांहुं फायर कयल केतिरनि ई बैलिस्टिक मिसाइलनि खे इंट्रस्ट कयो वियो। पाकिस्तानी इनकलाब पारां कुवैत तहरीर में अमरीकी अॾनि खे निशानो बणाइण जी दावा कई वई। पाकिस्तानी इनकलाब चयो आहे त अमरीका पारां आबनाए हुर्मुज़ मां चार तेल बरदार जहाज गुज़रण जी कोशिश जे रदे अमल में कार्रवाई कई। हिकु बहरी जहाज खे निशानो बणाए रोके वरितो, ॿिया जहाज वापसि हलिया विया। अमरीकी कार्रवाई जे जवाब में कुवैत में ॿ अमरीकी फ़ौजी अॾनि ऐं बहरीन में अमरीकी नेवी जे जहाज खे निशानो बणायो वियो। ईरानी ताक़तवर ऐं गैरतमंद आहिनि, तंहिं करे हुननि खे डील करणु ॾुखी लॻी रही आहे। उहो सबबु आहे जो ईरान सां जंगबंदी मुआदे ते अञा ताईं इतफ़ाक़ नाहे थी सघियो। अमरीकी टीवी खे इंटरव्यू ॾींदे सदर ट्रंप चयो त ईरान वटि मुआदे खां सवाइ ॿियो को दगु नाहे। ईरान सही रस्ते ते न आयो त असां उहे क़दम खणण ते मजबूर थींदासीं जंहिंजो हिन कॾहिं तस्वुरु ई न कयो हो। जंग जे हल में वक़्तु लॻंदो।

कम जल्दी में न थींदा आहिनि। ईरान वटि सिर्फ़ 21.22 सैकड़ो मिज़ाइल बचा आहिनि। ईरान में असांखे कामयाबियूं मिलियूं आहिनि। आपना हुरबस मां काफ़ी आयल टैंकर गुज़री विया आहिनि। फ़िलहाल अंग ॿुधाइण नथो चाहियां। सूरत हाल मामूल ते अचण बाद तेल जूं क़ीमतूं घटिजी वेंदियूं।

ईरानी पंडित वजीर अब्बास इराकजी चवा तो सुप्रीम लीडर मुश्तबा खमदाई और ट्रंप विच में मुलाकात वाली खबरू हकीकत पसंद ना है। ट्रंप हकीकी दुनिया में नहीं रहा है। सऊदी अरब खिते जो वो मुल्क अहम रांदीगर है। ईरान और सऊदी अरब गड़ी खिते में अमुन तरक्की आने सकन था। ईरान हमेशा सऊदी अरब से लागापन की अहमियत दीनों है। इसराइल के पंजा जहाज जैसे हमलों कर सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खमदाई से गड आऊं उत ऑफिस में मौजूद हुस मुख्य मलबे में बाहर कड़ो पे हो।

पेट्रोलियम शयुनि जे अघनि में हिकु भेरो ॿीहर मामूली लाभ। पेट्रोल 4 रुपया फी लीटर सस्तो। डीज़ल जूं क़ीमतूं बरक़रार रखियूं वयूं। पेट्रोल जी नई क़ीमत 377 रुपया 78 पैसा फी लीटर मुक़रर। डीज़ल जो अघु फी लीटर 380 रुपया 78 पैसा बरक़रार। पेट्रोलियम शयुनि जा नवां अघु लागू थी विया। नोटिफिकेशन जारी।

0: रोड़ीअ वेझो नौजवान औरतकारी इल्ज़ाम हेठ गोली वणी कतल। घोट जागिराणी में 25 साला साबरा जागिराणी के जवाबदार ॾेर साहिब जागिराणी फायरिंग करे कतल कयो। वाक़े खां पोइ जवाबदार फरार थी पियो। मटियारी भरिसां मुबैना पुलिस मुक़ाबले में मारिजियल नौजवान जो लाश वारसन हवाले। वारसन लाश क़ौमी शाहराह ते रखी धरणो हयो। ट्रैफिक मुअतल। वारसन चयो त नौजवान इमरान माची खे निंड में गोरियूं हणी क़तल कयो वियो आहे। पुराणी दुश्मनी सां नौजवान खे क़तल कयो वियो। ज़री ज़मीन मासरस लाश मिलियो। पुलिस कर्मी जो नोटिस वठी इंसाफ़ कयो वञे।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर। होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर। नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिं में मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPMG एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर। राब्ते जे लाइ 0320180003।
3: मेहरान आयरन स्टोर हालाणी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
4: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंग सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारियर दस्तयाब आई।
3: हाँ अचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालाणी।
4: राब्ते लाए प्रोपराइटर गुलाम नबी मुगल 0300420437202 0242460100।
5: खुशखबरी खुशखबरी हाँ अवां जे पांजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन आई नहन एलर्जी कॉस्मेटिक आई वचड़ंदड़ बीमारियों जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोजानो शाम जो असर नमाज खां इशा जे नमाज ताईं आई हर आचर ते सुबुह जो 9 वगे खां रात 8 वगे ताईं मरीजन जो इलाज कंदा आहिनि। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर। वधीक राब्ते जे लाइ 0385569 0300338 5569।
6: अस्सलाम वालेकुम अदा।
7: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
6: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे?
7: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
6: न अदा?
3: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
6: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
7: हां अदा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
6: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
3: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज़्द गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालाणी रोड मेरापुर।
7: राब्ते लाए हाकिम अली जिसकाणी
8: 0301399283 6।
9: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो GFM 94।

0: पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वजन जो न वधण उन्हें सभिनी बीमारियुन जो कामयाब इलाज कयो वने तो राबते लाइ 0301-9196-851।
1: अस्सलाम वालेकुम अदा।
2: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
1: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
2: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
1: न अदा?
3: यार आजी कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो। मो पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई, कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
1: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
2: हां दा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
1: अदा जल्दी कर, मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
3: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर।
2: राबते लाए हाकिम अली जिस्कानी
4: 0301-399-2836।
5: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है, सुनते रहो जी FM 94।

0: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चोपर एटमाट आईमा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कल रेट ते दस्तियाब है सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी है होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिन्हें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जेर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राप्ती जिलाए आसिम हुसैन आराई 0307-359-2120
1: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम

0: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ जिसके मिनरल्स स्किन में फॉली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा, कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
2: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज GFM 94।

ईरानी ताकतवर ऐं गैरतमंद आहिनि, तंहिं करे उन्हनि खे डील करण ॾुखी लॻी रही आहे। उहो सबबु आहे जो ईरान सां जंगबंदी मुआदे ते अञा ताईं इतफ़ाक़ नाहे थी सघियो। अमरीकी टीवी खे इंटरव्यू ॾींदे सदर ट्रंप चयो आहे, ईरान वटि मुआदे खां सवाइ ॿियो को दग न आहे। ईरान सही रस्ते ते न आयो त असां उहे क़दम खणण ते मजबूर थींदासीं, जंहिंजो हिन कॾहिं तस्वुरु ई नाहे कयो। जंग जे हल में वक़्तु लॻंदो आहे, कम जल्दी में न थींदा आहिनि। ईरान वटि सिर्फ़ 21 खां 22 सैकड़ो मिज़ाइल बचा आहिनि। ईरान में असांखे कामयाबियूं मिलियूं आहिनि, अब्न हुर्मुज मां काफ़ी आयल टैंकर गुज़री विया आहिनि। फ़िलहाल अंग नथो चाहियां सूरत हाल मामूल ते अचण बाद तेल जूं क़ीमतूं घटिजी वेंदियूं।

आइनारो भरिसां ज़मीन जे मालिक तां बंबरा बिरादरी जे विंदड़ुनि में झेड़ो ॾह ॼणा ज़ख़्मी घोट गैस वाल में झेड़े दौरान लठियूं ऐं कुहाड़ियूं लॻण सबबि ॿिन्ही धुरनि जा ॾह ॼणा ज़ख़्मी थी पिया इस्पताल मुंतकिल ज़ख़्मियुनि में रफ़ीक बम रो रमज़ान हिमत नूर मोहम्मद पनाह शफ़ी मोहम्मद ज़ाकिर ऐं ॿिया शामिल।

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरा पर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरा पर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरा पर राब्ते जे लाइ 0320180003।
2: खुशखबरी हाणे अवां जे पंहिंजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन ऐं नहन एलर्जी कॉस्मेटिक ऐं वचड़ंदड़ बीमारियुनि जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोज़ानो शाम जो असुर निमाज़ खां इशा जे निमाज़ ताईं ऐं हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक नज़ रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहराबपुर। वधीक राब्ते जे लाइ 0300 3 85 569 0300 3 8 5 6 9।

0: It's 12:15 p.m.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream, Asli Glow Har Niya Josho, a product by Biocon International Pakistan.
3: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज GAFM 94।

केमिस्ट्री बिटवीन फिजिक्स पर खुसूए मेडिकल इंजीनियरिंग में काबिल तहसीन नीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले बच्चियों प्यारी तालीम सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें। मजीद राबते के लिए मजर 27 अहमद मेमन प्रिंसिपल मजर सिस्टम मेहरापुर 3 8

0: आमितला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हला
1: बुंजी एड्रेस
2: जी मेरापुर एफएम 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर
0: राबते लाए हाकिम अली जिस कहानी
3: 03013992836
4: मैं तो आवाज भी मेहरापुर की है सुनते रहो जी एफ एम 94

0: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: सिंध के माथे का झूमर
2: जीएफएम 88 नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज़।

0: समय भी आपको खेल फसल पानी
1: नगरी करण भरोसा रफ्तार पानी
2: अब आप सुनेंगे
0: सारू बेजू पोखंड लाइ परेशान गुडू बिराज जो मथां वेकरो 75,000 ऐं हेठां विकरो 54 आज़ाद क्यूसिक रिकॉर्ड सखर बिराज जो मथां वेकरो 50,000 ऐं हेठां विकरो 18 क्यूसिक थी वियो कोटी बिराज जो मथां वेकरो 11,000 क्यूसिक थी वियो डाउन स्ट्रीम में पाणी छोड़ मुकमल तौर ते बंद कयो वियो कोटी डाउन स्ट्रीम में पाणी छोड़ बंद थियण बाद दरिया में वारी उॾामण लॻी कोटी बिराज में निकिरंदड़ वाहन में बि पाणी घटिजी पियो पाणी बंद थियण बाद इंसान तोड़े जानवर पीअण जे पाणी लाइ बि परेशान छथू सिजावल बदीन टनू मोहम्मद खान में सूरत हाल संगीन हैदराबाद डिवीज़न जे ॿिन्ही ज़िलनि ऐं मीरपुर खास डिवीज़न में पाणी बहरान संगीन थी वियो पाणी न मिलण सां पोखियल फसल बि सुकण लॻा मीरपुर खास शीश हैदराबाद सखर दालखाणी डिवीज़न में बि आबादगार पाणी लाइ परेशान फैज़गंज चूर जमाली ॿिन शहरनि में आबादगारनि जा एहतजाज हुकूमत खां ज़री पाणी जी खोट ख़तम करण जो मुतालबो वफ़ाक़ी हुकूमत पारां सरकारी मुलाज़मनि जे पघारनि में 10-15% ताईं वाधि करण ते गौर नाणे वारी वज़ारत पघारनि में वाधि बाबति तजवीज़ूं वज़ीर आज़म खे मोकिले छॾियूं ज़रियुनि जो चवणु आहे त नाणे वारे वज़ीर मोहम्मद औरंगज़ेब वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ सरकारी मुलाज़मनि जे 15% ताईं वाधि करण जी तजवीज़ ॾिनी आहे वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ सरकारी मुलाज़मनि जे पघारनि में वाधि जो फ़ैसिलो इतिहादनि सां मुशावरत बाद कंदो

अमरीका जा ईरान ते नवा हमला ईरान जो भी अमरीकी अड्डन ते जवाबी वार अमरीकी फौज ईरान के इलाके गौर कें बेच कैशियम के मिजाइल जरिए निशानो बढ़ाया अमरीकी सेनका मूजिब अमरीकी फौज ईरान के छह मिजाइलन के रोको सतों हदफ तक पहुंचने में नाकाम रहो चार ईरानी ड्रोन्स के बाबन हुरमस में तबाह किया ईरान के पाकिस्तान इनकलाब अमरीकी हमलों के जवाब में कुवैत में अमरीकी के बिन फौजी अड्डन अमरीकी बेरिया के पंजन बेड़न के निशानो बनाया वो है।

ईरानी ताक़तवर ऐं गैरतमंद आहिनि, तंहिं करे डील करण में ॾुखियाई पेश अची रही आहे। ईरान वटि मुआहिदे खां सवाइ ॿियो को बि दग न आहे। अमरीकी टीवी खे इंटरव्यू ॾींदे सदर ट्रंप चयो आहे त जंग खे हल थियण में वक़्तु लॻंदो, ही कम जल्दी में नाइन थींदा। ईरान वटि सिर्फ़ 21 खां 22 सैकड़ो मिसाइल बचा आहिनि। ईरान में असांखे कामयाबियूं मिलियूं आहिनि, अपने हुरमत सां बि घणा आयल टैंकर्स गुज़रिया आहिनि। फ़िलहाल अंग खर ॿुधाइण नथो चाहियां, तेल जूं क़ीमतूं घटिजी वेंदियूं।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर, एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चोपर एटमाट, अम्बा अख्तियार 3S डीलर, आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल, कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तियाब आहे, सर्विस सेंटर, एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर, सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे, होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स, खुसूसी रियायत ते मौजूद, आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो, कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर, फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट, कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी, होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जैर निगरानी, आशिक होंडा मोटर्स, एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर, राप्ती जिलाई, आसिम हुसैन आराई, 0307-359-2120।
2: खुशखबरी हाँ अवां जे पांजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन आई नहन एलर्जी कॉस्मेटिक आई वचड़ंदड़ बीमारियों जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोजानो शाम जो असर निमाज खां इशा जे निमाज ताईं आई हर आचर ते सुबुह जो 9 वगे खां रात 8 वगे ताईं मरीजन जो इलाज कंदा आहिन। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक, नज़ रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। वधीक राबते जे लाइ 0300-383-569-0300-338-569।

0: ऐं कालम में मौजूद आहिनि। फौजी भाइरनि लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी। राब्ते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-54-31-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-16-23-793।
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़ररु कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज्ड जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाइ 0302018-00003।
2: अस्सलाम वालेकुम अदा।
3: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
2: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
3: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
2: न अदा?
4: यार आजकल शहरन तोड़े गोछन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
2: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
3: हां दा, कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
2: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस बुदा।
4: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर।
3: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
5: 0301-399-2836।
6: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है, सुनते रहो जी FM 94।
7: बुक स्टूडियो Season 15.

0: It's 1:15 p.m.
1: This time check is brought to you by White-ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज GAFM 94
3: सोप सा मिले चमकदार।
4: अच्छा सुनो मुझे हनीमून।

तुम्हारी उम्मीद मौजज़ों के बादशाह से है, तुम्हारी उम्मीद मौजज़ों के बादशाह से है, फिर क्यों परेशान हो, तुम्हारे पास तो अल्लाह है। संजब दंदड़ सबनी समात उनके मुझे तरफा अस्सलामु अलैकुम। गुरकुलों दो के संबंध है जादू के बारे से लाजवल खजानों के साथ दुआ है पल से पल तक आज से कल तक सुबह से शाम तक दिन से रात तक नींद से जागता जमीन से आसमां तक जिंदगी से मौत तक चांद से तारों तक हमसे खुशी तक दिल से दिल तक जिंदगी के पहले दिन से जिंदगी के आखिरी दिन तक अल्लाह ताला आप सबको और हम सबको हमेशा हमेशा हमेशा अपनी रहमतों और बरकतों के साए में सलामत रखे। सो आमीन या रब्बुल आलमीन। बिल्कुल जनाब आप सुन रहे हैं व्हाइट एश एंडी स्किन ब्यूटी शो। हाँ जी जनाब व्हाइट एश एंटी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। तो अगर आप भी खूबसूरत बनना चाहते हैं, खूबसूरती हासिल करना चाहते हैं, हमेशा के लिए हसीन और प्यारे बनना चाहते हैं, तो व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स आप लोगों के लिए है। अगर आप भी व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हम भी लगाएं और किस तरह से लगाएंगे, तो ये तमाम तर बातें आज के प्रोग्राम में आप लोगों को जानने को मिलेंगी। बिल्कुल जी, आपका हमारे साथ प्रोग्राम में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होता है क्योंकि इस प्रोग्राम में आप लोगों को हम खूबसूरती की बातें बताते हैं। तो चलिए जी रेडी शेडी हो जाइए हमारे प्रोग्राम में हमारे साथ साथ मौजूद रहने के लिए, प्रोग्राम में खूबसूरती की बातों को जानने के लिए और जरा ये समझने के लिए कि व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो या फिर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो, इनके कितने सारे फायदे जो कि आप लोगों को मिलने वाले हैं। तो बिल्कुल जी सब कुछ बताएंगे, तफसीलन बताएंगे, लेकिन कितना कितनी जल्दी किया है, अभी तो हमने स्टार्ट किया है। तो सर अपना भी तारुफ करवाते हैं। सो लिसनर्स प्रोविजन टेक द मोस्ट ब्यूटीफुल फैंटास्टिक इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनिंग कैरेक्टर योर आरजे एंड योर डीजे सिद्रा मुस्कान, नाम तो सुना ही होगा। तो बिल्कुल आपकी सिद्रा आप लोगों के साथ साथ मुखातिब हो चुकी है। जितने भी लोग यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है, जितनी भी समाते हैं तमाम तो लोगों को वेलकम इन खुशामदीद कहा जाता है और साथ ही साथ अपने हाल चाल बताते जाइए। सो डियर लिसनर्स अंत के फहालत कैसे है आपकी हालत है, उम्मीदन शदीदन के बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, सबकुल मूड के साथ सबकुल प्रोग्राम का इंतजार करे होंगे। तो आपकी जो इंतजार की घड़ियां थी वो खत्म हो चुकी है, फाइनली यहाँ पर हमने एंट्रियां मार ली हैं। आपको पता है जब हम एंट्रियां मारते हैं तो बहुत सारे लोगों के दिलों में घंटियां बजाते हैं, तो यकीनन आपके दिलों में भी घंटियां बजाएंगे और आपको बताएंगे कि आपका हमारा साथ ठीक पूरे 3 बजे तक का, और 3 बजे तक मैं आपके साथ मौजूद रहूंगी, आप भी हमारे साथ मौजूद रहिए बहुत ज्यादा बातों के साथ, बहुत ज्यादा फन के साथ और बहुत ज्यादा खूबसूरती के राजों के साथ साथ। चलिए जी, यहाँ पर बहुत से लोग हमारे साथ ऐसे मौजूद होते हैं जो कि अपने कामों के दौरान हमें सुन रहे होते हैं, बहुत से लोग ऐसे जिन्होंने अपने सारे काम कर लिए यानी कि फ्री होकर हमारे इंतजार कर रहे थे, ऐसी बहुत सारी आंटियां अम्मियाएं खालाएं बाजियां और पापा की परियां जो हमें किचन में सुन रही होंगी यानी कि लंच बनाने के दौरान। सो भी अपने काम भी कीजिए, हमें भी सुनिए, आपको कहेंगे वेरी वाली गुड आफ्टरनून। साथ ही साथ अगर आप लोगों ने घर वालों के ताने सुने लिए हैं तो जनाब आप जबरदस्त गाने सुनने के लिए जरा रेडी हो जाइए क्योंकि आपकी बोरिंग लाइफ में भरेगी चटपटा मसाला बिकॉज अली रे अली सदर अली बॉस आपके होंठों पर 440 उल्की स्माइल लाने के लिए। तो बिल्कुल आपके होंठों पर 440 उल्की स्माइल लाते हैं और यहाँ पर ऐसा करते हैं, सबसे पहले आगे से प्रोग्राम कर लेते हैं। आगे से प्रोग्राम किया जाएगा जनाब एक बहुत ब्यूटीफुल सी नात के साथ, बहुत ही प्यारी नात हमारी लिस्ट में मौजूद है, तो हम जरा नात सुनेंगे स्टार्टिंग में, उसके बाद जैसे ही वापस आते हैं तो बताते हैं कि आज के प्रोग्राम में हम क्या करने वाले हैं। सो प्रोग्राम है जनाब व्हाइट एश एंटी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स, आप इस्तेमाल करते जा रहे हैं, इस्तेमाल करेंगे और खूबसूरत होते जाएंगे। ओके सो नात सुनिए, उसके बाद जल्दी से वापस आप लोगों के पास आते हैं।

0: मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन आई औरतन में वजन जो न वधण उनन सबनी बीमारन जो कामयाब इलाज कयो वने तो राबते लए 0301-9196-851।
1: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम।

0: तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा वाइटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फॉली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: खुशखबरी खुशखबरी, हाणी अवां जे पांजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन आई नहन एलर्जी कॉस्मेटिक आई वचड़ंदड़ बीमारियों जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोजानो शाम जो असर नमाज खां इशा जे नमाज ताई आई हर आचर ते सुबुह जो 9 वगे खां रात 8 वगे ताई मरीजन जो इलाज कंदा आहिन। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक, नज रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहराबपुर। वधीक राबते जे लाइ 0385 569 0300 003 8556 9।
3: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
4: अस्सलाम वालेकुम अदा।
5: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
4: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे?
5: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
4: न अदा?
6: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई, कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
4: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
5: हां दा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
4: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
6: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर।
5: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
7: 0301-399-2836।
8: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है, सुनते रहो GFM 94।
9: Studio Season 9.

लॻाए जिते तव्हांखे दाणो आहे, तव्हांखे निशान आहे, तव्हांखे को कट आहे जेको तव्हां रिमूव करणु चाहियो था, उन जॻह ते तव्हां डॉक्टर पिंपल जो एंटी एक्ने ट्यूब इस्तेमालु करे सघो था। लॻाए तव्हां सुम्ही पओ, सुबुह जो उथी तव्हां वापसि फेस वॉश कंदा, तव्हां ॾिसंदा त फ़र्क़ु वाक़ई तव्हांखे नज़र ईंदो। सो तव्हां ही प्रोडक्ट्स आहिनि जेके लाज़मी वठो, तव्हां इस्तेमालु करे ॾिसो, तव्हांजे लाइ आहिनि ऐं तव्हांजी ऑल स्किन जे टाइप जे लाइ आहिनि। ज़्यादातर इहा बि कंफ्यूजन हूंदी आहे माण्हुनि में त असांजी स्किन ते सूट कंदो या न कंदो, त तव्हांजी स्किन ते बिल्कुलु सूट कंदा ही वाइट एज जा प्रोडक्ट्स, छो त ही ऑल स्किन टाइप जे लाइ तयारु कया विया आहिनि। ऐं सभ खां मज़े जी ॻाल्हि त ही नेचुरल अज़ा सां तयारु थियल आहिनि, हिन जे अंदरि कोई बि केमिकल एड नाहे कयो वियो। सो वाइट एज ब्यूटी क्रीम जी अगरि ॻाल्हि कई वञे त वाइट एज ब्यूटी क्रीम में तव्हांखे एवोकाडो, एलोवेरा ऐं मिल्क मिले थो। ही सभु चीज़ूं मिली करे तव्हांजे लाइ वाइट एज ब्यूटी क्रीम तयारु कई आहे। वाइट एज ब्यूटी क्रीम जेका तव्हांजी स्किन खे फ्रेश बणाईंदी, फेयर बणाईंदी, ग्लोइंग बणाईंदी ऐं तव्हांजी स्किन ते जेके बि निशान आहिनि, दाग आहिनि, अखियुनि जा हल्का आहिनि, उहे सभु चीज़ूं बि ख़तमु थी वेंदियूं ऐं तव्हांजी स्किन सफ़ा ग्लो करण लॻंदी ऐं तव्हां गोरा गोरा बि थी वेंदा। मर्द मायूं सभी लॻाईंदा ऐं पंहिंजी ख़ूबसूरती खे अञा वधीक ख़ूबसूरत बणाईंदा। ऐं राति जे टाइम तव्हां वाइट एश ब्यूटी क्रीम बि लॻाए सघो था। बाक़ी अगरि असां वाइट एश लवली क्रीम जी ॻाल्हि कयूं था त जनाब वाइट एश लवली क्रीम जेका आहे ही जनाब फेयरनेस फार्मूलो आहे। फेयरनेस फार्मूले सां मुराद ही त ही जेका आहे न तव्हांजी ऑल स्किन टाइप जे लाइ आहे। मर्द मायूं सभु लॻाईंदा, हर उमिरि में तव्हां लॻाए सघो था, ॿारनि खे बि यूज़ कराए सघो था, तव्हां पाण बि यूज़ कयो। ऐं वाइट एश जी लवली क्रीम जेका रेडियंट अल्ट्रा वाइटमिन सां तयारु थियल आहे, जंहिं अंदरि 30 वाइटमिन जा कैप्सूल एड आहिनि, जंहिंमें B3 आहे, वाइटमिन ई आहे, वाइटमिन सी आहे, वाइटमिन डी आहे। ऐं ॿी हिकिड़ी ॻाल्हि त सनस्क्रीन बि एड थियल अथसि हिन में। बिल्कुलु जी, अगरि तव्हां इहो सोचो था त असां फेयरनेस क्रीम अलॻि सां लॻायूं, सनस्क्रीम अलॻि सां लॻायूं, त बबन न, वाइट एज जी लवली क्रीम जे अंदरि तव्हांखे सनस्क्रीम बि मिले थी, तव्हांजी ख़ूबसूरती बि तव्हांखे मिलंदी ऐं तव्हांजी ख़ूबसूरती जी हिफ़ाज़त बि थींदी। अगरि अहिड़ी गर्मी में, अहिड़ी अज़ाब जहिड़ी गर्मी में अगरि तव्हां चाहियो था त तव्हांजे लाइ कोई अहिड़ो प्रोडक्ट मौजूदु हुजे जेको तव्हांजी स्किन जी हिफ़ाज़त करे, त बिल्कुलु वाइट एज लवली क्रीम हिकु नंबर अथव। वाइट एज जी लवली क्रीम तव्हां लाज़मी नालो वठी परचेज कयो। तव्हां कोई बि कमु कयो था, तव्हां पढ़णु वञो था, तव्हां पढ़ाइणु वञो था, तव्हां कंहिं ऑफिस में कमु कयो था, तव्हां कोई बि कमु कयो था, या इनफैक्ट तव्हां हाउस वाइफ आहियो, तव्हां घर में हूंदियूं आहियो ख़ासि करे ख़वातीन, त तव्हां बि बाबा ईअं सफ़ा वाइट एज लवली क्रीम जो इस्तेमालु करे सघो था। डेली बेसिस ते लॻायो, तव्हां ॾींहं जो लॻायो, राति जो लॻायो, बसि तव्हां लॻाईंदा जॾहिं वाइट एज लवली क्रीम त तव्हांखे पाण अंदाज़ो लॻी वेंदो त वाक़ई बाबा प्रोडक्ट जेको आहे हू ॾाढो कम जो प्रोडक्ट आहे। सो तव्हांखे मेकअप जी बि नीड न पवंदी, तव्हांजी स्किन ग्लो कंदी, तव्हांजी स्किन ख़ूबसूरत थींदी ऐं तव्हांजी स्किन में जेको रिज़ल्ट तव्हां वाक़ई वाज़े ॾिसंदा। सो लाज़मी तव्हां ट्राए करे ॾिसो वाइट एज जी लवली क्रीम। उन खां अलावा जेको आहे ही सभु वाइट एज वारनि जा प्रोडक्ट आहिनि, तव्हांजे हर जॻह ते अवेलेबल कराइण इहो मुंहिंजो हिकिड़ो ख़्वाबु आहे। सो तव्हां अवेलेबल कराए उन लाइ तव्हां थोरी मुंहिंजी हेल्प कंदा, तव्हां नंबर जेको ॿुधाए पियो नंबर ते तव्हां राबितो कंदा कयो, नंबर ते राबितो करे तव्हां उन्हनि खे ॿुधायो त तव्हां किथां जेको आहियो ऐं तव्हां किथे आहियो, किथां रहंदा आहियो, कहिड़ो ॻोठु आहे, कहिड़ो शहर आहे, उते अवेलेबल आहिनि नाहिनि थिया, त ही नंबर तव्हां राबितो करे इन नंबर ते तव्हां अवेलेबल कराए सघो था। सो नंबर आहे 03-15-799-0595। ओके जी, सो नंबर तव्हांखे सिंधी में बि ॿुधायां थी, जेके माण्हू असांजा अहिड़ा भाइर हूंदा आहिनि, भेनर हूंदा आहिनि, जंहिंखे चवंदा आहिनि त बाबा असांखे सिंधी में बि नंबर शेयर कयो। सो सिंधी में तव्हांखे नंबर ॿुधायां थी, नंबर आहे 03-15-79-595। बिल्कुलु जी, ॾाढो सवलो नंबर आहे, ॾाढो ख़ूबसूरत नंबर आहे, हिन नंबर ते तव्हां राबितो कयो ऐं राबते करण खां पोइ तव्हां पंहिंजे क़रीबी जनरल स्टोर ते अवेलेबल कराए सघो था। हिननि खां मज़ीद तव्हां मालूमात बि वठी सघो था त असां

ये सब कुछ मिलियो हिते मियो छा खपे मोहब्बत मिली नफरत मिली ओके सो तव्हां हाणे वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट जो इस्तेमालु कयो जीअं तव्हांजी ख़ूबसूरती तव्हांखे मिले समुझो था अच्छा पोस्ट खे लाइक ऐं शेयर कंदा हलो सही आहे तव्हांजी मोहबतूं हूंदियूं आहिनि और मोलाई मुजाहिद दोस्तदार कहते हैं सिद्धरो जी एक खामोश लिसनर है जो डेली खामोशी से आपका शो सुनता है आपको सलाम बोल रहा है लाहौती साजन चांडियो लाहौती साजन चांडियो छा हाल अथव ख़ुशि आहियो एॾा खामोशी सां प्रोग्राम न ॿुधंदा कयो बाबा कॾहिं कॾहिं हुजण जो सबूत बि ॾींदा कयो

अच्छा अनवर भाई कहते हैं असांजे मुआशरे में अॼुकल्ह केतिरा ई अहिड़ा माण्हू मौजूद आहिनि जेके ॿियनि जे कननि खां ॿुधंदा आहिनि ऐं ॿियनि जे अखियुनि मां ॾिसंदा आहिनि. एग्ज़ैक्टली. दुनिया में पंहिंजा चर्चा हलनि था, दिलि में माण्हू अची मिलनि था. चरिया माण्हू. बाबा तव्हांखे पंहिंजा कन पंहिंजूं अखियूं अला साईं छा लाइ ॾिनियूं आहिनि, यूस कयो उन्हनि जो. एसन अरबाणी मर्स मौजूद, वालेकुम असलाम एसन, छा अथव, ख़ुशि आहियो नी. अच्छा हिदायतुल्ला कहते हैं वैसे तो पूछ रही हो कि कहां से सुन रहे हैं, तो मैं बताऊं बदीन से आप को सुन रहा हूं. अब खुश? हाँ जी बिल्कुल खुश, बहुत खुश. और ऐसे ही सुनते रहिए जी, और साथ साथ पोस्ट को लाइक और शेयर भी करती रहिए जनाब. आदिल हुसैन हमारे साथ ही, वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक ठाक, आप बताएं कैसे हैं. आपने शायरी भेजी है, लिखते हैं रूहे मन लोग क्या कहेंगे, कौन से लोग, मुझे तो अकेले ही हिसाब देना है और सब उसके पास कयामत के दिन अकेले हाजिर होंगे. यस.

प्रिंसेस सैफ जान खोसो हमारे साथ मौजूद है। हाय हेलो, मैं ठीक, आप बताएं कैसे हैं? कहते हैं नाइस होस्टिंग, अमेजिंग म्यूजिक, वंडरफुल, एक्सीलेंट। कसम से, इट्स सैफ जान खोसो फ्रॉम कश्मीर अदी। ओके जी, ओके, थैंक यू सो मच प्यारे भाई, आप हमारे साथ मौजूद है, वेलकम। और हजार भाई कहते हैं असा खान जी को उधार घुरंदा हुंदा आहिन त नई छडबा आहिन, न हुंदा आहिन त सिधो जवाब दींदा आयो। सिधो जवाब देने लाइ बि हिम्मत खपे थी, जेका मूंखे लॻंदो आहे कुझु माण्हुनि में हूंदी आहे। और प्रिंस सैफ जान कहते हैं कि अदी वाइट एश मुझे, हाँ हाँ, वाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स आप परचेज कर सकते हैं, कश्मीर में भी आप अवेलेबल कराइए। नंबर के ऊपर रابطہ कीजिए जो है 03 15 799 0595।

तव्हां मूंखे ॿुधायो था अॼु जे टाइम में अगरि कोई तव्हां खां उधार घुरे थो त तव्हांजो छा जवाबु हूंदो आहे? तव्हां ॾींदा आहियो, न ॾींदा आहियो, जवाबु कीअं ॾींदा आहियो? ख़ासि करे ईअं बि थींदो आहे त असां जवाबु ॾियण में बि थोरो लड़ाईंदा आहियूं त असां हाणे अॻिले माण्हू खे कीअं जवाबु ॾियूं। कुझु माण्हू त वरी ईअं हूंदा आहिनि जेके जवाबु ई न ॾेई सघंदा आहिनि। चलो तव्हां ॿुधायो था तव्हां छा कंदा आहियो। और हिदायत अला कहते हैं चापिक उधार तो मैं दे देता हूँ, बस वापस मांगने पर शकी होता हूँ। ये बात बिल्कुल, ये बात मौलाई मुजाहिद बोजार कहते हैं सिडो जी टॉपिक का जवाब मैं बहाना बनाता हूँ और पहले बोलते हैं अभी, अच्छा बोलता हूँ कि यार पहले बोलते ना अभी अभी मैंने फलाम बंदे को दे दिए पैसे। अच्छा ऐसा बोलते हैं, यानी कि मुझे ये लग रहा है कि मैं आज आप लोगों से बहुत कुछ सीखने वाली हूँ क्योंकि मुझे जितने भी लोग मुझसे उधार मांगते तो मैं ये वाले बहाने बना सकूं, समझ रहे? क्योंकि अक्सर ऐसा हुआ है मेरे साथ के जो लोग मुझसे उधार मांगते हैं उन्होंने मुझे उधारी वापस नहीं करी और मैं वो इंसान हूं जो वापस लेने में, अपने पैसे वापस लेने में हिचकिचाती हूं।

0: ਕਰਨ ਆਇਰਨ ਸਟੋਰ ਹਾਲ ਆਣੀ ਹੋਲਸੇਲ ਡੀਪੂ ਅ ਨੇਮ ਟੂ ਬੀ ਟ੍ਰਸਟਡ
1: ਸਰੀਆ ਗਾਰਡਨ ਟੀਅਰ ਐਂਗਲ ਚੈਨਲ ਪੱਟੀ ਲੋਹੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਸਿਲਵਰ ਜਾ ਚੌਂਕ ਸੀਮੈਂਟ ਰੇਤੀ ਕ੍ਰੇਸ਼ ਐਂ ਰੰਗ ਵਗੈਰਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖਾਂ ਬਾਰੀਆ ਦਸਤਿਆਬ ਆਹੀਂ
0: ਹਾਣੇ ਯਚੋ ਮਹਿਰਾਨ ਆਇਰਨ ਸਟੋਰ ਨਜ਼ਦ ਬਲੋਚ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਹਾਲ ਆਣੀ
1: ਰਾਬਤੇ ਲਾਏ ਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟਰ ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਮੁਗਲ 03003204372 ਐਂ 02424601000
2: खुशखबरी खुशखबरी हाणी अवां जे पांजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन आई नहन एलर्जी कॉस्मेटिक आई वचड़ंदड़ बीमारियों जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोजानो शाम जो असर नमाज खां इशा जे नमाज ताई आई हर आचर ते सुबुह जो 9 वगे खां रात 8 वगे ताई मरीजन जो इलाज कंदा आहिन एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक नज़द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहराबपुर वधीक राबते जे लाइ 0385 569
3: माशाला फौजी पाई फैक्ट्री नज़द गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालाणी रोड मेहराबपुर असां वटि जॻहि जूं ॾियारियूं जॻहि जा पावा ऐं पाइप ॾेढ ॿ चार छह नव ऐं 12 इंच में प्लेन ऐं कॉलम में मौजूदु आहिनि फौजी भाइरनि लाइ ख़ुसूसी रिआयत हूंदी राब्ते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-5431-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-1623-793
4: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहराबपुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहराबपुर नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज्ड जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिं में मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहराबपुर राब्ते जे लाइ 03-20-18-00-003
5: अस्सलाम वालेकुम अदा
6: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
5: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
6: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
5: न अदा
0: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेहराबपुर FM 94 ही हले थो मो पंजो दुकान खोलियो तो FM मेहराबपुर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे
5: मुझे दुकान जी बेड हलंदी
6: हां दा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए
5: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
0: ऑफिस जी मेहराबपुर FM 94 नज़द गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालाणी रोड मेहराबपुर
6: राबते लाए हाकिम अली जिसकाणी
7: 03013992836
8: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है सुनते रहो जी FM 94

0: It's 2:15 p.m.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream, Asli Glow Har Diya Josho, a product by Biocon International Pakistan.
3: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज GAFM 94।

ओके जनाब, सो वापस आ चुके हैं दोबारा से आप लोगों के पास और आप सुन रहे हैं GFM88 नेटवर्क. हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर सखर मोरो मीरपुर खास मुटियारी सकरन मेहराबपुर मातिली और लाड़काना के लाइव स्टूडियो से आपके सिद्धराव के साथ मौजूद है. मेरे साथ कौन है मुझे बताते जा रहे हैं, अपने होने का एहसास दिलाते जा रहे हैं और आप भी हमारे साथ मौजूद है ये बताते जा रहे हैं. ओके जी, तो हम आ चुके हैं प्रोग्राम के दूसरे घंटे में. यहाँ पर जितने भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं तमाम तो लोगों को वेलकम एंड खुशामदीद कहा जाता है. बिल्कुल जी, आपकी मोहब्बतों समातों और चाहतों का बेहद वाला शुक्रिया. और साथ ही साथ प्रोग्राम सुन रहे हैं व्हाइट एश एंटी स्किन ब्यूटी शो. ओके जनाब, सो व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो या फिर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो, ये तमाम तरह प्रोडक्ट्स आप लोगों की खूबसूरती के लिए तैयार किए गए हैं. तो मैं ये चाहती हूँ कि आप जितने भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं वो तमाम तरह लोग जो है वो अच्छे से जान सके, पहचान सके, समझ सके इन तमाम तरह चीज़ों के बारे में. उसके बाद आप ये समझ लेंगे कौन सा प्रोडक्ट हमारी खूबसूरती के मुताबिक है और कौन सा प्रोडक्ट हमें इस्तेमाल करना है. ज्यादा मरतबा ऐसा होता है कि मैं आप लोगों को जो है ना वो तफसीलन इसलिए ही बता रही होती हूँ ताकि आप लोगों को इन चीज़ों की नॉलेज हो जाए और आप लोगों को ये पता हो कि भाई ये जो प्रोडक्ट बताए जा रहे हैं तो इनका क्या फायदा है और ये क्यों आप इस्तेमाल कर रहे हैं. तो मैंने पहले आप लोगों को व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में बताया, तो अभी मैं आप लोगों को डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में बताऊंगी. तो डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में जानने के लिए आप लोगों को ये चीजें भी पहले से पता होनी चाहिए कि डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स में आप लोगों के लिए सिर्फ दो प्रोडक्ट्स हैं. जैसे कि व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स में आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा वाले प्रोडक्ट्स हैं, तो बिल्कुल वैसे ही डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स में आप लोगों के लिए सिर्फ दो प्रोडक्ट्स हैं, एक डी स्किन फेस वॉश और दूसरा डी स्किन ब्यूटी क्रीम. ये दोनों प्रोडक्ट्स हैं आप लोगों की खूबसूरती के लिए. डी स्किन ब्यूटी क्रीम की क्या ही मैं अब आप लोगों को बात बताऊं, क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है ये जनाब एक ऐसा फार्मूला है, एक ऐसी क्रीम है जिसे लगाने के बाद आप ये सोचेंगे कि हम पहले क्यों नहीं लगा रहे थे, पहले हम क्यों नहीं सिद्धरा की बात मान रहे थे, क्योंकि एक ऐसा प्रोडक्ट आपके पास मौजूद है जो कि लगाते साथ ही आप लोगों की खूबसूरती ना सिर्फ बढ़ेगी बल्कि आपके चेहरे पर जो है ना वो ताजगी, वो फ्रेशनेस, वो खूबसूरती हमेशा बरकरार रहने वाली है. तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो कि विटामिन ई बीट से तैयार की गई है माइक्रो बीट्स फार्मुलेशन के साथ साथ, और मजे की बात कि जनाब ये जो प्रोडक्ट है डी स्किन ब्यूटी क्रीम ये सिर्फ दो रातों के इस्तेमाल से आप लोगों को बहुत अच्छे वाले रिजल्ट्स दे रहा है. तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप इस्तेमाल करते रहिए, क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है ना आपके जल्द की खूबसूरती की हिफाजत के लिए है और जनाब इसको तैयार इसलिए किया गया है ताकि आपकी जल्द की खूबसूरती जो है ना वो उसकी हिफाजत हो सके. एक मायारी ब्यूटी क्रीम है, ये जल्द को नमी फराहम करती है और चेहरे को नरम, मुलायम और तरोताजा भी रखती है और जनाब इसके बाकायदा इस्तेमाल से आपकी जल्द जो है उसके अंदर जो बेरोनकी आ जाती है या फिर आपके चेहरा जो है ना वो ऐसा महसूस होता है कि लोग आपसे पूछते हैं कि भाई आपकी स्किन इतनी थकी थकी क्यों लगती है. वो लहजा थका थका तो खैर लोग बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन स्किन अगर आपकी थकी थकी होना ये फिर बर्दाश्त नहीं होने वाली बात होती. तो अगर आप भी चाहते हैं कि आप हमेशा खिलते रहें, महकते रहें, फ्रेश फील करें, तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करते रहिए. और डी स्किन ब्यूटी क्रीम के साथ आपने यूज करना है जनाब डी स्किन फेस वॉश. और डी स्किन फेस वॉश जो कि हाइलोरोनिक एसिड सीरम से तैयार किया गया है, इसके अंदर वो तमाम तर चीजें ऐड की गई हैं जो कि आप लोगों की स्किन को ब्यूटीफुल बनाने वाली हैं. तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपके पास कोई अच्छा सा फेस वॉश होना चाहिए, तो जनाब डी स्किन आप फेस वॉश जो है ये यूज कर सकते हैं. ऑल स्किन टाइप के लिए है, हर कोई इस्तेमाल कर रहा है, हर कोई इस्तेमाल भी करेगा, क्योंकि ये ऑल स्किन टाइप के लिए है. तो आप लोगों को ये भी मसला नहीं होगा कि भाई हमारी स्किन तो सेंसिटिव है, हम लगा सकते नहीं लगा सकते. बिल्कुल जी लगा सकते हैं, ऑल स्किन टाइप के लिए हर कोई इस्तेमाल कर रहा है. बिल्कुल जी, सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम ये एक नाइट क्रीम है, इसे आप रात के टाइम इस्तेमाल करेंगे. और डी स्किन फेस वॉश इसे आप दिन में कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं. सुबह में लगाइए, दोपहर में लगाइए, रात में लगाइए, जब दिल करे तब लगाइए, क्योंकि आप लोगों की खूबसूरती अब आपके हाथों में है. तो बस आप अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर जाइए, वहां से मालूमात लीजिए क्या वहां पर अवेलेबल है डी स्किन ब्यूटी क्रीम एंड डी स्किन फेस वॉश. मिल रहे हैं तो बहुत बढ़िया, परचेज कीजिए. अगर नहीं मिल रहे तो डायल कीजिए 03 15 799 059 5.

अच्छा पैनल की जाने बातें हैं, आपके बहुत सारे आज पैनल पर मैसेजेस जमा हो चुके हैं, तो मैं सोच रही थी कि पैनल की जाने भी आ जाते हैं। और मुझे जो पहला मैसेज मिला है वो मिला है बशीर लगारी गोट मीर खान लगारी से। वालेकुम अस्सलाम सिस्टर, की आयो अमां जो प्रोग्राम लाजवाब आए, असा रोज बुधन आयो मोहब्बतूं प्यारे भावन जो। और उसके अलावा हमारे साथी जी यासीन गुडाड़ो भाई सकरण से कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह अमां बुधायो की आयो डाडी गर्मी आ सिदरा। हां बाबा गर्मी तो वाकई डाडी आए पर अच्छा कहूँ। और मीरपुर खास अब्दुल्ला महर है, वालेकुम अस्सलाम बाजी, व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम जबरदस्त सुपर है, हम इस्तेमाल कर रहे हैं। सॉन्ग सुनाए मास्टर मंजूर का टॉपिक, हाँ बाजी मैं पैसे देता हूँ मगर पैसे वापस नहीं मिलते हैं ये मतलब सबके साथ मसला है। अरे भाई वापस दिया करें, जो लोग पैसे लेते वापस नहीं देते, अगर आप मेरा शो सुन रहे तो भाई पैसे लोगों को वापस कर दिया करें, ॾाढो गुनाह अथव। हाँ इहो तव्हां ट्रस्ट बि माण्हू जो विञाए वियो था, अगरि तव्हां मतिलबु टाइम ते पैसा वापसि कंदा त अॻिले माण्हू खे वरी ॾियण में जेको आहे न थोरो थींदो त बाबा ॾेई थो छॾिया, ही वापसि ॾियण में भलो आहे, सो वापसि ॾेई छॾींदा कयो, इहा बुरी ॻाल्हि हूंदी अथव। अच्छा ये मौजूद ही, वालेकुम अस्सलाम फहद अली लाशारी, आज डुएट सॉन्ग सुनाइएगा अदा। यो गानो मु बिल्कुल डिठो पर इन गाने में थोड़ो जिको ना त मतलब मजो न हो, यानी कि प्रोग्राम में हलाने जड़ो गानो न हो, सो तमा कोशिश कयो को बियो गानो बुधायो त मा लाज़मी हलाईंदम, ठीक है। और सुबल अली खास के लिए हमारे साथ मौजूद है, सुबल अली खास के लिए तमा के चोंथा भली करी आया। साइम अमीर हमारे साथ मौजूद है, वालेकुम अस्सलाम, माशाल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूं। केदी मक्खन जैसी आरजे सिद्रो, व्हाइट एश ब्यूटी शो एंड डी स्किन ब्यूटी शो अच्छा है, नहीं एक ही है ना व्हाइट एज एंटी स्किन ब्यूटी शो और कहती है चले नहीं, बहुत शुक्रिया मेरी जाना आपको वेलकम हो गया। चाचा खालिद बिल्कुल तम वेरो पानी सीटी थी तवां जो गानो रेडी आहे। और उन खां अलावा छा था जो तवां जी पोस्ट शेयर करे छॾी आहे, सो मोहबतूं। अरीबा कहती आपी जान प्लीज प्ले तू मुंहिंजो दोस्त नहीं यार, वॉइस पे ममताज मोलाई, ओके मां कोशिश कंदमि गानो हलाईंदासीं, पर ममताज मोलाई जो ॾाढो भलो गानो मूं लिस्ट में लॻायो हुयो अॼु, मां इहा कोशिश कई आहे मतिलबु मां थोरा पंहिंजी पसंदि जा गाना तव्हांखे ॿुधायां, सो चुप करे ॿुधो। फाद देरी है सऊ देरी है फ्रॉम नवाशा कहते सलाम अदी, शो तव्हांजो ॾाढो भलो आहे, मोहबतूं प्यारे भाउ, प्रोडक्ट जेके ॿुधायां थी लॻायो पिया कोन ॿुधायो त सही, ऐं तव्हांजे ॻोठनि में तव्हांजे सिटीज़ में मिलनि था कोन इहो बि ॿुधायो, ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम तव्हां इस्तेमाल कई आहे कोन, छो त डी स्किन ब्यूटी क्रीम तव्हांजी ख़ूबसूरती जे लाइ ॾाढी भली अथव। डी स्किन ब्यूटी क्रीम तव्हां जॾहिं इस्तेमालु कंदा त तव्हांखे इहो अहसासु थींदो त बाबा असां अमीरनि वारो प्रोडक्ट खणूं था, हक़ीक़त इहा अथव। हीअ जेको आहे न मतिलबु हीअ लॻाइण सां तव्हांखे वाइब ईंदी अथई, मतिलबु रिचनेस जी तव्हांखे वाइब ईंदी, तव्हांखे फील थींदो त बाबा वाकई असां कोई अमीरनि वारो प्रोडक्ट लॻायूं पिया। सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम तव्हां लाज़मी लॻाए ॾिसजो, उन सां गॾु तव्हां डी स्किन जो फेस वॉश ट्राई करी ॾिसो, ऐं गॾो गॾु डायल कयो 03 15 799 0595।

अच्छा कश्यप हमारे साथ मौजूद है, वालेकुम अस्सलाम सिद्रा, बिल्कुल ठीक ठाक है, गुड आफ्टरनून, सॉन्ग सुनाओ। चलिए मैं कोशिश करती हूँ आपका गाना सुनेंगे, ठीक है कश्यप। और बशीर लगारी हमारे साथ है, गोठ मीर खान लगारी, वालेकुम अस्सलाम भाव। चौथा आदि तमाम जो प्रोग्राम लाजवाब है, असा रोज शौक से बुधन आयो मोहब्बत हूँ प्यारे भावनजू। मकसूद मला हमारे साथ मौजूद है मेहरापुर से, आपका भी बहुत शुक्रिया। कश्यप कहती है सिडो आपका इंतजार कर रही थी, मुझे नींद आ गई अभी उठी तो आपका शो चल रहा था। नाइस शो, थैंक यू जी, थैंक यू। इंतजार करते करते सो गई और कहती है कि सिद्रा आज आप गाने बड़ी धमाकेदार चलाती हो, दिल करता है डांस करना स्टार्ट करते हैं। हाँ ना, मरी मरी गाने पता नहीं क्यों मुझे अच्छे नहीं लगते। और साइमा मीर कहती है कि मैं सदके आज सुबह सवेरे ही घर में ऐसे टॉपिक के ऊपर बात हो रही थी और कहती है टाइम अच्छा टॉपिक के ऊपर बात करती है कि होते हैं तो खुशी से दे देती हूँ, फिर वो भी खुद ही दे जाते हैं घर बैठे, नो चिंता। तो अल्लाह ये कहड़ा माण्हू जेके तव्हांखे घर वेठे ॾेई था वञनि, असांखे त अञा तेड़ा माण्हू कोन मिलिया। अच्छा इरम कहती ओ मेरी दिलबर दोस्त जवाब है वासाई वाह तव्हांजी त लई आहे। इरम कहती है चले उही मैसेज तव्हां वराए शेयर करे छॾियो आहे सो मोहबतूं। और वालेकुम असलम बाजी ज़ुल्करनैन खोड़ो हमारे साथ है विलेज आकिल से बाजी। अच्छा चौथा था बाजी माण्हू चवनि था खुशी हूंदी आबाद हूंदी न विसरंदी न यादि हूंदी। ए त माण्हू चवंदा तव्हां छा था चओ इहो ॿुधायो।

जी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कयो सोना सोना थी वेनो ये मौजूद ही हाय मेरी फेवरेट आरजी आप कैसी हैं यकीनन आप खुश होंगी और कहते हैं साथ साथ में चले ये भी अच्छी बात है माशाल्लाह मैं किसी काम तो आ रही हूँ। इमरान अली बिरोही भाई हमारे साथ मौजूद है, थैंक यू सो मच, आपकी बहुत मेहरबानी, आप हमारे साथ मौजूद है। और शोनी कहती है आप ही मैं भी आ गई आपके शो में, एक बात पूछूं आप ही नहीं ऐसा तो नहीं है, नॉलेज भी इंसान के लिए जरूरी होती है, बिना नॉलेज के इंसान भी अच्छा नहीं होता, तो आप जो है ना वो कंटिन्यू रखें ठीक है। और ये इमरान भाई कहते हैं बाजी टॉपिक है उधार हम जमानत से देते हैं कोई मसला नहीं, ओके चलिए अच्छी बात है।

ये मसे हो जाता है. अच्छा रुखसाना लाशारी हमारे साथ मौजूद है. असा डींदा आयो पर घुरंदा आयो तो मानो वापसी में तड़पाइंदा आन. बिल्कुल रुखसाना इयां ही थिंदो आहे. आई वरी पो दिल जका ना खराब थिंदी आ त असन छोथा जो मानन के बाबा पैसा मानन के त असन कदर ही कोने को सो बिल्कुल इयां थिंदो आहे. और ये क्या कहते अरे तोखा उधार केर घुरे तो नालो बधाए नालो न बताएंगे नालो न बताएंगे हम दंगे हो जाएंगे वरना. चले यहाँ पर टाइम हुआ जाता है जरा हम शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक की जानेब जाते हैं. उसके बाद जो है ना वो शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक ही है. उसके बाद जल्दी से वापसी आप लोगों के पास आते हैं. तो आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ मौजूद रहिए, सुनते रहिए, एंजॉय कीजिए. पूरी पूरी 3 बजे तक आपका हमारा साथ ही जना प्रोग्राम व्हाइट एश एंड डी स्किन ब्यूटी शो में. और मैं यूं जाकर यूं वापस आ रही हूँ. तो सुनते रहिए व्हाइट एश एंड डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड बाय व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट.

0: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन। मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, शानदार तालीमी इमारत, प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन, एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार, मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला, सरसब्ज बागीचा, बेहतरीन फर्नीचर, शानदार कंप्यूटर, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स, ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत, केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जो, एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिल तहसीन नतायज, खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले, तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले, स्टडी टूर्स, अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम तरबियत के लिए आज ही मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें। मजीद राबते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन, मैनेजिंग डायरेक्टर मजहर स्कूल सिस्टम, 03000027234। निसार अहमद मेमन, प्रिंसिपल मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, 03013865453।
1: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर, एटलस होंडा मोटरसाइकिल पर एतमाद, अइमा अख्तियार 3S डीलर, आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल, कंपनिया जे मुकरर कर रेट ते दस्तियाब आहे, सर्विस सेंटर, एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर, सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे, होंडा कंपनिया जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद, आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो, कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए, जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर, फ्यूल एडजस्टमेंट, आरपीएम जी एडजस्टमेंट, कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी, होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी, आशिक होंडा मोटर्स, एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर, राप्ते जिला आसिम हुसैन आराई, 03073592120।
2: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेहरापुर, कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम बी इस्लामाबाद, होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह, हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर सूमर

0: मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वज़न जो न वधण उन्हें सभी बीमारियों जो कामयाब इलाज कयो वने तो राबते लाए 0301-9196-851।
1: खूबसूरती जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स ऐं जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवां जी स्किन के बनाए निखरी ऐं चमकदार सिर्फ बिन डीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म ऐं डीए कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर डीह जो शो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: खुशखबरी हाँ अवां जे पांजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन ऐं नहन एलर्जी कॉस्मेटिक ऐं वचड़ंदड़ बीमारियुनि जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोज़ानो शाम जो असर निमाज़ खां इशा जे निमाज़ ताईं ऐं हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक नज़द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहराबपुर। वधीक राब्ते जे लाइ 0385-569-0300-33-8556-9।
3: अस्सलाम वालेकुम अदा।
4: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
3: अदा नओ दुकान खोलियो अथम पर हले ही न तो, छा कजे?
4: अदा दुकान जी मशवरी कराई अथई?
3: न अदा।
5: यार आजकल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
3: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
4: हां अदा, कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
3: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
5: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर।
4: राबते लाए हाकिम अली जिस्कानी
6: 0301-399-2836।
7: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है, सुनते रहो जी FM 94।

ओके जी, सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो तव्हां इस्तेमाल कयो उधार पैसा ॾियण बंदि कयो. अच्छा हिकिड़ी ॻाल्हि आहे, मतिलबु मूंखां कोई पैसा वठंदो आहे न, मतिलबु हिकिड़ो ॿुधायां थी ज़ाती तजुर्बो. मूंखां कंहिं पैसा वरिता त पैसा ॾे ज़रूरत में न मथे महीने तव्हांखे ॾींदसि मोटाए, ठीकु आहे? ऐं मूं चयो ठीकु आहे भला मथे महीने में, मथे महीने जी ॻाल्हि आहे, जल्दी मिली वेंदा. ऐं उन्हनि पैसनि खे 15 महीना थी विया आहिनि, मूंखे अञा ताईं कोन मिलिया. सम्झो था, त हीउ मथियो महीनो शायदि अञा ताईं कोन आयो आहे. सो इहा हक़ीक़त अथव, मिटियूं माइटियूं दोस्तियूं सभु जेके न ख़तमु थींदियूं जॾहिं तव्हां पैसा उधारा कंहिंखे ॾींदा आहियो. और अच्छा हज़ार खान, तव्हांजो गानो सुभाणे हलाईंदासीं, ठीकु आहे? साइकी गानो तव्हांखे कोई बि भलो ॿुधाए छॾींदासीं. अॼु जेको लिस्ट आहे न उहो फुल थी चुकी आहे. मुंहिंजी तव्हांजे कॉमेंट ते नज़र हाणे पई सिर्फ़ आदिल कहते हैं टॉपिक आंसर, हम पैसे नहीं लेते लोगों को पता है. अच्छा, यानी कि आपसे पैसे नहीं लेते. सही सही, हाँ, मतलब इतना तो इंसान खड़ूस होना चाहिए कि अगला इंसान सोचे कैसे लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए. ओके जी, ओके, बहुत बेहतरीन. और उसके अलावा अच्छा सच्ची बताएं कि शुरभ में आपके ख्वाब में आई थी, मतलब वो जो सब आपने बोला वो एम ही था. अच्छा अली महर उनर भाई क्या कहते हैं, वालेकुम अस्सलाम, तन्हा अली आप राम नवाबशाह से. अच्छा जी, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद है, आपने लंबी सी शायरी भेज दी है. सो आपको बस मैं यही कहूंगी कि आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल लाजमी करके देखिएगा. और डी स्किन ब्यूटी क्रीम अगर आपके एरिया में नहीं मिल रही तो आप डायल कीजिए 03-15-799-0595. सो ये नंबर आपकी आसानी के लिए है, ताकि आप लोग परेशान ना हो जाएं कि हम कहां से जाकर परचेज करेंगे, हमारे एरिया में मिल रही है नहीं. अक्सर ऐसा है कि लोग जो है ना वो मुझसे ये भी कहते हैं कि बाजी के सांझे गोठ में मिले थी कौन, ऐसा पूछा कौन कराई, या पर तव्हां ॿुधायो त मिले थी या न थी मिले. त अगरि मां तव्हांखे ॿुधाए इन खां बहितर आहे त हीउ जेको नंबर तव्हांखे ॿुधायो वञे थो प्रोग्राम में, इन नंबर ते तव्हां राबितो कयो, इन्हनि खां मालूमात वठो त किथे किथे अवेलेबल आहे ऐं तव्हां किथां कॉल कया उन्हनि खे, या मालूमात हुजे जीअं तव्हांखे गाइड करे सघनि, त तव्हां कहिड़े जनरल स्टोर तां कहिड़ी दुकान तां वञी वठी सघो था. सो नंबर ते राबितो तव्हां लाज़मी कजो, जेको आहे 0

ओगरी डाडू बलू गानो हलाए थम दर्दी दिल कहती है शो सुनते सुनते याद आया कि मैसेज तो मैंने किया ही नहीं चलिए अच्छा किया आपने मैसेज कर दिया बता दिया करेंगे वाकई आप हमारे साथ मौजूद हैं वासु भाई आपका भी बहुत शुक्रिया और ये जी राहिब अली खोसू हमारे साथ मौजूद हैं आप हमें कश्मीर से सुन रहे हैं थैंक यू सो मच आपको प्रोग्राम पसंद

0: अच्छा दर्द दिल कहती है तारी गवाह है आज तक जिसे भी मैंने पैसे उधार दिए मुझे मिले नहीं है, मिलने भी नहीं बाबा, मिलने भी नहीं
1: हो जाए लखन की रोड़न में ही मेरो न हो जाए।
0: अच्छा हाला जी खट्टा हाला एक ब्रांड आओ ना जी गाल पे थे राहे बात आज मोहब्बत आइन बाबा डी स्किन ब्यूटी क्रीम मिले थी कौन कश्मीर में पुछा रख जो डी स्किन ब्यूटी क्रीम तमाम जे एरिया में नथी मिले तो बाबा पुछा करे नंबर दे राबतो जरूर कजो डी स्किन ब्यूटी क्रीम तमाम इस्तेमाल कयो पया कोन मुखे यो भी बुधायो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जका आई तमाम जे खूबसूरती के सफा चार चंड लगाए छडी सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगायो ए सोना सोना थी वे।

अच्छा हिदायत ना, वैसे ये आपकी ख्वाहिश शायद कभी पूरी नहीं होगी क्योंकि ऐसा होगा ही नहीं। हजार भाई कहते लगे तो हाँ बिल्कुल ही है यहाँ हजार भाव। और ये हाले सुल्तान हमारे साथ है। वालेकुम अस्सलाम हाले सुल्तान। ओके जी अमानुल्लाह टगर भाई हमारे साथ मौजूद है मिठानी से, शो उम्दा है आपका। अमानुल्लाह भाव आके तमाम सही था चो हवा आए कोने तो उन्हें दम किया।

आओ जी माण्हू हुई लखनि करोड़नि जो अगरि वाकई लख करोड़ न खायां त अच्छा हिदायत लाइ वो पैसे मुझे भी लग रहा है क्या मुझे भूलने चाहिए वैसे वो पैसे थे बहुत ज्यादा मैं चाह कर भी नहीं भूल सकती इहो मथियो महीनो लॻे थो ईंदो ई कोन कॾहिं अञा बिल्कुलु इहा ॻाल्हि आहे हाणे उन्हनि जेको न ॻाल्हाइण ॿोलाइण बंदि करे छॾियो आहे त मथां पैसा घुरनि हक़ीक़त अथव अलायो ज़िंदगी जो वॾो सबक़ु अथव तव्हां इहो सिखी छॾियो त तव्हां जेको आहे न कंहिं ते बि यकीन न कजो ख़ासि करे पैसनि जे मामले में अमानुल्ला खे हिते हक़ीक़त आहे मुंहिंजा बि पैसा आहिनि हिकु दोस्त ॾे 2 साल थी विया न अञा ताईं हुनजी 15 तारीख़ उहो न थी अचे बिल्कुलु सो प्रोग्राम आहे तव्हांजो पंहिंजो वाइट एश एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट जे तावन सां तव्हां ताईं पहुचायो वेंदो आहे वाइट एश जा प्रोडक्ट्स आहिनि बाबा डी स्किन जा प्रोडक्ट्स आहिनि तव्हांजी ख़ूबसूरती हाणे तव्हांजे हथ में अथव तव्हां वञो ऐं वञी वठी अचो अगरि तव्हांजे एरिया में न आहिनि अवेलेबल त डायल कयो 03-15-799-0509 ऐं उन खां अलावा जेको आहे

बस सही वाह, बस सही वाह। अच्छा जी, उनका अलावा सोनी चाहिए थी आप ही। ओके जी, ये वैसे गाना जो मैंने लगाया ये कश्यप ने हमें फरमाइश कर दी थी, तो आतिफ का गाना भाई मैं चलाऊंगी, पता नहीं क्यों आतिफ के गाने चलाने में मुझे थोड़ा सा पता नहीं क्यों नहीं लगा पाती मैं। चलेंगे, चलाएंगे आपके लिए गाना, ठीक है शोनी। और ये इमरान भाई कहते हैं कि बाजे ही

गानों तो हिलाए जो बाजा सुबाने सुबाने फरमाइश कर जान ठीक है। अरे बा आपका भी बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ मौजूद हैं। और माहिन कहती है कैसी हो आप माहिन मसफा बिलियन दाम बताया कना जाहिर थी आयो और कहती है कि उधार की बात कर रही हो मुझे तो लोग मिसलाई करती हूँ ना वो भी ठीक तरीके से पैसे नहीं देते तो बाबा मानो एडो हक खाने जा मायर थी व्यान अल्लाह तो बा अज लगी तो असा प्रोग्राम में डाढ़ी मानन की गिला वैसे ना कि गिला ना चाहिए ये हकीकत है। ओके याकू मंगी भा तवा जो मोहब्बत प्रोग्राम बुधो पया चले री तारीफ भी सच्ची थी और ख्वाब भी सच्चा था माशाल्लाह माशाल्लाह मेहताब अली इंटर भाष से सेकंड मौजूद है वालेकुम अस्सलाम। अच्छा अच्छा अच्छा जो इंसान सोनो हो जाए बो मन जो मेरो ना हो जाए ही ना मुमकिन है ये भी ना ये भी ना ये भी ना और राहिब अली को सुभाई में सुन रहे हैं। अच्छा राहिब भा तव जो गाना सुबाने हलाइंदा सी हारे सुल्तान तवा के प्रोग्राम में पयो बहुत शुक्रिया। अनवर भाई कहते मुखे जोगी हणी दे ढारो उधारा पैसा कदे मिलंदो कड़े मीना भावे सारे सुनियो मोहम्मद मीरन जखनानी भाई हमें सुन रहे हैं जेकब आवाज से बहुत शुक्रिया भाई जान। और जी लग रहा है कि अभी आप लोगों से इजाजत ले लें क्योंकि हमारे जाने का वक्त बिल्कुल करीब आ चुका है। वरी इंशाल्लाह तमा से मुलाकात जगह थींदी वहा मुझे सुभाने वाले प्रोग्राम में थींदी। बिल्कुल जी सो खूबसूरती तुम हासिल करी सको था जदी तुम इस्तेमाल करना डी स्किन ब्यूटी क्रीम आई वाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट जो था जिन मानन असा के हाने बुदन स्टार्ट के दो उनके बताइंदा हालू तो बाबा डी स्किन ब्यूटी क्रीम तुम इजीली वठी सको था किथा भी तुम के मिलंदी आई डी स्किन ब्यूटी क्रीम सा अगर तुम के डी स्किन फेस वॉश भी वठनो आए डी स्किन ब्यूटी क्रीम ता अकेली ने लगाए जो फेस वॉश गड लाजमी लगाए जो उनका अलावा अगर असा वाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट जो जिक्र कयो तो वाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स में तुम के मजेदार प्रोडक्ट्स मिलन पया जी वाइटिश ब्यूटी क्रीम आहे वाइटिश ब्यूटी सोप आहे व्हाइट एज फेस वॉश है व्हाइट एज डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब है एक्नीज लाए आई व्हाइट एज लवली क्रीम है जेका फेयरनेस क्रीम है उनका अलावा एड़ा खोर सारा प्रोडक्ट है जेके तमा इजीली वनी वठी सगो था इस्तेमाल करे सगो था इस्तेमाल कयो सोना सोना थियो माने खूबसूरती के निखारियो आई सफाई चमकंदा वतो ठीक है आई हाने इजाजत वठू था वरी ना इंशाल्लाह तमा से मुलाकात मुझे जेका थी वा सुभाने वाले प्रोग्राम में थेण वाली है 1 बजे का 3 बजे तई तमा जो सने साथ हुंदो है डेली बस जुमो छडे ऐसो पापा कहते का गलती थी हुजे कोई डो लव्स गाला हुजे जेको तमा के न सुठो लगो हुजे तमा माजरत कया सो मोकलानी ना है बाबू सिन सलामत सा सलामत अल्लाह हाफिज बाय बाय लव यू ऑल एंड टेक केयर।

सिंध में पानी बहरान संगीन थी पो वारन समेत बया पोखियल फसल पानी न मिलने सबब सुकन लगा पंजाब के पुरहोर बरकरार जरिए सिंधु दरिया में पानी खणत जारी सिंध में पानी के खोट 56 सैकड़ों तक पहुंची पी कोटनी बैराज 56 सैकड़ो गुलू बैराज 33 सैकड़ो खोट बरकरार सक्कर बैराज के पानी की शदीद खोट आबादगा सरलू बेजो पखण लाइ परेशान गुलू बैराज मथा वेकरो 75,000 हेठों वेकरो 54,000 क्यूसिक रिकॉर्ड सक्कर बैराज के मथा वेकरो 50,000 हेठों 18 क्यूसिक थी पो कोटनी बैराज कोटली डाउन स्ट्रीम में पानी छोड़ बंद थे बाद दरिया में वारी उडामन लगी कोटली बैराज में निकलदड़ बहाव में भी पानी घटी वो डाउन स्ट्रीम में पानी बंद थे बाद इंसान तोड़े जानवर पीने के पानी लाए परेशान छचो सजावल बदीन चंड मोहम्मद खान में सूरत हाल संगीन हैदराबाद डिवीजन के बिन्ही जिलन मीरपुर खास डिवीजन में भी पानी बहरान संगीन थी वो पानी निमलन सबब पोखियल फसल भी सुकन लगा मीरपुर खास शहीद मिर्जराबाद सखर लालकानो डिवीजन में आबादगार पानी लाइ परेशान फैजगंज चोट जमाली बेन शहर में आबादगार एहतजाज हुकूमत का जरिए पानी की खोट खत्म करने का मुतालबो वफाकी हुकूमत पारा सरकारी मुलाजमन के पगार में 10-15 सैकड़ों तक वाध करण से गौर नाणेवारी वजारत पगार में वाध बाबत तजवीजों वजीर आजम के मोकले छदियों ज़रीन ने चवण है नाणेवारे वजीर मोहम्मद औरंगजेब वजीर आजम शहबाज शरीफ सरकारी मुलाजमन के पगार में 10-15 सैकड़ों तक वाध करण की तजवीज डी है वजीर आजम शहबाज शरीफ सरकारी मुलाजमन के पगार में वाध जो फैसलो इतिहादन से मुशावरत बाद क अमरीका ज ईरान से नवा हमला ईरान जो भी अमरीकी अड्डन से जवाबी बार अमरीकी फौज ईरान के इलाके गोरक अबेट कशम के मिसाइल जरिए निशानो बढ़ाया अमरीकी सेन का मौजूद अमरीकी फौज ईरान के 6 मिसाइल्स के रोको सतों हदब तक पहुंचने में नाकाम रो 4 ईरानी ड्रोन्स के भी अपने हुरमज में तबाह कर वो ईरान के पासवान इनकलाब है अमरीकी हमलों के जवाब में कुवैत में अमरीकी के बिन फौजी अड्डन अमरीकी बेरिया के 5 बेड़ी के निशानो बढ़ाया है।

ईरानी ताक़तवर ऐं गैरतमंद आहिनि, तंहिं करे डील करण में ॾुखियाई पेश अची रही आहे। ईरान वटि मुआदे खां सवाइ ॿियो को बि दग न आहे। अमरीकी टीवी खे इंटरव्यू ॾींदे सदर ट्रंप चयो आहे जंग खे हल थियण में वक़्तु लॻंदो, ही कम जल्दी में नाहिनि थींदा। ईरान वटि सिर्फ़ 21 खां 22 सैकड़ो मिज़ाइल बचिया आहिनि। ईरान में असांखे कामयाबियूं मिलियूं आहिनि। अब्न हुरबज मां ॿ घणा आयल टैंकर्स गुज़रिया आहिनि। फ़िलहाल अंग ॿुधाइण नथो चाहियां। तेल जूं क़ीमतूं घटिजी वेंदियूं।

0: ट्रंप मंदमंद ईरानी आसा से बहाल कर डेडलॉक खत्म कर सके तो अमेरिका लाए ईरान असा मुआदे ला 24 अरब डॉलर का बड़ी रकम ना है। ईरानी सुप्रीम लीडर के सलाहकार मौसम रज़ाई है तो अमेरिका के ईरान के शर्त कबूल करण से मजबूर कर वो। अली अकबर विलायती है तो ईरान के ताकतवर थो यूरोप जो बवायतो ख्वाब हकीकत में तब्दील चुको है। ईरान मजबूत है ख्याली नक्शा भी तब्दील रहा है। जडादार अमन लाए बराबरी वाले निजाम की अर्थी देनी पवी। अमेरिका से गारन लाए लबनान से सौदेबाजी करनी हुई है। तेहरान जो वाशिंगटन से मुआदो भी वे हा। ईरानी परदेही वजीर अब्बास अराग़ची लबनानी सदर के लबनान जो दुश्मन करार डींदे है तो लबनानन के हकीकी दुश्मन का आजको मारणो पवो। लबनानी सदर जोसेफ ओन ईरान पे लबनान में मुदाखलत करण का इल्जाम लगाया हुआ। सिक्योरिटी फोर्स हथा गिरफ्तार खारजी दहशतगर्द उमरदीन उर्फ जज्बा छिड़काई इंकशाफ। खारजी दहशतगर्द उमरदीन उर्फ जज्बा वीडियो बयान में चाहे तो 2025 में पीएस से जेड़े बाद सीटीपी में शामिल थियस। खारजी कमांडो से गड 60 का 70 तरगत याफ्ता अगवानी है। खारजन के अफगानिस्तान में मौजूद कमांडोज का माली मदद मिली है।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
3: अल हबीब करंट प्लस अकाउंट। भरोसा भी रफ्तार भी बैंक अल हबीब रिश्ता भरोसे का।
4: माशाला फौजी पाइप फैक्ट्री नर्स गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मैरापुर असावट जगह जो जारियों जगह जा पावा आई पाइप दे ढब 4, 6, 9, 12 इंच में प्लेन आई कालम में मौजूद आहिन। फौजी बायरन लाए खसूसी रियायत हुंदी। राबते लाए फौजी अब्दुल करीम 0301-5431-456
5: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर। होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर। नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पेंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए जैमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPMG एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनिए थी। होंडा जे

0: 3992836
1: ऐं मोहम्मद उमेर गोरी 0319-15-5-724
2: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज GAFM 94

खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेरा पर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम पी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर सूमर।

0: मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज के बने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुर राबते लाए 0301-9196-851।
1: खुशखबरी हानी अवां जे पांजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन आई नहन एलर्जी कॉस्मेटिक आई वचड़ंदड़ बीमारियों जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोजानो शाम जो असर नमाज खां इशा जे नमाज ताईं आई हर आचर ते सुबुह जो 9 वगे खां रात 8 वगे ताईं मरीजन जो इलाज कंदा आहिन। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक नज़ रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहराबपुर वधीक राबते जे लाइ 0300-3385-569-0300-3885-69।

0: जू लेवार ड्यू ऑडियो एंड विजुअल लेक्चर सिस्टम जी सहूलत केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी ए इंग्लिश ते खुसूसी तवज्जो एंट्री टेस्ट इंजीनियरिंग में काबिले तहसीन नतीजा रांदन जो मैदान ए उते मुनक्कद थिंदड़ मुकाबला तहरीर तकरीर ए ज़हनी आज़माइश जा मुकाबला पंजे अखिन जे नूर न्याणन ए प्यारन पुटन जे मुनासिब तालीम ए तरबियत लाए अजुई मज़हर स्कूल सिस्टम मेहरापुर जी विजिट करियो वधीक राबते लाए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन मैनेजिंग डायरेक्टर मज़हर इस कॉन्टेक्ट नंबर 3000027234 निसार अहमद मेमन प्रिंसिपल मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर कॉन्टेक्ट नंबर
1: 0301-3865-435-3
2: मुबारक मतलब हर किस्म जी

0: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
1: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
2: अल हबीब करंट प्लस अकाउंट भरोसा भी रफ्तार भी बैंक अल हबीब रिश्ता भरोसे का

0: It's 4:15 p.m.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
3: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज़ GAFM 94।

0: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीट्स और जदीद माइक्रो बीट्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में। डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
1: आशिक होंडा शोरूम मेहरा पर, एटलेस होंडा मोटरसाइकिल टू पर एतमाद, अम्बा अख्तियार 3S डीलर, आशिक होंडा मोटर्स मेहरा पर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल, कंपनी जे मुकरर कल रेट दे दस्तियाब है। सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर, सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए, जिन्हें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वने थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जैर निगरानी। आशिक होंडा मोटर्स, एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर, राप्ती जिलाए आसिम हुसैन आराई 0307-3592120।
2: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वदन बोटा पेट्रोल पंप कोटरी कबीर रोड मेरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन MA DHMS सिंध RHMP इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर।

पुराणो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमजोरी कन जो वहण कन जो सूर घट ॿुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी ख़ारिश फट फुरड़ियूं ॿारनि में कद जो न वधण मर्दनि ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301 91 896

0: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
1: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
2: अल हबीब करंट प्लस अकाउंट भरोसा भी रफ्तार भी बैंक अल हबीब रिश्ता भरोसे का
3: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज GAFM 94

कुवैत ऐं बहरीन जे ईरानी हमलनि जी मज़म्मत हमला ख़ुदमुख़्तियारी जी वञकड़ी करार। हमला रोकण ऐं अबन हुरमत खोरण जो मुतालबो बहरीनी परडे॒ही वज़ारत चयो आहे त मिज़ाइल ऐं ड्रोन ज़रिए अमन क़ाइम नथो करे सघिजे, नई बारूदी सुरंग विछाए इस्तक़ाम आणे सघिजे थो। ईरानी फौरी तौर ते बिना जवाब हमलनि जो मुसलसिलो बंदि करे अमन जो रस्तो अख़्तियार करे या अकेलो थी वञे। बहरीन जे सब्र खे कमज़ोर न सम्झो वञे। बहरीन पंहिंजे सलामती, ख़ुदमुख़्तियारी, दिफ़ा ऐं अवाम जी सलामती ते को बि कार न कंदो। कुवैती परडे॒ही वज़ारत चयो आहे त हमला मुल्की ख़ुदमुख़्तियारी ख़िलाफ़ आहिनि, दुरुस्त करार नथो ॾेई सघिजे। कुवैत दिफ़ा तहत क़दम खणण जो हक़ रखे थो।

अमेरिका सां ॻाल्हियुनि लाइ लबनान ते सौदेबाज़ी करणी हुजे हा त तेहरान जो वॉशिंगटन सां मुआहिदो बि थी वञे हा। ईरानी परडेही वज़ीर अब्बास राख़्ची लबनानी सदर खे लबनान जो दुश्मन करार ॾींदे चयो आहे त लबनाननि खे हक़ीक़ी दुश्मन खां आजपो मारणो पवंदो। लबनानी सदर जोज़फ ऑन ईरान ते लबनान में मुदाख़लत करण जा इल्ज़ाम लॻाया हुआ। सिक्योरिटी फोर्सेज हथां गिरफ़्तार खारजी दहशतगर्द उमरदीन उर्फ जज़्बा जे छिकाईंदड़ इंकशाफ़। खारजी दहशतगर्द उमरदीन उर्फ जज़्बा वीडियो बयान में चयो आहे त 2025 में पीउ सां जहिड़े बाद टीटीपी में शामिल थियसि। खारजी कमांडोज़ सां गॾु 60 खां 70 तरबियत याफ़्ता अगवानी आहिनि। खारजनि खे अफ़गानिस्तान में मौजूद कमांडोज़ खां माली मदद मिलंदी आहे। कराचीअ में तरक़ियाती कम जारी। शहरनि यूनिवर्सिटी रोड सबबि ॾुखियाईनि खे मुंहुं ॾिनो। यूनिवर्सिटी रोड खे जुलाई जे आख़िर ताईं खोलियो वेंदो। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमण चयो आहे त कराची पोर्ट सिटी आहे, मोटरवे जी शुरूआति हितां खां थियणु घुर्जे। वफ़ाक सदाई मोटरवेज़ जे मामले ते सिंध खे घटि तरजीह ॾिनी आहे। पूरे मुल्क जे ट्रांसपोर्ट सिंध जे बुनियादी ढांचे खे नुक़सान पहुचाए थी। पूरे मुल्क में मोटरवेज़ ठही विया आहिनि पर सिंध में नाहिनि ठही सघिया।

0: चीन में पाणी बहरान संगीन थी वयो। वाणनि समेत बिया पोखियल फसल पाणी न मिलण सबब सुकण लगा। पंजाब जी बहोर बरकरार, तकरारी फिल्ट कैनाल ज़रिए सिंधु दरिया मां पाणी खणत जारी। सिंध में ज़रई पाणी जी कोड 56% ताईं पहुची वई। कोठली बैराज ते 56%, गुडू बैराज ते 30% कोड बरकरार। सखर बैराज ते बि पाणीअ जी शदीद कोड। आबादगा सारेलु जो पोखण लाइ परेशान। गुडू बैराज जो
1: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
2: माल तैयार है, ट्रक खड़ा है, मजदूर खड़े हैं, बस एक चीज का इंतजार है, पेमेंट। कारोबार चलाने के लिए सिर्फ सामान नहीं, रिलायबल बैंकिंग भी चाहिए होती है। बिजनेस करना आसान नहीं, लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए। इसलिए मेरे पास है बैंक अलहबीब का अलहबीब करंट अकाउंट, जिसमें मिले फ्री चेकबुक, डेबिट कार्ड, बैंकर्स चेक, ई स्टेटमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग, अलहबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट फैसिलिटी, ATM और कैश डिपॉजिट मशीन की इजी एक्सेसिबिलिटी, मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क। अलहबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी, रफ्तार भी। बैंक अलहबीब, रिश्ता भरोसे का।
3: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम बहरा पर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम महरा पर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए, जै में मिले थी मोटरसाइकिल की कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPMG एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरा पर राब्ते जे लाए 0320180003।
4: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन। मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, शानदार तालीमी इमारत, प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन, एयर कंडीशन एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार, मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला, सरसब्ज बागीचा, बेहतरीन फर्नीचर, शानदार कंप्यूटर, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स, ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत, केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जो, एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिल तहसीन नतायज, खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले, तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले, स्टडी टूर्स, अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम तरबियत के लिए आज ही मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें। मजीद राबते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन, मैनेजिंग डायरेक्टर मजहर स्कूल सिस्टम, 03000027234। निसार अहमद मेमन, प्रिंसिपल मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, 03013865453।
5: मेहरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो, अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
6: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बार यह दस्तयाब आई।
5: हाँ यचो मेहरान आयरन स्टोर नज बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी।
6: राबते लाए प्रोपराइटर गुलाम नबी मुगल, 03003204372 आई 0242460100।

लेन ऐं कालम में मौजूद आहिनि। फौजी भाइरनि लाइ ख़ुसूसी रिआयत हूंदी। राब्ते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-54-31-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-16-23-793।

0: बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलामु अलैकुम। जीएस अखर एफएम 88 जी लाइव स्टूडियोज का प्रोग्राम लीगल कॉर्नर में आवा हां बाबर शेख अवां सां गड। इन्हीं उम्मीदों सां त अवां बिल्कुल ठीक ठाक हुंदा। अल्लाह पाक अवां सभिनी ते पंहिंजी रहमतुनि जा साया बरकरार रखे। समय प्रोग्राम लीगल कॉर्नर जंहिंमें असांजो अॼु जो मौज़ू आहे फंडामेंटल राइट्स इन पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन 1973 एंड द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। अॼु असीं सम्झंदासीं त पाकिस्तान जो कॉन्स्टिट्यूशन 1973 ह्यूमन राइट्स खे ऐं गॾु गॾु यूनिवर्सल डिक्लेरेशन बि मिलियल आहे ह्यूमन राइट्स खे, उन तहत सिटीज़न्स खे कहिड़ा बुनियादी राइट्स जेके आहिनि त हासिल आहिनि ऐं उन्हनि जी अहमियत कहिड़ी आहे। सो इन ई टॉपिक सां वाबस्ता असां सां गॾु स्टूडियोज़ में एडवोकेट मोहम्मद मुजतबा पीरज़ादा साहब मौजूदु आहिनि, जेके एडवोकेट आहिनि हाई कोर्ट में ऐं 6 ईयर्स सां वाबस्ता आहिनि। गॾो गॾु लेक्चरार बि आहिनि लॉ कॉलेज में, यानी लॉ जे मुतालिक़ इन्हनि खे तमामु सुठी नॉलेज आहे जेका असां इन्हनि खां वठण जी अॼु बि भरपूर कोशिशि कंदासीं। सो अव्हांखे ॿुधाईंदो हलां त प्रोग्राम में लाइव कॉलेज ज़रिए असांखे ज्वाइन बि करे सघंदव ऐं अव्हांजा लाइव सवाल हुजनि या तव्हांखे का लीगल कंसल्टेशन घुर्जे त उहा बि तव्हांखे एडवोकेट साहब ॾींदा, फ्री ऑफ कॉस्ट ॾींदा, जिते कोई बि चार्जिस कोन हूंदी। ऐं एज़ वेल एज़ तव्हां असांखे व्हाट्सएप ते पंहिंजो फीडबैक ॾेई सघंदो, पंहिंजा सवाल बि पुछी सघंदो। असांजो व्हाट्सएप नंबर आहे 03000113488। त वेलकम चवंदासीं साईं मोहम्मद मुजतबा पीरज़ादो साहब खे। सर अस्सलाम वालेकुम एडवोकेट साहब एंड वेलकम टू द स्टूडियोज़।
1: वालेकुम अस्सलाम बाबर साहब, मां पहिरीं त तव्हांजो शुक्रगुज़ार आहियां की तव्हां अॼु इन मौक़े ते मूंखे इनवाइट कयो एज़ अ गेस्ट, ऐं मूंखे इहा बि तमामु ख़ुशी आहे की इन मौज़ू ते जेको बेसिक मौज़ू आहे असांजी सोसाइटी जो, मूंखे मौक़ो ॾिनो त मां पंहिंजी राय पेश करे सघां। थैंक यू वेरी मच
0: सर, यू वेलकम ऑलवेज। सर पाकिस्तान जो कॉन्स्टिट्यूशन आहे 1973 एंड द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, ॿिन्हिनि जो फोकस मां सम्झां थो साॻियो ई आहे त सिटीज़न जा राइट्स हुजनि फंडामेंटल एंड एज़ वेल एज़ जेको आहे डिग्निटी एंड फ्रीडम। अवां टॉपिक जी तरफ़ हलण खां पहिरियां असां चाहींदासीं त तव्हां हिन ते थोरो शॉर्ट असांखे इंट्रोडक्शन ॾियो त हिन जो वधीक कहिड़ो मक़सदु आहे ऐं हिन जे हिन कॉन्स्टिट्यूशन में जेके सिटीज़न जा राइट आहिनि उहे कहिड़ा कहिड़ा आहिनि।
1: फर्स्ट ऑफ ऑल, असां अगरि ॻाल्हि कजे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973, तव्हांखे मां इहो ॿुधाईंदो हलां कि कंहिं बि डेमोक्रेटिक मुल्क जो या सिविल सोसाइटी कोई बि स्टेट आहे उन जो जेको सुप्रीम लॉ थींदो आहे उनखे असां कॉन्स्टिट्यूशन चवंदा। ईअं ई असांजे मुल्क जो कॉन्स्टिट्यूशन 1973, हाणे इन कॉन्स्टिट्यूशन जो मेन मक़सदु इहो आहे कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स अमंग द डिपार्टमेंट्स, ऐं इन खां अलावा जेको बेसिक जेको मौज़ू आहे इन कॉन्स्टिट्यूशन जो कि फंडामेंटल राइट्स जेके सिटीज़न जा आहिनि उहे इंश्योर कया वञनि कि उन्हनि खे प्रॉपर मिलनि। उन में मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा फंडामेंटल राइट्स आहिनि। अदर साइड अगरि ॻाल्हि कजे ह्यूमन राइट्स जी, त हिकिड़ी शइ तव्हां सम्झो, कॉन्स्टिट्यूशन वर्क कंदो विथ इन अ पाकिस्तान, ऐं ह्यूमन राइट्स जा जेके बि तव्हांजा बेसिक राइट्स आहिनि उहे वर्क कंदा ग्लोबली।
0: ओके,
1: इहो डिफरेंस आहे सिर्फ़।
0: ऑल राइट, अच्छा सर, फंडामेंटल राइट्स इनखे थोरो डिफाइन कंदा प्लीज़।
1: फंडामेंटल राइट्स इनखे तव्हां इहो बि चई सघो था कि तव्हांजा बुनियादी हक़ूक़ कहिड़ा आहिनि। ॾिसो, तव्हां हिन मुल्क में पैदा थियो, ठीकु आहे न, त तव्हां नेशनलिस्ट आहियो हिन मुल्क जा, त स्टेट तव्हांखे ओन थी करे ऐं स्टेट खे तव्हां पे था कयो थ्रू टैक्सिस या कंहिं बि शयुनि सां। त हाणे इहा स्टेट जी ज़िमेदारी आहे कि जेको तव्हां स्टेट खे पैसा ॾियो था त स्टेट तव्हांखे शयूं प्रोवाइड करे, उन शयुनि खे असां चवंदा आहियूं बेसिक राइट्स।
0: ओके, ऐं साईं इंपॉर्टेंस छा आहे जेकी ह्यूमन राइट्स आहिनि, हिन जी इंपॉर्टेंस असांजी सोसाइटी में केतिरी आहे?
1: तमामु मुंहिंजी नज़र में तमामु वॾी इंपॉर्टेंस आहे। ॾिसो, हिकिड़ी शइ तव्हां सम्झी वठो हिन शइ खे, ह्यूमन राइट्स जेके आहे, जंहिंखे असां यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स चवंदा आहियूं, इहा आई आहे 1948 में।
0: ओके,
1: ऐं कॉन्स्टिट्यूशन असांजो इम्पोज थियो आहे असांजे 1973 ते। ऐं हाणे इहा ह्यूमन राइट्स फंक्शन कीअं करंदी? तव्हां अगरि फंडामेंटल या बेसिक राइट्स ॾिठा वञनि त ह्यूमन राइट्स जा बि सेम आहिनि ऐं कॉन्स्टिट्यूशन जा बि सेम आहिनि, आर्टिकल जो सिर्फ़ु फ़र्क़ु आहे। हाणे इन में इहो आहे कि ग्लोबली ह्यूमन राइट्स कम कीअं करंदी, कि असां जेको असांजो मुल्क आहे उहो इम्पोज कराईंदो या ह्यूमन राइट्स ग्लोबली इम्पोज इन कराईंदी थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन।
0: सही,
1: त इहे ई शयूं असांजे कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्ट कयूं, जंहिंखे असां ॿियनि लफ़्ज़नि में चवंदा आहियूं कि फंडामेंटल राइट्स।
0: ठीक है. अच्छा मां अगर इन ते अचां कॉन्स्टिट्यूशन ते अचूं कुछ आर्टिकल्स ते असां डिस्कशन कंदासीं. सर आर्टिकल 9 में राइट टू लाइफ आहे, इन खे तव्हां कीअं भई ॾिसो, इन में कीअं ब्रीफ थियल आहे इहो आर्टिकल?
1: जीअं मां तव्हांखे अर्ज़ु कयो कि सभिनि खां पहिरां काई बि शइ क्लेम करण लाइ तव्हांखे सभिनि खां पहिरां ज़िंदा रहणु ज़रूरी आहे.
0: ओके
1: ठीकु आहे न. तव्हां ज़िंदा हूंदो त तव्हां मानी बि खाई सघंदो, तव्हां काई बि शइ खाई सघंदो,
0: मतिलबु ॼमण खां वठी करे जेके हाणे
1: इन छो की ॾिसो न, तव्हां स्टेट जी ज़िमेदारी आहियो त इहो स्टेट जी अवलीन तरजीह आहे, मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल आहे कि स्टेट खे इंश्योर करणु खपे कि तव्हांजी प्रोटेक्शन लाइफ हुजे. इन जूं वरी मुख़्तलिफ़ रेमेडीज़ असां वटि अवेलेबल आहिनि कानूनी. हाणे जीअं असांजो मुल्क में जेको जुडिशरी सिस्टम आहे उहो डिवाइड थियल आहे, असांजे सभिनि खां पहिरां अचे थी लोअर कोर्ट्स, जेके असां चवंदा आहियूं डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी. उन खां पोइ अचे थी असांजी हाई कोर्ट्स,
0: ठीकु आहे,
1: जंहिंखे असां डिवीज़न वाइज़ खणी वेंदा आहियूं या सूबाई लेवल ते. उन खां पोइ अचे थी सुप्रीम कोर्ट. इन जी सभिनि खां पहिरां रेमेडी स्टार्ट थी तव्हांजी पुलिस ऑफिसर सां या लॉ एनफोर्समेंट जेके बि तव्हांजो एजेंसीज़ आहिनि, तव्हां हुनखे एप्लीकेशन ॾींदो अगरि तव्हांखे काई थ्रेट आहे लाइफ जे हवाले सां, उहो हुन ते कमु करंदा. जे अगरि तव्हां सम्झो था कि प्रॉपर कमु हिन ते न थी सघियो आहे त तव्हां हिकिड़ी प्रोटेक्शन जी एप्लीकेशन फाइल करंदो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में.
0: ओके
1: त तव्हांखे लीगल प्रोटेक्शन ॾिनी वञे. इफ़ यू आर नॉट सेटिस्फाई विद द डिसीजन ऑफ द लोअर कोर्ट, पोइ तव्हां वटि कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी आहे जंहिंखे असां रिट चवंदा आहियूं या जंहिंखे असां चवंदा आहियूं कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन अंडर आर्टिकल 199. पोइ तव्हां हाई कोर्ट में पंहिंजी प्रोटेक्शन क्लेम करदो.
0: अच्छा राइट टू लाइफ जी आर्टिकल 9 में आहे, अगरि को हिनखे वायोलेट करे थो देन असांजे लाइ ही रेमेडीज़ मौजूदु आहिनि.
1: यस
0: ओके. सेशन्स कोर्ट देन वरी हाई कोर्ट आहे ऐं
1: ॿियूं. उनखां पोइ सुप्रीम कोर्ट में बि आर्टिकल 184.
0: अच्छा इन ते थोरो असांखे वाज़े कयो कीअं मतिलबु कोई असां इहो जेको राइट आहे वायोलेट करे सघे थो, ज़िंदगी खां कीअं महरूम करे सघे थो, इन ते थोरो तफ़सील विझंदा.
1: मिसाल तव्हां हिन फ्लैट में या हिन जॻह ते आहियो, तव्हांजी कंहिंसां मुंहमारी थी वई आहे, ठीकु आहे. हाणे जंहिंसां तव्हांजी मुंहमारी थी आहे उहे जेके आहिनि तमामु स्ट्रॉन्ग क़िस्म जा माण्हू आहिनि,
0: सही,
1: ऐं उहे तव्हांखे थ्रेट था करनि कि तव्हां अगरि हिते ईंदो या हिन एरिया ते क्रॉस कयो त असां तव्हांखे मारंदासीं.
0: सही.
1: हाणे इहा तव्हांखे थ्रेट आहे.
0: ओके
1: ठीकु आहे. हाणे तव्हां वटि रेमेडी छा आहे? तव्हां वटि रेमेडी आहे कि तव्हां लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ जेके बि आहिनि असांजी पुलिस फोर्स आहे उनखे तव्हां एप्लीकेशन ॾींदो कि भाउ मूंखे फलां फलां माण्हू जी तरफ़ां थ्रेट्स आयल आहिनि, स्टेट इंश्योर थी करे मुंहिंजो राइट, ठीकु आहे न, तव्हां मूंखे काइंडली लीगल प्रोटेक्शन प्रोवाइड कयो. उनखां पोइ स्टेप बाय स्टेप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ईंदो तव्हां, जंहिंखे असां चवंदा आहियूं जस्टिस ऑफ पीस में तव्हां 22A 22B में जेको आहे सो तव्हां प्रोटेक्शन सीक करंदो. उन खां पोइ तव्हां हाई कोर्ट में ईंदो रिट पिटिशन अंडर आर्टिकल 199 में. उन खां पोइ तव्हां सुप्रीम कोर्ट में ईंदो आर्टिकल 184 सबसेक्शन 3 में.
0: ऑल राइट. सो हिते कुझु कॉलर्स खे बि असीं शामिल कंदासीं. असांजो लाइव कॉलिंग नंबर आहे 03000113488 एंड गॾो गॾु तव्हांजा फीडबैक जेके आहिनि उहे बि प्रोग्राम में मां इंक्लूड करण वारो आहियां ऐं उन खां बाद में असीं टॉपिक सां रेलिवेंट गुफ़्तगु कंदासीं. अच्छा जेको आहे मुस्तफ़ा साहिबु, सवालु आयो आहे स्क्रीन ते त जेकॾहिं कंहिं माण्हू जा बेसिक राइट्स मुतासिर थियनि था त हू सभ खां पहिरियों क़दम छा खणी सघे थो? सजाद अली फ्रॉम सखर, योर प्रोग्राम इज़ वेरी गुड. साईं ही मुंहिंजे ख़्याल में हाणे तव्हां ॿुधाए चुका आहियो, तव्हां वधीक जवाबु ॾियणु चाहींदा.
1: सजाद साहिबु, के तव्हां इहो चई सघो था कि तव्हांजे राइट्स जी नोयत छा आहे?
0: ओके
1: हिकु थींदा आहिनि तव्हांजा प्राइवेट राइट्स आहिनि, उनजो त मां तव्हांखे प्रोसीजर ॿुधाए चुको आहियां. हिकु थींदा आहिनि की तव्हां कंहिं डिपार्टमेंट जा इम्प्लॉय आहियो, उते तव्हांजे फंडामेंटल राइट्स खे वायोलेट कयो थो वञे. मिसाल तव्हां कंहिं बि डिपार्टमेंट जा इम्प्लॉय आहियो, तव्हांजो नेक्स्ट प्रमोशन ड्यू आहे सीनियोरिटी वाइज़ ऐं तव्हांखे उहो प्रमोशन नथो मिले, त इहो बि हिकिड़ो बेसिक राइट तव्हांजो वायोलेट थियल आहे. त इन में तव्हांजी रेमेडी, पोइ तव्हां कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन में तव्हां ईंदो, पोइ तव्हां लोअर कोर्ट्स में न ईंदो.
0: ऑल दैट. उमीद आहे सजा साहब तव्हांजे जवाबु मिली चुको हूंदो. अच्छा साईं, इक्वलिटी ऑफ सिटीज़न्स आर्टिकल 25, हर शहरी जेके आहिनि इक्वल आहिनि बिना कंहिं डिस्क्रिमिनेशन जे, इन ते थोरो तफ़सीली गुफ़्तगू.
1: इन जो मक़सदु इहो आहे कि तव्हां हिकिड़ी स्कूलिंग सिस्टम वठो. असांजे प्राइमरी एजुकेशन आहे, सेकेंडरी एजुकेशन आहे, पोइ हायर एजुकेशन आहे. इन में तव्हां इहा शइ नोट कंदो कि तव्हांखे एडमिशन न तव्हांजी ज़ात ॾिसी करे ॾिनो वेंदो आहे, न ई तव्हांजो मज़हब ॾिसी करे ॾिनो वेंदो आहे, न ई तव्हांजो रंग ॾिसी करे ॾिनो वेंदो आहे. इट इज़ द प्राइम एग्ज़ाम्पल कि इक्विटी ऑफ सिटीज़न हिन मुल्क में मौजूदु आहे.
0: अच्छा, इहो जेको आहे सोसाइटी में नज़र अचे पियो, स्पेशली लॉ साइड अगरि असां ॾिसूं.
1: ॾिसो, असांजी सोसाइटी वर्सटाइल आहे. असांजी सोसाइटी में तव्हांखे मुख़्तलिफ़ शयूं मिलंदियूं. हिकिड़ियूं जेके आहिनि जेके लॉ खे प्रॉपर तरीक़े सां मञंदा न आहिनि, जेके सोसाइटी लॉ खे कुझु तबिको अगरि नथो मञे लॉ खे, त उहो ज़ाहिर सी ॻाल्हि आहे उनमें हिकिड़ो डिफ्रेंस अची वेंदो आहे. हिकिड़ा असांजे माण्हू आहिनि जेके पढ़ियल लिखियल आहिनि, जेके लॉ अबाइडिंग सिटीज़न आहिनि,
0: सही,
1: उहे कोशिशि कंदा आहिनि की जेको लीगली असांजो राइट्स आहे उनखे थ्रू प्रॉपर चैनल सां ॾिठो वञे. ज़ाहिर आहे सोसाइटी में कुझु फॉल्स आहिनि, इन खे दुरुस्त कयो वञे. लॉस असां वटि मौजूदु आहिनि, पर इम्प्लीमेंटेशन जे हवाले सां थोरो असांजो प्रोसेस जेको आहे उहो सिलो आहे.
0: अच्छा सर, इन डिस्क्रिमिनेशन जी सूरत में जेके आहिनि कोर्ट्स जेके आहिनि, त उहो कहिड़ो रोल प्ले थियूं करे सघनि?
1: कोर्ट्स ॾिसो न, हिकिड़ी तव्हां ॾिठो वञे कि कोर्ट हिकिड़ी वाहिद उमेद आहे हर माण्हू जी नज़र में, कि उन्हनि खे लॻंदो आहे कि कोर्ट में वेंदासीं कि असांजो को न को कमु जेको रहियल आहे
0: मिलंदो,
1: उहो थी वेंदो. पर इन लाइ बि ज़रूरी आहे कि माण्हुनि खे बाशऊर थियणु खपे. अगरि उहो सम्झनि था कि उन्हनि सां का अहिड़ी नाइंसाफ़ी थी आहे, त क्विकली पंहिंजो इंसाफ़ वठण लाइ कोर्ट सां रुजू करनि. अमूमन असांजा माण्हू कॉम्प्रोमाइज़ जी तरफ़ इलाही हली वेंदा.
0: सही
1: आहे, इन कॉम्प्रोमाइज़ जी सूरत में पोइ जेको लॉ आहे उनमें डिसबैलेंस अची वेंदो आहे. पोइ माण्हू तनक़ीद कंदा आहिनि कि असांजी सोसाइटी हीअं आहे हीअं आहे. अगरि तव्हां वटि रेमेडी अवेलेबल आहे, ऐं कानून में रेमेडी ऑलवेज अवेलेबल हूंदी आहे, अगरि तव्हां थोरो शौर वारा हूंदो त तव्हां उहा रेमेडी आराम सां अवेल करे सघो था.
0: मतिलब तव्हां सम्झो था कॉम्प्रोमाइज़ जी तरफ़ थोरो घटि वञणु घुरिजे माण्हुनि खे.
1: अगरि कॉम्प्रोमाइज़ नेसेसिटी आहे, वक़्त जी नेसेसिटी आहे. हाणे ॾिसो न, हिकिड़ो क्लैश थिए थो तव्हांजो घर में,
0: सही,
1: पंहिंजे ई घर में
0: जी,
1: त उन लाइ कॉम्प्रोमाइज़ ज़रूरी आहे कि ठीकु आहे घर जी ॻाल्हि ॿाहिरि निकिरे. ऐं अगरि क्लैश जीअं ॿिनि ॿाहिरनि जे विच में थी थो वञे, अगरि उन में वालिद साहिब विच में अची करे मसलो हल थो करे, देन इट्स गुड.
0: ओके,
1: ऐं अगरि तव्हांजो क्लैश थिए थो ॿाहिरि, त पोइ उन में अगरि तव्हां वटि जेकी लीगल रेमेडी आहे, बहितर आहे की उहा अवेल कयो. उनखां पोइ अगरि कॉम्प्रोमाइज़ जी ॻाल्हि थिए थी, त पोइ भले तव्हां कॉम्प्रोमाइज़ कयो, लेकिन माण्हुनि खे इहो थोरो शऊर अचणु खपे कि लॉ खे अवेल करनि.
0: ठीकु आहे लिसनर्स, बिल्कुलु प्रोग्राम लीगल कॉर्नर जारी आहे, ऐं एडवोकेट मुजतबा पीरज़ादा साहब मौजूदु आहिनि. ऐं तव्हां असांजे लाइव कॉल करे पंहिंजा सवाल बि पुछी सघो था. असांजो लाइव कॉलिंग नंबर आहे 0300-11-3488. ऐं व्हाट्सएप ते बि असांखे तव्हां जॉइन करे सघो था. असांजो व्हाट्सएप नंबर साॻियो ई आहे. तव्हांजा वॉइस नोट्स बि असां इंक्लूड कंदासीं, एज़ वेल एज़ तव्हांजा मैसेजेस जेके आहिनि वधीक शामिल कबा. सो 6 वॻे ताईं हीउ प्रोग्राम जारी आहे. जीए FM नेटवर्क ते तव्हां ॿुधी रहिया आहियो. सो हींअर हलंदासीं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक ॾांहुं. असां सां गॾु रहिजो.
2: जी स्किन डल ऐं बेरोनक लॻे थी, हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो. पेश आहे वाइट एश ब्यूटी क्रीम, अव्हां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग. इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अव्हां खे रेडियंट लुक रोज़ानो जे इस्तेमाल सां. हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट. हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान. वाइट एश ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं. बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एश ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप. वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु. वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज. अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान.
3: रेस्टोरेंट बिजनेस में हर सेकंड मैटर करता है. कस्टमर्स क्वालिटी के साथ डिस्काउंट्स भी चाहते हैं. बिजनेस करना आसान नहीं, लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए. इसीलिए मेरे पास है बैंक अल हबीब का अल हबीब करंट प्लस अकाउंट, जिसमें मिले फ्री चेकबुक, डेबिट कार्ड, बैंकर्स चेक, ई स्टेटमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग, अल हबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट्स फैसिलिटी, ATMs एंड कैश डिपॉजिट मशीन्स की इजी एक्सेसिबिलिटी, मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क. अल हबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी, रफ्तार भी. बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का.
4: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर, एटलेस होंडा मोटरसाइकिल जोपुर एतमाद, ऐं बा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल. कंपनीअ जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर। सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो। कंप्यूटराइज जैपनी स्टैचिंग मशीन जे जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वन थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जैर निगरानी। आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राप्ति जिलाई आसिम हुसैन आराई 0307-359-2120।
5: खुशखबरी जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन MA DHMS सिंध RHMP इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर ए सोम।

के दवा स्टोर दा वठनी पौंदी मारे अमराज नक कन गलो पुरानो नजलो निछो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वने थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन औरतन में वजन जो न वधण उन्हें सभी बीमारियों जो कामयाब इलाज कयो वने थो राबते लाए 0301 91 8051।

0: कॉलेज में अॼु जो असांजो टॉपिक आहे फंडामेंटल राइट्स इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 एंड गॾोगॾु UDHR यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स यानी ह्यूमन राइट्स ते जेको आहे त असीं गुफ़्तगू करे रहिया आहियूं ऐं बेसिक राइट्स कहिड़ा आहिनि सिटीज़न्स जा उन्हनि ते बि असां ॻाल्हाए रहिया आहियूं. तव्हांजो फीडबैक बि प्रोग्राम में शामिल कयूं पिया लाइव कॉल जे ज़रिए. तव्हां असांखे जॉइन बि करे सघो था एज़ वेल एज़ तव्हां असांखे व्हाट्सएप ते बि मैसेज करे सघो था. नंबर आहे 0300-11-3488. सर मुस्तफ़ा साहब असां अचूं था टॉपिक ते त इन ते कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 में सेपरेशन ऑफ पावर्स बि आहिनि, इन मुतालिक अवां थोरो असांखे ॿुधाईंदा.
1: बिल्कुलु, सेपरेशन ऑफ पावर्स हिकिड़ी थ्यूरी आहे या हक़ीक़तन फ्रेंच थ्यूरी असां हिनखे चवंदा आहियूं. सेपरेशन ऑफ पावर कंहिं बि स्टेट खे हलाइण लाइ तव्हांखे सेपरेशन ऑफ पावर लाज़मी खपे. हाणे सेपरेशन ऑफ पावर में तव्हांजा टे जेके इंस्टीट्यूट आहिनि इहे इनखे चवंदा आहियूं असां पिलर ऑफ द स्टेट.
0: ओके,
1: अच्छा, इन में इंस्टीट्यूट्स तव्हांजा कहिड़ा कहिड़ा? नंबर वन ते तव्हांजी एग्ज़ेक्टिव आहे. एग्ज़ेक्टिव उहा थींदी आहे जेके मुल्क खे माना तरीक़े सही तरीक़े सां हलाईंदी आहे. जीअं असांजे मुल्क में प्राइम मिनिस्टर, वी कैन कॉल प्राइम मिनिस्टर एज़ द एग्ज़ेक्टिव ऑफ द स्टेट. उन खां पोइ असांजे अचे थो लेजिस्लेशन्स, ठीकु आहे, या लेजिस्लेटिव्स. लेजिस्लेशन्स उहा थींदी आहे जेकी कानून साज़ी कंदी आहे. जीअं तव्हांजी पार्लियामेंट आहे, कोई बि माण्हुनि जे फ़ाइदे लाइ कोई बि लॉ आहे या कॉन्स्टिट्यूशन में काई अमेंडमेंट करणी आहे, उहा थींदी आहे थ्रू पार्लियामेंट. छोकी पार्लियामेंट में तव्हांजी जेकी बि अवाम आहे उन जा नुमाइंदगा मौजूदु हूंदा आहिनि. उहा लेजिस्लेशन, उहा अलॻि इंस्टीट्यूट आहे हिकिड़ो. उन खां पोइ ईंदी आहे तव्हांजी जुडिशरी.
0: ओके,
1: असांजे मुल्क में सुप्रीम जुडिशरी असांजी, हाणे त फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट बि इस्टेब्लिश थी वई आहे, लेकिन मां तव्हांखे इन खां पहिरां ॿुधायां की सुप्रीम कोर्ट इहो रोल अदा करंदी जुडिशरी जो. हाणे जुडिशरी छा कंदी आहे की जेको बि कानून ठहियो उनखे इंटरप्रिटेशन कंदी आहे, ऐं एडवाइज़री जुरिसडिक्शन बि सुप्रीम कोर्ट खे हूंदी आहे की प्राइम मिनिस्टर खे या प्रेसिडेंट खे लॉ सां रिलेट या जेको कानून ठहियो आहे उन सां रिलेट एडवाइस बि करे सघे थी. हाणे इहे जेके टे पिलर्स आहिनि इहे डिफरेंट डिफरेंट तरीक़े सां कमु कंदा आहिनि, ऐं ज़रूरी आहे की इहे टई पिलर्स जेके आहिनि हिक ॿिए जा माते हुजनि, एक्सेप्ट जुडिशरी.
0: ओके,
1: अगरि इहे फंक्शन प्रॉपर नथा करनि पंहिंजे हिसाब सां त सेपरेशन ऑफ पावर डिस्टर्ब थींदो, ऐं सेपरेशन ऑफ पावर डिस्टर्ब थियण जे करे तव्हांजे मुल्क में जेको लॉ आहे उहो प्रॉपर इम्प्लीमेंट न थी सघंदो.
0: ऑल राइट, सो हिते कुझु कॉलर्स खे असीं शामिल कंदासीं. लेट सी फर्स्ट कॉलर केरु आहिनि असां सां गॾु. जी, अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम. ऑल राइट, कॉल ड्रॉप थी चुकी आहे. लाइव कॉलिंग नंबर मां रिपीट कयां पियो, 0300-11-3488. ऐं लेट सी नेक्स्ट कॉलर केरु आहिनि. अस्सलाम वालेकुम. ऑल राइट, आई थिंक सो कुझु टेक्निकल इशू आहे, दैट्स वाई तव्हांजी कॉल जेकी आहे त प्रोग्राम में शामिल कोन पई थिए. मैसेजेस बि अचनि पिया जेके मां प्रोग्राम में शामिल कंदुसि. अच्छा मुस्तफ़ा साहब, असां हिन ते अचूं अगरि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, इन जे बैकग्राउंड ते थोरो असांखे ॿुधाईंदा त हिन जी ज़रूरत छो पई?
1: इन जे बैकग्राउंड जी अगरि ॻाल्हि कई वञे त इन में हिकिड़ो जेको फेमस ज़िक्र ईंदो आहे उहो तव्हांजो ईंदो आहे मैग्ना कार्टा जो.
0: ओके,
1: मैग्ना कार्टा जो हिकिड़ो चार्टर जेको आहे सो उहो पास थियो 12th century में. उन में किंग जॉन हिकिड़ो हूंदो, उन जे ख़िलाफ़ हिकिड़ो माना रेज़ोल्यूशन पास थियो. छोकी उन टाइम इहो कॉन्सेप्ट हूंदो हो कि किंग इज़ कॉल्ड टू बी द डिवाइन फोर्स. डिवाइन फोर्स सां चवंदा आहियूं की अलाही तरफ़ां माना इहे किंग्स जेके आहिनि आया आहिनि, ऐं किंग इज़ ऑलवेज़ राइट. त उन मां माण्हू जेके आहिनि उहे तंग थी विया. तंग थी विया त उतां जा जेके स्टेट जा जेके ड्यूक्स हुया, जेके असां नवाब चवंदा आहियूं, उन्हनि मिली करे हिकिड़ी इहा रेज़ोल्यूशन पास कई किंग जे अगेंस्ट, जंहिंखे असां लेटर ऑन चवंदा आहियूं की मैग्ना कार्टा. हाणे जेके इहे राइट्स तव्हांखे ह्यूमन राइट्स में नज़र था अचनि, इहे बिल हक़ीक़त जेके राइट्स मिलिया इहे मैग्ना कार्टा मां मिलिया. जीअं सभ खां पहिरां राइट टू फेयर ट्रायल, आर्बिट्री डिटेंशन, ठीकु आहे, नो वन इज़ अबव लॉ.
0: ओके,
1: ठीकु आहे, इहे सॼा जेके आहिनि मैग्ना. हाणे पोइ अॻिते हली ईअं असांजी इस्लामी तारीख़ में बि असां चवंदा आहियूं की फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन या जेको थियो उहो थियो चार्टर ऑफ मदीना.
0: चार्टर ऑफ मदीना,
1: चार्टर ऑफ मदीना जी बि तव्हां अगरि तव्हां हिस्ट्री ॾिसंदव, या पढ़ंदो उनमें बि तव्हांजे राइट्स जी ॻाल्हि कई वई आहे त इहे शयूं खणी करे अॻिते हली ह्यूमन राइट्स हिकिड़ी तंज़ीम ठही ऐं उन खां पोइ तंज़ीम जो सब इंस्टीट्यूट ठहियो जंहिंखे असां यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स चवंदा आहियूं उन इहे आर्टिकल 30 जी सूरत में पाण ॾे एडॉप्ट कया वरी उन एडॉप्टेशन खां पोइ जेके बि डिफरेंट स्टेट्स या रिपब्लिक आहिनि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक उन्हनि पंहिंजे कॉन्स्टिट्यूशन में इहे शयूं एड कयूं
0: So, मुस्तफा साहब कॉलर जी तरफ असीं हलूं पिया लेट्स सी केर आहिनि अस्सलाम वालेकुम
2: वालेकुम
0: जी अदा केर था ॻाल्हायो
2: फौजी अब्दुल
0: ओके अदा मां प्रोग्राम ॿुधी रहिया
2: आहियो जी प्रोग्राम
0: ओके सवाल मां पुछण चाहींदो
2: जी
0: जी पुछो
2: 20 साल पहिरियों ख़रीद
0: कई अदा सॉरी तव्हांजो आवाज़ क्लियर जी ॿीहर ॿुधायो
2: उहे जेको आहे कची लिखत हुई दस्तावेज़ उन्हनि कार्डनि जी कापी वापी लॻियल हुयूं साइन थियल उन खां पोइ हू हितां शिफ्ट थी विया ॿिए पासे हुन असांखे रजिस्टर न करे ॾिनी
0: ठीकु आहे
2: हिन वक़्तु वञी वियो
0: तव्हांजी कॉल बि ड्रॉप थी चुकी जस असां कची लिखत तव्हांजो लफ़्ज़ मां सम्झी सघियुसि सर हिन ते टॉपिक खां अलावा हिननि जे कॉलर थोरो असांजो ध्यानु छिकरायो आहे कची लिखत जी तरफ़ केतिरी हिन जी इंपॉर्टेंस आहे लॉ में छा कची लिखत थिए जेको आहे त माण्हू जेको आहे त क्लेम करे सघे थो अगरि को मुतासिर थिए पियो
1: कची लिखत जी लॉ में का अहिड़ी ख़ासि हैसियत नाहे इन में असां लफ़्ज़ इस्तेमालु कंदा आहियूं खातो
0: ओके
1: जेकी वधि में वधि इहे जेके अदो ॻाल्हि था करनि इहा आहे सिविल साइट सिविल सूट हूंदो आहे ऐं अगरि हिन जो एग्रीकल्चर लैंड आहे त उन में जेको आहे सो मुख़्तियार कार खे इन्वॉल्व करणो पवंदो आहे या रेवेन्यू डिपार्टमेंट खे तव्हांखे एप्लीकेशन मूव करणी पवंदी आहे उन खां पोइ रेवेन्यू डिपार्टमेंट अगरि छा थो रिस्पॉन्स करे उन में अगरि इन में सेटिस्फाई अदो न आहिनि पोइ हिन जी रेमेडी आहे की उहो सिविल सूट में अची सघनि था ऐं सिविल सूट हिन जी फस्ट जेकी रेमेडी आहे उहा सीनियर सिविल जज वटि हे पंहिंजो केस दाख़िल करे सघनि था पर हिन जी अगरि कची लिखत आहे त कची लिखत जे हिसाब सां हे पंहिंजो माना अहिड़ो ख़ासि हिन खे रिलीफ़ नथो मिली सघे अनलेस एंड अंटिल हे अगरि खातो पंहिंजे नाले
0: कराए अस्सलाम वालेकुम जी केरु था ॻाल्हायो था सॉरी अदा तव्हांजो आवाज़ क्लियर कोन थो अचे मां रिक्वेस्ट कंदुसि तव्हांखे तव्हां असांजी जॾहिं कॉल कयो था त लोकेशन अहिड़ी हुजे तव्हांजी जिते तव्हां वटि नेटवर्क जा सिग्नल्स कंप्लीट हुजनि त जीअं तव्हांजो आवाज़ असां ताईं क्लियर पहुची सघे सो लाइव कॉलिंग नंबर जेको आहे मां रिपीट कयां पियो 03000113488 तव्हां कॉल करे प्रोग्राम में एज़ वेल एज़ शामिल थी सघो था हिकिड़ो ॿियो कॉलर आहे देन असां टॉपिक खे कंटिन्यू कंदासीं अस्सलाम वालेकुम जी अस्सलाम वालेकुम जी केरु था ॻाल्हायो दादा अदा सभु हिकिड़े इलाइक़े मां कॉल पिया कयो अॼु हिते नेटवर्क जा सिग्नल्स ई नथा अचनि ओके अदा सॉरी तव्हांजो आवाज़ क्लियर कोन थो अचे ऐं नेटवर्क जा सिग्नल्स तव्हां वटि इशू लॻो पियो आहे जेको आहे मुस्तफ़ा साहब असां टॉपिक ते अचूं पिया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 फ्रीडम ऑफ स्पीच आहे आर्टिकल 19 में त हर शख़्स खे ॻाल्हाइण राय ॾियण इज़हार जी आज़ादी आहे मिसयूज़ ऑफ ॻाल्हाइण जेको मतिलबु अॼुकल्ह थिए पियो उन में ऐं फ्रीडम ऑफ स्पीच में छा डिफरेंस आहे ऐं कहिड़ियूं जेकियूं हिननि ते जेको आहे त लीगल बाउंड्रीज़ आहिनि हिननि में
1: फ्रीडम ऑफ स्पीच तमामु वाज़े थियल आहे मां हिन जी एग्ज़ाम्पल तव्हांखे ॾियां जीअं मां हिकिड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ायां थो हाणे उन इंस्टीट्यूट में मां हिकिड़ी क्लास थो ॿारनि खे पढ़ायां ऐं मां उहा क्लास प्रॉपर न पढ़ाई ॿारनि खे या जेको मुंहिंजो टॉपिक आहे उहो मां ॿारनि खे डिलीवर न कयो त उहो उन में इज़हार करे सघनि था की सर सही पढ़ायो न पढ़ायो या सर खे कीअं पढ़ाइणु खपे या असांखे सम्झ में आयो या न आयो डेट इज़ फ्रीडम ऑफ स्पीच
0: ओके
1: फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इहो थींदो आहे की हिकिड़ो जेको आहे से पंहिंजी राय हिकिड़ी करनि की बाबा सर जी क्लास असां हाणे अटेंड ई न कंदासीं छो की सर सही नथो पढ़ाए ठीकु आहे डेट इज़ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इन में सिर्फ़ु इहो माइनर हिकिड़ो डिफरेंस आहे पर इन में बि हिकिड़ी इहो असांखे राइट त आहे पर इन जी बि लिमिटेशन तय थियल आहे हाणे जीअं मां हिकु तव्हांखे एग्ज़ाम्पल ॾियां मां बारन के सही न पढ़ायो प्रोफेशनल वाइज मां ताके एग्जांपल्स हाँ इन में बार राय दी सकन ता पांजे के सर ता हे टॉपिक सही न पढ़ायो पर बार जेको आ सु मके गलत न था गलाय सकन
0: ओके
1: इन दे फ्रीडम ऑफ स्पीच जो यू मतलब ना है के ता बे के तजलील कियो बे जी
0: राइट
1: या बे जी ता पेस्टी कियो हां ता जो जेको राइट आ जेको ता के समझ में अचे थी न थी अचे वो ता एक्सप्रेस कर सको ता के सर ता जो हे हे हे देखो आसो वीक पॉइंट आ हे स्ट्रांग पॉइंट आ पर जो यो कतन ही मकसद ना है के सर लाइक अब्यूसिव लैंग्वेज
0: ओके
1: जते इन में पो लिमिटेशन रखी हुई
0: ओके ये लीगल बाउंड्रीज मतलब आइन ऑलराइट सो कुछ कॉलर्स केस नहीं टाइम लींदा सी लेट्स सी कैरन अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम जी जी अदा जी जी अदा हाँ तुम जमीन जो मसलो आए खातो भी तक न दिनो आगाने भी गाल कई कच्ची लिखत आ मुझी सलाह होंगी तक तुकान एडवोकेट साहब से मिलो वो तुम ये केस ऐसी के ताँगे वधी के जो सलाह दींदा बाकी ये तुम आवाज़ भी क्लियर को अचे तुम मसलो आए सिविल मैटर आए तो उनमें थोड़ी डिटेल असंके घुर्बल होंगी जिते तक कंसल्टेशन दींदा एडवोकेट साहब सो कुछ कॉलर्स के शामिल करे वेठूं देन असा टॉपिक के जेको आहे कंटिन्यू कयूं पिया अस्सलाम वालेकुम जी अस्सलाम वालेकुम
3: वालेकुम सलाम
0: जी अदा
3: सर फाद से जिक्र नहीं करा तो कस्टमर का सर
0: ओके
3: अने तो सर कस्टमर से आवाज आपसे से बोलो
0: छा मसलो थियो थोड़ो बुधायो
3: ये सर
0: जी जी छा पे छो
3: सर जी भी इस्तेमाल कर से आने तो प्रॉब्लम शुरू कर से स्टार्ट कर सर
0: हलो ठीक है अदा तां जी मेहरबानी था प्रोग्राम में शामिल थिया शेवा साहब कुछ फीडबैक आए प्रोग्राम में जो मैं इंक्लूड क्या पियो ये चन पे आर्टिकल 25 मुताबिक सब शहरी कानून नजर में बराबर आन पर छा असाने समाज में हकीकत में भी बराबरी नजर अचे थी या अन्या में डिस्क्रिमिनेशन मौजूद है इतने असा इन टॉपिक ते गलाए चुका हूं पॉइंट ते पर वरी भी तां इन ते थोड़ो दींदा पंजा कमेंट्स
1: असां भी इन मुल्क में रहूं था साईं जंहिं सवाल कयो आहे उहो बि इन मुल्क में रहे थो हिते ऑपर्चुनिटी सभिनि खे इक्वली थी मिले हाणे मिसाल जे तौर ते तव्हांखे हिकिड़ी एडवर्टाइज़मेंट अचे थी जॉब जी उनमें हिकु एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आहे उनमें हर माण्हू अप्लाई करे सघे थो ठीकु आहे डेट इज़ इक्विटी
0: यस
1: ठीकु आहे हाणे इन में अच्छा इन खां अलावा बि नॉन मुस्लिम भी अप्लाई करे सघे थो माइनॉरिटी कोटा भी आए डिसेबल कोटा भी आए ऐं जेको आहे सो रूरल अर्बन असांजे सिंध में इहो बि कोटा सिस्टम आहे त इहा ई इक्विलिटी हूंदी आहे साईं जो मक़सदु मां सम्झां थो जेको आहे सो किथे था खणी वञनि पर इहो बि आहे साईं जी ॻाल्हि बि सही आहे पंहिंजी जाइ ते की हिते किथे किथे इहो तासुर आहे के कंहिंजे लाइ कुझु कानून आहे ऐं कंहिंजे लाइ कुझु कानून आहे पर इहा शइ अमूमन प्रैक्टिकल लाइफ में असां त ऑब्ज़र्व न कई आहे
0: ओके
1: पर इहा हिकिड़ी शइ माण्हुनि जे ज़हन में फिक्स थी वई
0: आहे
1: असांजे मुल्क में प्राइम मिनिस्टर खे बि सज़ा अची चुकी
0: आहे
1: प्राइम मिनिस्टर खां त वॾो उहिदो कोई बि न आहे त इक्विटी आहे त सज़ा आई आहे
0: चलो उमेद आहे दादा तव्हांखे जवाबु मिली चुको हूंदो सो हिकिड़ो कॉलर आहे ॿियो बि शामिल कंदासीं जी अस्सलाम वालेकुम ऑल राइट कॉल ड्रॉप थी चुकी आहे कॉलर्स खे अॼु मां थोरो घटि टाइम न लाइ ॾियां पियो तव्हांजा नेटवर्क जा सिग्नल जेके आहिनि तमामु घणा घट आहिनि ऐं वजह सां मुंहिंजो आवाज़ क्लियर कोन थो अचे सर प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्रेरी अरेस्ट आर्टिकल 10 चए थो कंहिंखे बि बिना कानूनी सबबु गिरफ़्तार नथो करे सघिजे फेयर ट्रायल लाज़मी आहे कीअं पिया ॾिसो सर तव्हांजे एक्सपीरियंस में बग़ैर जेको आहे त सबबु जे गिरफ़्तारी थिए पई अगरि थिए पई त छा हुनजो फेयर ट्रायल हले पियो
1: असांजे कॉन्स्टिट्यूशन में इहा शइ आहे की अगरि कोई माण्हू कोई बि कॉग्निज़िबल ऑफेंस थो करे कॉग्निज़िबल ऑफेंस में तव्हांखे वॉरंट पुलिस खे वॉरंट जी ज़रूरत न पवंदी आहे उहो अरेस्ट करे सघे थी विदाउट वॉरंट हाणे उन कॉग्निज़िबल ऑफेंस खां पोइ पुलिस जी इहा मैंडेटरी ड्यूटी आहे की उनखे 24 कलाक जे अंदरि मैजिस्ट्रेट जी कोर्ट में पेश कयो वञे अगरि पुलिस उनखे पेश नथी करे

0: डेमोक्रेटिक
1: लाइक जेके डेमोक्रेटिक रिपब्लिक मुल्कन उन्हनि में थी सघे थी, बाक़ी जिते न इलेक्शन थींदी आहे न उते डिक्टेटरशिप आहे या किंगडम सिस्टम आहे, उन में उहो पंहिंजो स्टेट पंहिंजो लॉ ठाहींदी.
0: All right, साईं मुख़्तसिर टाइम आहे सफ़ा, ऐं कॉमन सिटीज़न्स जेके आहिनि पंहिंजे राइट्स खे अगरि प्रोटेक्ट करणु चाहिनि त उहे कीअं करे सघनि था अकॉर्डिंग टू अंडर दिस कॉन्स्टिट्यूशन बेसिक राइट्स?
1: उन लाइ सभु खां पहिरां ॾिसो न, कॉमन सिटीज़न जो सभिनि खां वॾो जेको इशू आहे की उन्हनि खे अवेयरनेस ई न आहे. हाणे इन में असांजी एजुकेशन सिस्टम जो बि हिकिड़ो फॉल आहे. असांजी हमेशह हिकिड़ी रिक्वेस्ट रही आहे, तव्हांजे तवाज़ुन सां बि असां हिकिड़ी रिक्वेस्ट था कयूं की कॉन्स्टिट्यूशन जा फंडामेंटल जेके राइट्स आहिनि उहे तव्हां हायर एजुकेशन में या प्राइमरी एजुकेशन में उनखे तव्हां इंक्लूड कयो, ताकि इहे जेके स्टूडेंट्स अॻिते हली जंहिं महिल प्रोफेशनल फील्ड में वञनि था, लॉयर्स न इन खां अलावा बि, त उन्हनि खे घटि में घटि इहा शइ ख़बर हुजे की असांजा फंडामेंटल राइट्स आहिनि. हिते माण्हुनि सां प्रॉब्लम इहो आहे की हिते माण्हुनि खे फंडामेंटल राइट्स ख़बर ई न आहिनि की असांजा फंडामेंटल राइट्स आहिनि छा, ऐं असांखे थ्रू कहिड़े प्रोसेस जेको आहे सो इन्हनि खे अवेल करणु खपे. इन ई वजह जे करे असांजे मुल्क में जेको आहे इक्विलिब्रियम जो सिस्टम जेको आहे सो उहो डामाडोल थियल
0: आहे,
1: की माण्हुनि खे प्रॉपर अवेयरनेस न आहे. ऐं अमूमन असां अवेयरनेस वठण जी कोशिश बि न कंदा
0: आहियूं.
1: इहो बि हिकिड़ो वॾो आंसर आहे असांजी सोसाइटी जो.
0: मतिलबु तव्हां सम्झो था त अवेयर माण्हुनि खे रहणु घुरिजे अबाउट देयर बेसिक राइट्स?
1: यस, ऐं उहा अवेयरनेस कीअं थींदी की तव्हांजो जेको बेसिक एजुकेशन सिस्टम आहे उन में ॿियो कुझु न त इन शइ खे जेके फंडामेंट जेके आर्टिकल 8-28 कॉन्स्टिट्यूशन ॿुधाए थो, तव्हां उनखे एड कयो त घटि में घटि माण्हुनि खे हिकिड़ी अवेयरनेस थींदी की असां हिन जे मुल्क में रहूं था, इन में असांजे मुल्क में रही करे असांजा राइट्स कहिड़ा कहिड़ा
0: आहिनि. सो तव्हांजी वॾी महिरबानी मुस्तफ़ा साहब, तव्हां प्रोग्राम में असां सां गॾु रहियो. इलाही शयूं रहिजी वियूं, पर नेक्स्ट टाइम इनशाला ताला पाण हिनखे ज़रूरु रिकवर कंदासीं. असांजे लिसनर जो फीडबैक बि जेको आहे तमामु घणो आयो. आख़िरी सवाल इहो बि आयो आहे त रेमेडीज़ कहिड़ियूं आहिनि जिते असां हाणे हींअर ॻाल्हाए चुका आहियूं ऐं तव्हां सलाह बि ॾिनी आहे, वधि खां वधि माण्हुनि खे अवेयर रहणु घुरिजे अबाउट देयर बेसिक राइट्स. लास्ट में को असांजे लिसनर्स खे पैगाम ॾियणु चाहींदा तव्हां?
1: पैगाम हिकिड़ो आहे की हे मुल्क असां लाइ गिफ्ट आहे. असांखे खपे कि इन मुल्क में जेको बि लॉ आहे इन लॉ खे ओबे कयूं, ऐं ॾिसो न असां हिकिड़ी एग्ज़ाम्पल सेट करे सघूं था बजाए तनक़ीद करण जे. अगरि उहा असां शइ बहितरी तरफ़ करे वञूं, अॼु हिकु ॿ माण्हू करंदा, सुभाणे ॿ खां चार थींदा, चार खां अठ थींदा, ईअं अॻिते हली हली हे बि हिकिड़ो मुल्क जेको आहे सो सिविलाइज़्ड मुल्क जी तरफ़ थी सघे थो. इन लाइ बहितरु आहे की तव्हां लाइ जेके बि हिन मुल्क में कानून आहिनि उनखे फॉलो कयो, उनखे ओबे कयो, ऐं कोशिशि कयो कि जेतिरो कॉन्ट्रीब्यूट करे सघो हिन मुल्क में बहितरी तरफ़ उहो करे सघो. बाक़ी इन खां अलावा तव्हां वटि काफ़ी रेमेडीज़ अवेलेबल आहिनि. अगरि किथे बि तव्हां सां नाइंसाफ़ी थिए थी त काइंडली कोर्ट खे पंहिंजी रेमेडी वठण जी कोशिशि कयो. अगरि तव्हां वठंदव त हिकिड़ी इहा बि अवेयरनेस आहे की माण्हू खे इहा बि अवेयरनेस ईंदी की असांखे रेमेडी थ्रू कोर्ट मिली सघे थी, या थ्रू एग्ज़ेक्टिव मिली सघे थी, या थ्रू लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी मिली सघे थी. इहे इदारा तव्हां माण्हुनि लाइ ई ठहियल आहिनि, माण्हुनि जी ख़िदमत लाइ ठहियल आहिनि, त इन्हनि इदारनि खे पंहिंजो कयो, ओन कयो.
0: थैंक यू वेरी मच. सो अव्हांजी वॾी महिरबानी मुस्तफ़ा साहब, तव्हां प्रोग्राम में असांखे टाइम ॾिनो, एज़ वेल एज़ असांजे लिसनर्स जी, असांजे व्यूअर्स जी जेके प्रोग्राम ॿुधनि पिया, ऐं लिसनर्स बिल्कुलु प्रोग्राम जे वक़्त बि पंहिंजी पुॼाणी ते पहुतो. एडवोकेट मुस्तफ़ा पीरज़ादा साहब असां सां गॾु मौजूदु आहियां. वंस अगेन मां हिननि जो इंट्रोडक्शन अवां भरपूर ॼाणे चुका आहियो, वंस अगेन तव्हांखे ॿुधाईंदो वञा त ही एडवोकेट आहिनि हाई कोर्ट जा, गॾो गॾु लेक्चरार बि आहिनि लॉ कॉलेज में, जिन असांखे अॼु सुठे तरीक़े सां असांजे टॉपिक फंडामेंटल राइट्स इन पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन 1973 and the universal declaration of human rights day asange aware kayo. Umeed hai aaj jo session tumhare liye tamam gano fruitful sabit thyo hondo. So aaj jo feedback kuch hai to asange tumhare zarur deinda. Asange whatsapp number hai 03000113488. So agle program tai panje mezban Babar Sheikh aaye asange mehman advocate Mustafa Pirzada sahab ke deinda ijazat sadain gad. Allah hafiz.

0: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: मुशावरत आखिरी मरहले में दाखिल। हुकूमती वफद अज सदर आसिफ अली सरदारी से मुलाकात कंदो। मुल्क की तरक्याती बजट के बेहतमी शिकल देने का इम्कान। जरियन जो चवण है तो पीपल्स पार्टी के वफद में चेयरमैन बिलावल भुट्टो सरदारी, वो वजीर सैयद मुराद अली शाह, श्री रहमान ए नवीद कमर शामिल होंगे। हुकूमती वफद की सरबराही नायब वजीर आजम इसहाक डार कंदो। वफद में नाणेवार वजीर मोहम्मद औरंगजेब ए बया शामिल होंगे।

0: वफाकी हुकूमत पारां सरकारी मुलाज़िमनि जी पघारुनि में 10-15 सैकड़ो ताईं वाधि करण ते ग़ौर। हाणे वारी वज़ारत पघारुनि में वाधि बाबति तजवीज़ूं वज़ीर आज़म खे मोकिले छॾियूं। ज़रियनि जो चवणु आहे त हाणे वारे वज़ीर मोहम्मद औरंगज़ेब वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ सरकारी मुलाज़िमनि जी पघारुनि में 10-15 सैकड़ो ताईं वाधि करण जी तजवीज़ ॾिनी आहे। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ सरकारी मुलाज़िमनि जी पघारुनि में वाधि जो फ़ैसिलो इतिहादियुनि सां मुशावरत बाद कंदो। कराची में तरक़ियाती कम जारी आहिनि। शहरनि यूनिवर्सिटी रोड सबबि ॾुखियाईनि खे मुंहुं ॾिनो। यूनिवर्सिटी रोड खे जुलाई जे आख़िर ताईं खोलियो वेंदो। सीनियर सूबे वज़ीर शहर जी लेना में चयो आहे त कराची पोर्ट सिटी आहे, मोटरवे जी शुरूआत हितां खां थियणु घुर्जे। वफ़ाक सदाई मोटरवे जे
1: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
2: शादी का इवेंट और स्टेज आधा तैयार, क्यों? क्योंकि वेंडर्स को चाहिए फौरी पेमेंट। इवेंट प्लानिंग हो या कोई और बिजनेस, पेमेंट रुक जाए तो काम भी रुक जाता है। बिजनेस करना आसान नहीं, लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए। इसलिए मेरे पास है बैंक अलहबीब का अलहबीब करंट अकाउंट, जिसमें मिले फ्री चेक बुक, डेबिट कार्ड, बैंकर्स चेक, ई स्टेटमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग, अलहबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट फैसिलिटी, ATM और कैश डिपॉजिट मशीन की इजी एक्सेसिबिलिटी, मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क। अलहबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी, रफ्तार भी। बैंक अलहबीब, रिश्ता भरोसे का।
3: मेहरान आयरन स्टोर हालानी, होलसेल डिपो, अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
4: सरिया, गार्डर, टीयर, एंगल, चैनल पट्टी, लोही दरवाजा, सिल्वर जा चौंक, सीमेंट, रेती, क्रेश और रंग वगैरह बाजार का बारियत दस्तियाब आहिन।
3: हाने यचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप, नेशनल हाईवे हालानी।
4: राब्ते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल, 03003204372 and 02424601100।
5: रेस्टोरेंट बिजनेस में हर सेकंड मैटर करता है। कस्टमर्स क्वालिटी के साथ डिस्काउंट्स भी चाहते हैं। बिजनेस करना आसान नहीं, लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए। इसीलिए मेरे पास है बैंक अलहबीब का अलहबीब करंट प्लस अकाउंट, जिसमें मिले फ्री चेकबुक, डेबिट कार्ड, बैंकर्स चेक, ई स्टेटमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग, अलहबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट्स फैसिलिटी, ATMs एंड कैश डिपॉजिट मशीन्स की इजी एक्सेसिबिलिटी, मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क, अलहबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी, रफ्तार भी। बैंक अलहबीब, रिश्ता भरोसे का।
6: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरा पर, होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो। इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरा पर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए, जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल की कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPMG एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरा पर, राब्ते जे लाए 03201800003।

कॉलम में मौजूद आहिन फौजी भाइरन लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी राबते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-54-31-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-16-23-793।

0: नॉट होम्योपैथिक में अहिड़ियूं दवाऊं जेके आहिनि जेके बग़ैर इंजेक्शन जे असरात कंदियूं आहिनि, बग़ैर सर्जरी जे जेकी जेकॾहिं पथरी आहे त उहा निकिरी ईंदी आहे, बग़ैर कंहिं जेको आहे सो इंजेक्शन जे कोर्स जे जेको आहे सो कोर्स थींदा आहिनि कहिड़ी बि वॾियुनि बीमारियुनि जा। अहिड़े तरीक़े सां जेकॾहिं मां ॻाल्हि पई कई त गर्मी वधी वई आहे ऐं हिन गर्मी में जेको आहे सो लू लॻंदी आहे, ऐं इन लू लॻण दौरान जेको आहे सो जेके क़ुदिरती जेके सौगात या फ्रूट्स जे हवाले सां ॻाल्हि कयूं त हिन वक़्तु अॼोको प्रोग्राम कोशिशि असां इहा ई कईसीं त अॼोके हिन जेको मौसम जे हवाले सां फ्रूट ते जेकॾहिं ॻाल्हायो वञे त छो जो उहो माण्हू दवाउनि ते केतिरो सारो ख़र्चु करे थो, पर जेकॾहिं कुदरत जे तरफ़ां हिकिड़ा शयूं मौजूदु आहिनि त उन्हनि मां छो न माण्हू फ़ाइदो वठे। ऐं खोड़ सारा हिन वक़्तु ॾिसो तव्हां जेकॾहिं मिसाल ॾिठो वञे त आलू बुखारा मौजूदु आहिनि, जामन जेको आहे सो अची विया आहिनि, या जेको आहे सो मिसाल हिकिड़ो चकू जेको आहे सो आहे, पपीतो जेको आहे सो हुई मां अक्सर ॿुधाईंदो आहियां, वंगो मौजूदु आहे, फारवा मौजूदु आहिनि। लेकिन फारवनि जी जेकॾहिं ॻाल्हि कयां जेके फालसा बि चवंदा आहिनि त फारवा हिकिड़ी शार्ट यानी वक़्त जे लाइ हूंदा आहिनि हिन मौसम में, मिसलनि मई ऐं जून ऐं जुलाई जो कुझु हिसो जेको आहे सो ई हलंदा आहिनि ऐं पोइ जेको आहे सो वरी ख़तमु थी वेंदा आहिनि। ऐं पर लेकिन हुननि जा फ़ाइदा ॾिसो तमामु जेको आहे सो घणा हूंदा आहिनि। फालसा जेके आहिनि फारवा उहे हिकु त जेको आहे सो जेकॾहिं बेसिकली फ़ाइदा हिननि जा शुरूआती हिकिड़ो ॿुधायूं त हिकु त जेको आहे सो हुन में विटामिन ए आहे ऐं उन खां पोइ जेको आहे सो फॉस्फोरस हुन में पियल आहे, हिकु त एंटी ऑक्सीडेंट आहे, एंटी ऑक्सीडेंट असां हुनखे चवंदा आहियूं जेके फासिद मादा इंसान जा जेके अंदरां ज़हरीला मादा हूंदा आहिनि उनखे हू जेको आहे सो उहे अख़राज करण में मदद कंदो आहे। ऐं फासिद मादनि में खोड़ सारियूं शयूं अची वियूं मिसलनि, ऐं उनखां पोइ जेको आहे सो जीअं विटामिन ए जी ॻाल्हि कई, फॉस्फोरस कई, ऐं जेको आहे सो विटामिन बी ट्वेल्व जी ॻाल्हि कई, त इन्हनि में इन्हनि जो मक़सदु इहो हूंदो आहे त इन में भरपूर नमूने सां यानी तव्हांखे जेकॾहिं कंहिंखे बि रत जी कमी आहे त उहा जेको आहे सो दूरि थींदी आहे, कंहिंखे ऐसा बि कमज़ोरी आहे त उहा हुन सां जेको आहे सो फारवा जे करे माण्हू खाए थो त उन सां ख़तमु थी, कंहिंखे बि हिकु त जेको आहे सो जिगर जो मसइलो अहम हूंदो आहे, कंहिंजो फैटी लिवर आहे या जेको कंहिंखे हेपाटाइटिस बी ए खां वठी हेपाटाइटिस ए आहे, हेपाटाइटिस बी आहे, हेपाटाइटिस सी आहे, उन्हनि खे जिगर खे रीबिल्ड कंदो आहे, जिगर जी इस्लाह कंदो आहे। तव्हां ॾिसो असांखे जेकॾहिं अहिड़ी तकलीफ़ थिए थी त असां गर्मियुनि में वञी ड्रिपूं जेको आहे सो हणाईंदा आहियूं ऐं जेको आहे सो जिगर जी बीमारियुनि में माण्हू मुबतला थी वञनि था त पोइ जेको आहे सो खोड़ सारे जे फैटी लिवर थी वञे थो त खोड़ सारे यानी मुश्किलातुनि में अची वेंदो आहे। लेकिन असां वटि अहिड़ियूं बेशुमार दवाऊं मौजूदु हूंदियूं आहिनि होम्योपैथिक जूं ठहियल जंहिं सां जेको आहे सो असां जेके इहे जेके बीमारियूं आहिनि फैटी लिवर आहे, हेपाटाइटिस बी आहे, हेपाटाइटिस सी आहे, उन ते जेको आहे सो माशाल्लाह सुठे नमूने सां हू क़ाबिज़ थी वेंदियूं आहिनि। अहिड़े तरीक़े सां अलाह ताला जेको आहे सो फारवनि में बि इहा सलाहियत मौजूदु रखी आहे, असां स्टडी कई आहे ऐं ऑब्ज़र्व कयो आहे, ॾिठो आहे अवें ताईं तॾहिं जेको आहे सो हीउ प्रोग्राम पहुचायूं पिया ऐं इन जी हिस्ट्री आहे उहा पढ़ी करे उहा ॾिसी करे उहा पंहिंजे एक्सपीरियंस में आणे करे छो जो माशाल्लाह जेको आहे सो हिन प्रोग्राम कंदे असांखे एफ एम रेडियो ते चाहे मुख़्तलिफ़ स्टेशन्स हूंदियूं आहिनि मोरो, खैरपुर, नवाबशाह, सकरंड, मेहरापुर, काफ़ी हंधनि ते असां जेको आहे सो इहो ॻाल्हायो आहे ऐं कमु कयो आहे त जेको आहे सो इन दौरान इन्हनि जी जेको आहे सो इन छहनि सालनि जे दौरान जेको आहे सो काफ़ी दफ़ा असां हिन टॉपिक्स ते जेको आहे सो ॻाल्हाए बि चुका आहियूं। अॼु बि इहो ज़रूरी महसूसु कयोसीं त हींअर मौसम आहे ऐं अवां ताईं छो न जेको आहे सो हीअ ॻाल्हि पहुचाई वञे त हिकिड़ी जेको आहे सो हिकिड़ी सस्ती शइ ऐं सुठी शइ जेकॾहिं असांजो ग़रीब अवाम ऐं या जो चाहे कहिड़ो बि जेको आहे सो चाहे अमीर हुजे या ग़रीब हुजे पर जेकॾहिं हिन शइ मां हुनखे फ़ाइदो पवे त मां चवां थो त जेको आहे सो तमामु सस्तो आहे। बेशक उहो माण्हू जेको आहे सो उहे शयूं इस्तेमालु करे दवाउनि खे तरक़ करे छॾे ऐं तमामु बहितरु मैदे जे लाइ तमामु बहितरु आहे, जंहिंखे मादे जी तकलीफ़ आहे, मादे जी गर्माइश आहे, जिगर जी गर्माइश आहे, रत जी कमी आहे, उन जे लाइ ई तमामु हिकिड़ो बहितरु मुफ़ीद आहे उन खां मुफ़ीद आहिनि। ऐं उनखां पोइ यूटीआई में यूरिनरी ट्रेक्ट इन्फेक्शन जंहिंखे बि गुर्दनि जी तकलीफ़ रहंदी आहे या प्रोस्टेट ग्लैंड जंहिंजो वधी वेंदो आहे उन में पेशाब रुकजी ईंदो आहे, बर्निंग थींदी आहे, तेज़ाब थींदी आहे, जलन थींदी आहे, उन में काफ़ी सारो फ़ाइदो थींदो आहे। अवां खे ख़बर आहे त असां वटि हिकिड़ी हर्बल जी मेडिसिन्स आहे क्रेन मैक्स जे नाले सां ईंदी आहे, किन में जड़ी बूटी आहे क्रेन बेरी पियल आहे, जेके असांजा वॾा वॾा प्रोफेसर हज़रात डॉक्टर साहिबान जेको आहे सो उनखे लाइक कंदा आहिनि ऐं उहा जेको आहे सो लिखंदा आहिनि। त उन जो कमु ऐं फारवन जो कमु तमामु उहो साॻियो ई सेम आहे। हालांकि हू हिकिड़ी सौशे मिलंदी आहे जेकी 5,500 रुपया हिकिड़ी पुड़ी आहे, या सीरप मिलंदो आहे जेको 2-3 सौ रुपए जो शरबत आहे, पर उन जे जेकॾहिं तव्हां फारवन जो शरबत पीअंदो त ईअं सम्झो जस्ट लाइक तव्हां क्रेन मिक्स इस्तेमालु
1: कयो। माशाल्लाह तमामु घणी अॼु तमामु बहितरीन ऐं डॉक्टर साहिबु असांजी
0: बिल्कुलु कोशिशि इहा ई आहे त अञा जेको आहे सो वधीक हिन टॉपिक ते ॻाल्हायूं। बिल्कुलु
2: काई
1: زبان ऐं चप पची था पवनि। मादे बादे जी तकलीफ़ हूंदी, खाइण पीअण में कीअं आहियो? अच्छा, हू सही आहियो। तव्हां एफ एम ॿुधो, डॉक्टर साहिबु तव्हांखे ॿुधाए थो। मुंहिंजे ख़्याल में इहा मादे जी जॾहिं तकलीफ़ हूंदी आहे इन जे करे इहो वात पचल रहंदो आहे घणो पोइ, या वरी काई शइ माण्हू अहिड़ी इस्तेमालु कंदो आहे, मिसाल काई खंड या काफ़ी नंढे ॿारनि वांगुरु कॾहिं कॾहिं कंहिं माण्हू खे पोइ थोरो चस्को बि थी पवंदो आहे, इन जे करे बि थींदो आहे। बरहाल डॉक्टर साहिबु तव्हांखे ॿुधाए थो वधीक, ठीकु आहे? एफ एम ॿुधो।
0: हा बिल्कुलु, जेको आहे सो वात पचण जा बि खोड़ सारा जेको आहे सो मसाला हूंदा आहिनि ज़ाहिर, या जेको आहे सो को जीअं मां मिठाण जी ज़्यादा इस्तेमालु करण जी ॻाल्हि कई, को खट इस्तेमालु ज़्यादा करे थो, को जेको आहे सो तरियल शयूं ज़्यादा इस्तेमालु करे थो, त उन जे करे जेको आहे सो इहे मसाइल थींदा आहिनि, या केरु वात जी सही सफ़ाई न कंदो आहे उन जे करे बि जेको आहे सो वात पची पवंदो आहे। इन जे करे सुबुह शाम हिकु त मसवाक तमामु ज़रूरी आहे, उहा करणु घुरिजे, ऐं उन खां पोइ जेको आहे सो पाणी गरम करे उन में हेड या जाण या लूणु विझी उन जा गराड़ा करणु तमामु मुफ़ीद आहिनि, ऐं बहितर उन जो इलाजु असां वटि दवा मौजूदु हूंदी आहे, वरना अधे खे मशहूरु न फ़िलहालु मसवाक करे ऐं ॿियो स्पंगुर जी धुई इस्तेमालु करे, या वरी रूबरू ॾेखारे सघे। फ्री डेज जुमो छंछरु आचरु
1: मौजूदु ॾेखारे वठे वधीक बहितर थींदो। हिकु कॉलर लाइन ते मौजूदु आहे, कॉल जे तरफ़ वेंदासीं। अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम सलाम,
1: दुआ अलहमदुलिल्लाह। केर साहिब पियो ॻाल्हाए मुंहिंजा साईं? ॻोठ ॾाते दस्ती खां भलेकार चवंदा, ख़ुशि आहियो? ॻोठ ॾाते दस्ती वारा ख़ुशि आहिनि न? दुआ ही अलहमदुलिल्लाह, शुक्र आहे। छा पुछंदा दस्ती साहिबु डॉक्टर साहिब खां? जी मुंहिंजा भाउ जी अदा जॾहिं प्रोग्राम बि रोज़ थो ॿुधी, पोइ तूं डॉक्टर साहिब वटि किथे रहियो? ॾाते जो ॻोठ ऐं मेहरापुर को परे आहे, 10 किलोमीटर बाग बचरा परियां, 2 किलोमीटर ॾाते जो ॻोठ। सुभाणे ई हलियो आहे, ॿिनि ॾींहंनि में इनशाला इहो रेशो बीहजी वेंदो। डॉक्टर साहिब वटि हिकु टेके इलाज मौजूदु आहे मुंहिंजा सजण साईं। ठीकु आहे न दस्ती साहिबु, घबराई न, डॉक्टर साहिबु कॾहिं इलाज मौजूदु आहे। डॉक्टर साहिब ते को आप बि ॿुधई थी, पर तेको नंढड़ी ॾेख 1.5 साल जी उहो तकलीफ़ आहिनि, उतां ई पलंदी न इतला परे। हा हल ठीकु आहे, बिल्कुलु ठीकु आहे, बसि तूं ॾिखला वञेसि, ठीकु आहे न मुंहिंजा साईं? डॉक्टर साहिब को सुभाणे ई तूं नंढड़ी गिना, इनशाला रिज़ल्ट मिल सही, तेको ॾू ॾींहं आप वल ॿुधाइसीं ॿिए हफ़्ते प्रोग्राम कॉल करूं त साईं माशा नंढड़ी को फ़र्क़ु आ गए, ठीकु आहे न भेरा माशा।
0: जैसे बिल्कुलु हिकु त जी त नंढड़ो ॿारु आहे उन जे लाइ हूअं बि असां पेशंट खे इहो चवंदा आहियूं नंढड़ो ॿारु रूबरू ॾेखारियो वञे, उनखां अलावा असां ताईं जेसि ताईं पहुचनि त हिकु त जेको आहे सो उनजी फीड ते हूंदी आहे, ज़ाहिर या नंढो ॿारु आहे फीड ते हूंदो त उनजी मदर खे जेको आहे सो अमड़ खे परहेज़ करणु घुरिजे, चांवर ऐं गोश्त खटी शयूं वग़ैरह अहिड़ियूं शयूं इस्तेमालु हरगिज़ न करणु खपनि, जंहिंसां जेको आहे सो इहा तकलीफ़ जेको आहे सो ॾींहों ॾींहुं अञा उन में वाधारो अची वेंदो। इन जे करे जेको आहे सो ऐं जंहिं महिल उनखे वेंझारनि त ख़्याल सां उनखे कननि जी सफ़ाई करे या कन में कप विझी, जीअं कन में एक्स्ट्रा पाणी वग़ैरह जेको आहे सो न पवे, ऐं रूबरू ॾेखारनि त उनजी दवा। थी
1: प्रोग्राम है सेहत की गाल छी मेरा पर एफएम 94 जो आवाज 03011968151 असा जो लाइव कॉल जो नंबर आ ही प्रोफेसर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन साहब जिन जो 30 साल तजुर्बो आ ही मोस्ट सीनियर डॉक्टर आ ही इस्लामाबाद का डॉक्टर साहब जी शुरुआत थल आ ही इस्लामाबाद कराची हैदराबाद मोरो मेहरापुर नवाबशाह पूरे पंजाब का वठी करे पूरे बलोचिस्तान जा भी डॉक्टर साहब मरीज दीना है गुजदार का वठी करे झलमंगसी बलोचिस्तान कोयटा का डॉक्टर साहब मरीज अचंदा मेहरापुर शहर में डॉक्टर साहब की क्लिनिक है जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक जर्मनी जो मुल्क है उनकी फ्रेंचाइज है डॉक्टर साहब की उनसा वाबस्ता है जर्मनी से डॉक्टर साहब की फ्रेंचाइज है जर्मन होम्योपैथिक वन की उतरे डॉक्टर साहब की क्लिनिक है मेहरापुर में डॉक्टर साहब के तावन से इतने यह फ्रेंचाइज खोली वही अलहमदुल्ला उन चौ साल हले तो पो तो काफ़ी मरीज सेहतयाब थी चुका जो मेहरापुर में डॉक्टर साहब के 6 साल थे डॉक्टर साहब उन टाइम जो अच कर फ्रेंचाइज इतने खोल रही अल्लाह ताला के हुकुम से अल्लाह साईं की जात शिफा दियण वाली है तो इं ही थो है तो शिफा अल्लाह साईं की जात रही है इलाज डॉक्टर कह काफ़ी अड़ा मरीज आज जो सेहतयाब थे तेजे प्रोग्राम में बजरिया लाइव कॉल शामिल थी सको था 03011968151 एक कॉलर लाइन से मौजूद है कॉल की तरफ इंदी जी फेसबुक जरिए दोस्त कदन उन्होंने भी मेहरबानी है मुझी पर्सनल आई डी है ADV हाकिम अली जिसकानी ADV हाकिम अली जिसकानी उन लाइव इन वक्त हले पो शेयर भी कर सको था कमेंट्स भी जरूर सवाल कर सको था कमेंट्स भी प्रोग्राम में जरूर शामिल कह हल्दी हलूँ था एक कॉल की तरफ कॉलर लाइन से मौजूद है असल
2: वालेकुम वालेकुम सलाम
1: साईं मुजा केर साहब पियो गलाए
2: सर मोहम्मद सचल कांधड़ो पियो गलाया
1: खुशामदी चों था मोहम्मद सचल कांधड़ो साहब किथा पियो गलाए मुजो साईं
2: थरी मीरवा का साईं
1: छा पुछण चाही दो डॉक्टर साहब का मुजा दा
2: सो एक रिक्वेस्ट आए तो मुजो थोड़ो वजन जो क्वास वधी चुको आए एतरी उम्र भी ना है आ यने मा जो क्वास डॉक्टर साहब के मा रिक्वेस्ट कनो तो मा जो वजन कम करने के लिए करो तरीको इस्तेमाल कर सकंदो
1: तो आज में भी कॉल कई हुई ने मुदे
2: जी जी वाह
1: अग में भी ता कॉल कई हुई ना
2: हां हां बिल्कुल
1: तो डॉक्टर साहब के दिखा रहे हो
2: ना डॉक्टर साहब के दिखा रहे ना
1: खाली मशवरे में छा थिनो मुंजा मिठा भा अमल कबो आ जे भी दिसो ना ही सेहत आहे सेहत बाबत तवा जेको भी मशवरो वठो था या जेको दिसो ना एकड़ो दवा ता जे घर पया थी ता पंदो कोन त दवा ता के उते पई जगह दे ता उन के दिसी करे रिजल्ट तो कोन दावटी सको ना मुंजा सजन
2: बिल्कुल
1: ये भी यही कम है खाली मशवरो वी छो हर दफे इन को भी फायद ना है डॉक्टर साहब के चवं तो बुधा तो ठीक है मुझे भा बाकी असल प्रॉपर इन इलाज मौजूद है बिना साइड इफेक्ट के ठीक है को भी साइड इफेक्ट ना है डॉक्टर साहब दवा मौजूद है रूबरू दिखारे वो हल अचो ट्रीटमेंट करा पो वजन वगैरह डॉक्टर साहब हर शे चेक कह वजन वाले जो वजन चेक कह वेट कंटो डॉक्टर साहब पो कद जो ना वो कद चेक क ओ मुआगे ने बता के ए टू जेड दिसियो मुजा सजन साईं ठीक है मुजा सजन साईं त एफएम बदो डॉक्टर साहब आके बुधाई तो मजूद मजीद रूबरू दिखारे वजो
0: आ एक गाल बी वाजे कंदा हलो त असा वट होम्योपैथिक में केड़े भी इलाज जे हवाले से गाल क्यों केड़े भी मर्ज में जे मेडिसिंस में ये थिनो है मेडिकल में त परे खा मेडिकल में दवाई बुधाई वेंदी है भई खंग थियो त फलाणो सिरप पी छियो या कड़ी तकलीफ थे तो होम्योपैथिक में मरीज जी हिस्ट्री वरती वेंदी है उनके कद उन बुत उन कलर उन कंडीशन के मुताबिक जो है सो उन हेरेडिटी खानदानी हिसाब से उनके बाद में जो है सो उन टेस्ट वगैरह ऐसी करो है सो दवा दिनी वी है रिकमेंड कई वी है ये हरगिज दवा बुधाई न वी है कें भी पेशेंट के असें 30 साल में ये घर वेठे कंखे भी दवा इवन वो पेशेंट है तो फोन से पुछे तो पर असा केर इंदो है चवन है तो असा दवा दियो तो असा उनके भी दवा फलाने जी घर वेठे जी न दींदा आयो हालांकि वो फीस भी दींदा है लेकिन सिर्फ ए सिर्फ इन करे जो उन पेशेंट के रूबरू दिसणो पवंदो है एकड़ी गाल बी गाल त इन जे लाए जाहिर उन जो वजूहत अगे दफे भी बुधायो तो केड़ी वजूहत होंदियो आइन सो इन जे करे अदे के यही रिक्वेस्ट है तो रूबरू दिखारे वञन वडी मेहरबानी
1: प्रोग्राम है सेहत की गाल छी मेहरापुर एफएम 94 जो आवाज वहां जी समात ने पहुंचे पियो एहसान लगारी साहब मोरो खास सा गड आहेन इन खा अलावा गोठ मोहम्मद हिदो गोठ वलीदाद खान लुंड का मोहम्मद सिद्दीक लुंड प्रोग्राम उदे पियो वलीउल्ला सिद्दीक साहब असन प्रोग्राम उदे पियो करे जी खा के असभली कार चोंदा सबनी दोस्तन के जेके दोस्त फेसबुक जरिए अस सा गड आहेन वक्त है कमर्शियल ब्रेक जो हलोंदा कमर्शियल ब्रेक की तरफ गड गड जो बुधंदा रहो जी मेहरापुर एफएम 94

0: आहिनि तव्हां असांजे प्रोग्राम में बज़रिया लाइव कॉल शामिल थी सघो था 0301-91-8051 0301-91-8051 प्रोग्राम में कुझु व्यूज़ हूंदा आहिनि उहे बि शामिलु कंदा हलंदासीं। प्रोफेसर डॉक्टर मंज़ूर हुसैन महमूद साहिबु सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज ऐं इस्पताल नवाबशाह जेकी मुख़्तलिफ़ बीमारियुनि बाबति ॼाण ॾेई रहिया आहिनि। लाइव कॉल जो नंबर 0301-91-8051 तव्हांखे ॿुधाईंदा हलूं। डॉक्टर साहिबु हर अरबा ख़मीस जुमो छंछरु आचरु ऐं सूमर ते सुबुह जो 10 खां शाम 5 वॻे ताईं जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण पोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड महरापुर में मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि। हिकु दोस्त आहे जेके सिहत याब थी वञनि था उहे क्लिनिक ते अचा ईंदा आहिनि या अक्सर करे प्रोग्राम में माण्हू कॉल करे चवंदा आहिनि साईं असीं मेडिसिन वठी आयासीं डॉक्टर साहिब खां ॾाढो असांखे शिफ़ा मिली ऐं असीं सिहत याब थी विया आहियूं ऐं हाणे अलहमदिल्ला ठीकु आहियूं। ॾाढी ख़ुशी थींदी आहे असांखे जॾहिं मरीज़ सिहत याब थी वञनि था। ईअं ई हिकु दोस्त क्लिनिक ते आयो ऐं व्यूज़ ॾेई वियो त ऐं अलहमदिल्ला अलाह ताला जे हुकुम सां ठीकु आहियां ऐं काफ़ी जन तां इलाजु करायो सो उन जा अचो सभई गॾिजी करे व्यूज़ ॿुधूं था।
1: सर मुंहिंजो पंहिंजो मसलो हुयो जेरे जो ऐं मादे जो गैस्ट्रो जो मसलो हुयो
2: जिगर जो मादे जो
1: जी जी सर इहो मसलो हुयो। हुन खां अलावा सर मां तक़रीबन 3 सालनि में मुख़्तल आहियां नंबर ते। मां सर 3 साल में गंबड़ मुंहुं दवा थी आहे प्रोफेसर डॉक्टर ज़हीर हुसैन शाह साहब खां बि
2: जी जी।
1: हुन खां अलावा सर मां पंहिंजी मुख़्तलिफ़ दवाऊं जॻहियुनि तां वरितियूं आहिनि। हुन मां सर हेरा मां मुंहुं थी आहे 2 दफ़ा
2: जी जी।
1: पर किथां सर मूंखे को फ़ाइदो कोन थियो। मूंखे डॉक्टरनि तक़रीबन ला इलाज करे छॾियो पंहिंजो इलाज न थींदो
2: जी जी।
1: जेको नॉर्मल दवा खाईंदो आहे अहिड़ो ख़ासि असांजे कोन
2: जी जी।
1: अलहमदिल्ला सर अलाह जे हुकुम सां हिते साईं अरन वटि जो असांजे ॾसु मिलियो असां हिते आयासीं। पहिरें दफ़ा वरिती आहे
2: मेहरापुर
1: शहर
2: जर्मन
1: डॉक्टर मंज़ूर सिंधमल साहिब
2: जी सर।
1: हिते सर मां फस्ट टाइम आहियां। अलहमदिल्ला अलाह जे हुकुम सां मूंखे 100% फ़ाइदो थियो आहे।
2: तक़रीबन जेको आहे सो महीनो अॻे दवा वरिती
1: जी जी सर। महीनो बि मां दवा वरिती आहे
2: महीनो दवा इस्तेमालु कई जर्मनी जी दवा तव्हांखे ॾिनी
1: जी जी सर जर्मनी दवा ॾिनी। हाणे अलहमदिल्ला मां 100% माना मां ॿियो दफ़ो साईं वटि आयो
2: आहियां। तकलीफ़ हूंदी त तव्हांखे निंड आराम या बि ईंदो
1: सर। असांखे तक़रीबन 6 महीना पहिरियां मां निंड न कई आहे। 24 कलाक जागियल हूंदी अलहमदिल्ला हाणे मूंखे निंड पूरी आहे। जेको माना टेंशन हूंदो हुयो सॼो बीमार जे करे दूरि थी आहे। अलहमदिल्ला मां सेक्रेटरी खे बि चेक कराए पर हुननि बि माना मूंखे ला इलाज करे
2: छॾियो
1: जी जी। त
2: अलहमदिल्ला जर्मनी जो होम्योपैथिक दवा तव्हां मेहरापुर मां
1: जी जी
2: तव्हांखे माशा हिन वक़्तु 80% तव्हां ॿियनि ॿुधंदड़नि जे लाइ कहिड़ो पैगाम ॾींदो
1: सॼी संगत खे इहो अर्ज़ु कंदा वेंदो आहे हिते साईं यार नचो अचो इनशाला सफ़ा अलाह जे हथ में आहे। असां 100% मां मेडिकल स्पेशलिस्ट नेरो सर्जन गैस्ट्रो को बि अलहमदिल्ला पंहिंजी 70 डिवीज़न या तालके मेहरापुर में या अॻिते किथे को बि न सॼो जेका मुंहिंजो आना थी आहे। अलहमदिल्ला मां 100% मुतमिन आहियां ऐं साईं यारनि खे संगत वारनि खे ॿुधंदा आहिनि की इहो अर्ज़ु कंदा हिकु दफ़ो साईं यारनि अचो इनशाला अलाह जे हुकुम तव्हांजा कहिड़ा ॿार थी विया
2: जी। बिल्कुलु रिकॉर्ड
0: डॉक्टर साहिबु तमामु बहितरीन त ॾिसो माना 80% हिकिड़ो अधे खे रिज़ल्ट मिलियो आहे
3: जी साईं। बिल्कुलु
0: त अहिड़ा जेके मरीज़ आहिनि वीचारा इलाही काफ़ी ॾिसो परेशान रहनि था। हाणे हीअ अधो बि चइबो माना 6 महीना मां निंड ई न ईंदी हुई ज़ाहिर आहे हेॾी हुनखे हेॾी सारी वॾी बीमारी जहिड़े जी ऐं अक्सर अॼु इहो फस्ट टाइम न थियो आहे जो गंबड़ जा पेशंट उतां ला इलाज थी अचनि वरी तव्हां वटि आया हुजनि। अॻिमें बि ईंदड़ आहिनि ॾिसो
3: जी साईं। बिल्कुलु असां इहा ॻाल्हि नोट कराईंदा रहंदा आहियूं ऐं हिकिड़ी ॻाल्हि बि
0: या ॾिसो सखर जे हिन हिकिड़ी वॾी इस्पताल जो नालो खयों
3: जी
0: ॾिसो अक्सर करे जेके मरीज़ उते वञनि था उहो सिंधी में वरी ईअं बि चवंदा आहिनि ऐं उन में न वेंदुसि की वरी कोसगर बि चवंदा आहिनि हुनखे। पर ॾिसो माना अहिड़ा इदारा त आहिनि उते डॉक्टर त वेठा आहिनि पर ॾिसो प्रॉपर हुनजो इलाजु माना कवर थियणु घुरिजे पेशंट बाक़ी शिफ़ा ॾियण वारी अलाह साईं जी ज़ात आहे मुमकिन आहे ईअं बि आहे।
3: बिल्कुलु असां बि इहा ई ॻाल्हि कंदा आहियूं त शिफ़ा ॾियणु रब ताला जो जेको आहे कमु आहे। इहो ज़रूरी न आहे त कहिड़े बि डॉक्टर वटां शिफ़ा मिले ऐं जीअं कॾहिं ॿियो हिकिड़ो घणनि मरीज़नि खे हिकिड़ो गुमान हूंदो आहे त भई तव्हां चयो त 3 महीना असां ट्रीटमेंट कंदासीं ऐं असां ठीकु थी वेंदासीं लेकिन ॾिसो असां

0: यादि रखंदा करियो ऐं जेको आहे सो जेके बे औलाद आहिनि उन्हनि जे लाइ ज़रूरु दुआ कंदा कयो वॾी
1: तमामु घणी
0: महिरबानी
1: महिरबानी डॉक्टर साहिबु, तव्हां असांखे पंहिंजो क़ीमती वक़्तु ॾिनो। वक़्त बि इजाज़त न पियो ॾिए। दोस्तनि खे ॿुधाईंदा हलूं त असांजे स्टूडियो में मौजूदु सीनियर लेक्चरर नवाब शाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज इस्पताल नवाब शाह, प्रोफेसर डॉक्टर मंज़ूर हुसैन महमूद साहिबु, जेको 30 साल तजुर्बो रखंदड़ आहिनि। डॉक्टर साहिब जो ख़ासि महिरबानियूं आहिनि, मोहबतूं आहिनि, पंहिंजो क़ीमती वक़्तु कढी करे असांजे स्टूडियो में ईंदा आहिनि। 0301-9196-51 डॉक्टर साहिब जो नंबर आहे। तव्हां कंहिं बि वक़्तु डॉक्टर साहिब सां राबितो करे सघो था। होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिज़िशियन, अव्हांखे कॾहिं बि मायूस न आहे थियणो। गुर्दे में पथरी आहे, पिते में पथरी आहे, मसाने जी पथरी आहे, गले जा गुदो वधियल आहिनि, पायल्स आहिनि, उन्हनि जो बग़ैर ऑपरेशन जे कामयाबु इलाज कयो वञे थो। संदनि जो सूरु आहे, जोड़नि जो सूरु आहे, गोॾनि जो सूरु आहे, नक, कन, गलो, पुराणो नज़लो आहे, निछूं, मथे जो सूरु, अधु मथे जो सूरु आहे, नज़र जी कमज़ोरी आहे, उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाबु इलाज कयो वञे थो। शुगर आहे, ब्लड प्रेशर, दिलि जा मर्ज़ आहिनि, फालिज, पैरालाइज़, जंहिंखे मिसाल साईं चयो त मूंखे पाण खे पैरालाइज़ आहे, अलाह साईं तव्हांखे शिफ़ा ॾींदो, डॉक्टर साहिबु वटि हलिया अचो, इलाजु मौजूदु आहे। खंघि आहे, टीबी आहे, मादे जो सूरु आहे, मादे जी अल्सर, एच पाइलरी जंहिंजो पॉज़िटिव अचे थो, त्री जो वधणु आहे, जिगर जंहिंजी त्री वधी वञे थी, मादे जो जंहिंखे सूरु आहे, या इन खां जिगर जो बीमारियूं आहिनि, हेपाटाइटिस बी आहे, सी आहे, गुर्दनि जो इन्फेक्शन आहे, चहिरे जो रंग वांजो सावरो थी वियो आहे, चहिरे जी ख़ारिश आहे, फट फुरड़ियूं, ॿारनि में कदु नथो वधे, औरतुनि में वज़न नथो वधे, या जिन औरतुनि जो वज़न वधी वञे थो, औरतुनि ऐं मर्दनि जे पोशीदा बीमारियुनि जो डॉक्टर साहिबु कामयाबु इलाजु कंदा आहिनि। हर अरबा, ख़मीस, जुमो, छंछरु, आचर ऐं सूमर ते डॉक्टर साहिबु जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण पोटरा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेहरापुर में मरीज़नि जो इलाजु कंदा आहिनि। जॾहिं बि असीं इहो ॿुधाईंदासीं त हर जुमो, छंछरु ऐं आचर, यानी हफ़्ते जा 3 ॾींहं चेकअप फीस बिल्कुलु फ्री आहे, बिल्कुलु मुफ़्त आहे। यादि रखंदा, अव्हांखे दवा स्टोर तां वठणी पवंदी। काफ़ी दोस्त चवंदा आहिनि साईं तव्हां फ्री जी ॻाल्हि खे, भई कंपनी डॉक्टर साहिबु जेकी चेकअप फीस आहे उहा बर्दाश्त कंदी आहे, जेकी जर्मन जी फ्रेंचाइज़ आहे, उहे जर्मनी वारा डॉक्टर साहिब जी फीस अव्हांजे तरफ़ां डॉक्टर साहिब खे पेड कंदा आहिनि, जंहिंजो डॉक्टर साहिब जे लाइ फ्री रखी वई आहे। बाक़ी अव्हांखे दवा ज़रूरु वठणी पवंदी, उहा पंहिंजे पैसनि सां वठंदा, इहो अव्हांखे ज़रूरु असीं नोट कराईंदासीं। इन ते अॼोको प्रोग्राम बि जो वक़्तु बि पहुचे थो पंहिंजी पुॼाणी ते, जॾहिं बि दुआउनि जे लाइ हथु खणो, असांखे पंहिंजे दुआउनि में ज़रूरु यादि रखिजो, ख़ुशि हुजो, आबाद हुजो, साथ सलामत ऐं सिंध सलामत।

0: जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: पाकिस्तान जो अमन वारी कोशिशूं रंग ॾेखारण लॻियूं। ईरान अमेरिका ॻाल्हियुनि में अहम अखबराई। ईरान जे मुंचमंद असास बाबति ब्रेक थ्रू थियण जा इम्कान। वफ़ाक़ी घर वज़ीर मोहसिन अक़वी वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ सां मुलाक़ात बाद ईरान रवानो। मोहसिन अक़वी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो अहम पैगाम ईरानी सुप्रीम लीडर ताईं पहुचाईंदो। अरब मीडिया मूजिब मोहसिन अक़वी अहम दौरे ते अॼु तहरान पहुचंदो। अमरीका ऐं ईरान विच में मुंचमंद असासनि जी बहाली लाइ मामले ते अखबराई थी आहे। घर वज़ीर मोहसिन अक़वी ईरान ऐं अमरीका विच में थींदड़ मुआदे ते मुशावरत कंदो। सदर ट्रंप ईरान सां ॻाल्हियुनि जो मुदो 60 ॾींहं रखणु चाहे थो। मुंचमंद असासनि जी बहाली ते बि ॻाल्हियूं थींदियूं।

डोनाल्ड ट्रंप मुंजमद ईरान ये सथा बहाल करे डेला खत्म करे सके तो अमेरिका लाए ईरान सा मुआदे लाए 24 अरब डॉलर का वरी रकम ना है। ईरानी सुप्रीम लीडर जे सलाहकार मोहसिन रज़ाई चो है त अमेरिका के ईरान जा शर्त कबूल करने ते मजबूर के विंदो। अली अकबर विलायती चो है त ईरान जे ताकतवर थण वारो यूरोप जो बवायतो ख्वाब हकीकत में तब्दील थी चुको है। ईरान वट अधिक मजबूत थी रो है ख्याली नक्शा भी तब्दील थी रहा है जटादार अमुल बराबरी वाले निजाम के हथी देनी पवंदी। अमेरिका ए ईरान जहा एक भेरो बीहर एक बे हमला अमेरिकी फौज या ईरान के इलाके ग्रोक बेट कुशेन ते हमला जवाब में ईरान के कोयत बहरी अमेरिकी अड्डन के निशानो बणाइन की दावा। अमेरिकी सैनिका मूजिब अमेरिकी फौज ईरान के 6 मिसाइल के रोको सतो हदफ तई पहुंचने में नाकाम रो 4 ईरानी ड्रोन्स के व्यावनाए हुरमस में तबाह कि वो अमेरिकी पहली भेरे के निशानो बणजन वाली ईरानी दावा दुरुस्त ना है। ईरान के पासदारन इनकलाब चो है त अमेरिकी हमलन के जवाब में कुवैत बहरीन में अमेरिकी अड्डन के निशानो बनाया है। अमेरिकी कार्रवाई जारी रही तो अबनाए हुरमस के मुकम्मल तौर से बंद किया वो जैसे जिम्मेवार अमेरिका होंद। सऊदी अरब कुवैत बहरीन पारा हमलन की मजम्मत हमला खुद मुख्तियारी की भंकड़ी करार हमला रोकण आबनाए हुरमस के खोलण का मुतालबो। बहरीनी परे वजारत चो है मिसाइल से ड्रोन जरिए अमन कायम न तो कर सके। ईरान हमलों को सिलसिलो बंद करे बहरीन के सब्र के कमजोरी न समझो वे बहरीन पैं सलामती खुद मुख्तियारी दफा ए आवाम की सलामती को बिठा न कंदो। कुवैती परे वजारत चो है हमला मुल्की खुद मुख्तियारी खिलाफ आन दुरुस्त करार न तो जी सके। कुवैत दफा तहत कदम खण जो हक रखे तो। सऊदी अरब चो है बहरीन कुवैत हमला आलमी सलामती खतरो है।

हूंदा। हुकूमती वफ़द जी सरबराही नायब वज़ीर आज़म सागार कंदो। वफ़द में नाणे वारो वज़ीर मोहम्मद औरंगज़ेब ऐं ॿिया शामिल हूंदा। वफ़ाक़ी हुकूमत वारा सरकारी मुलाज़मनि जी पघारुनि में 10-15% ताईं वाधि जो गौर। नाणे वारी वज़ारत पघारुनि में वाधि बाबति तजवीज़ूं वज़ीर आज़म खे मोकिले छॾियूं। ज़रियनि जो चवणु आहे त नाणे वारे वज़ीर मोहम्मद औरंगज़ेब वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ सरकारी मुलाज़मनि जी पघारुनि में 10-15% ताईं वाधि करण जी तजवीज़ ॾिनी आहे। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ सरकारी मुलाज़मनि जी पघारुनि में वाधि जो फ़ैसिलो इतिहादनि सां मुशावरत बाद कंदो। कराची में तरक़ियाती कम जारी आहिनि। शहरनि यूनिवर्सिटी रोड सबब ॾुखियनि खे मुंहुं ॾिनो। यूनिवर्सिटी रोड खे जुलाई जे आख़िर ताईं खोलियो वेंदो। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम अहमद चयो आहे त कराची पोर्ट सिटी आहे, मोटर वे जी शुरूआत हितां खां थियणु घुर्जे। वफ़ाक़ सदाई मोटर वे जे मामले ते सिंध खे घटि तरजीह ॾिनी आहे। पूरे मुल्क जी ट्रांसपोर्ट सिंध जे बुनियादी ढांचे खे नुक़सान पहुचाए थी। पूरे मुल्क में मोटर वे ठही विया आहिनि पर सिंध में न आहिनि ठही सघिया।

0: कालम में मौजूद आहिन फौजी भाईरन लाए खुसूसी रियायत हुंदी राबते लाए फौजी अब्दुल करीम 0301-54-31-456 हैं तौकीर अहमद 0306-16-23-793
1: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जोधपुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट आरपीएम जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर राबते जे लाए 03201800003

रेस्टोरेंट बिजनेस में हर सेकंड मैटर, कस्टमर्स क्वालिटी के साथ डिस्काउंट्स भी चाहते हैं। बिजनेस करना आसान नहीं, लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट चाहिए, इसीलिए मेरे पास है बैंकर हबीब का अल हबीब, जिसमें मिले फ्री चेकबुक, डेबिट कार्ड, बैंकर्स चेक, ई स्टेटमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग, अल हबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट्स फैसिलिटी, ATMs एंड कैश डिपॉजिट मशीन्स की इजी एक्सेसिबिलिटी, मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क, अल हबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी, रफ्तार भी। बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का।

0: It's 7:15 p.m.
1: This time check is brought to you by White Ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: माल तैयार है, ट्रक खड़ा है, मजदूर खड़े हैं, बस एक चीज का इंतजार है, पेमेंट। कारोबार चलाने के लिए सिर्फ सामान नहीं, रिलायबल बैंकिंग भी चाहिए होती है। बिजनेस करना आसान नहीं, लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए। इसलिए मेरे पास है बैंक अलबीब का अलबीब करंट अकाउंट, जिसमें मिले फ्री चेकबुक, डेबिट कार्ड, बैंकर्स चेक, ई स्टेटमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग, अलहबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट फैसिलिटी, ATM और कैश डिपॉजिट मशीन की इजी एक्सेसिबिलिटी, मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क। अलहबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी, रफ्तार भी। बैंक अलहबीब, रिश्ता भरोसे का।
3: अपना शहर, अपना घर, मेहराबपुर, और मेहराबपुर की आवाज GAFM 94।

0: शादी का इवेंट और स्टेज आधा तैयार, क्यों? क्योंकि वेंडर्स को चाहिए फौरी पेमेंट। इवेंट प्लानिंग हो या कोई और बिजनेस, पेमेंट रुक जाए तो काम भी रुक जाता है। बिजनेस करना आसान नहीं, लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए। इसलिए मेरे पास है बैंक अलबीब का अलबीब करंट अकाउंट, जिसमें मिले फ्री चेकबुक, डेबिट कार्ड, बैंकर्स चेक, ई स्टेटमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग, अलहबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट फैसिलिटी, ATM और कैश डिपॉजिट मशीन की इजी एक्सेसिबिलिटी, मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क। अलहबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी, रफ्तार भी। बैंक अलहबीब, रिश्ता भरोसे का।
1: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वदन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेरा पर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन MA DHMS सिंध RHMP इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुम्मे छंछर आचर।

0: पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो। राब्ते लाइ 0301-2196-851।
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम बहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम महरापुर नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालाणी रोड महरापुर राब्ते जे लाइ 0302018-00003।
2: अस्सलाम वालेकुम अदा।
3: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
2: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
3: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
2: न अदा?
4: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
2: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
3: हां दा, कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए।
2: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
4: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालाणी रोड मेरापुर। राबते लाए मंसूर अहमद मेमन 0301-380-8347।

0: रेस्टोरेंट बिजनेस में हर सेकंड मैटर करता है। कस्टमर्स क्वालिटी के साथ डिस्काउंट्स भी चाहते हैं। बिजनेस करना आसान नहीं, लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए। इसीलिए मेरे पास है बैंक अल हबीब का अल हबीब करंट प्लस अकाउंट, जिसमें मिले फ्री चेकबुक, डेबिट कार्ड, बैंकर्स चेक, ई स्टेटमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग, अल हबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट्स फैसिलिटी, ATMs एंड कैश डिपॉजिट मशीन्स की इजी एक्सेसिबिलिटी, मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क, अल हबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी, रफ्तार भी। बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
1: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर, और मेहराबपुर की आवाज GAFM 94।

0: मुगल 03004372
1: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर शानदार तालीमी इमारत प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला सरसब्ज बागीचा बेहतरीन फर्नीचर शानदार कंप्यूटर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जा एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिले तहसीन नताइज खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले स्टडी टूर्स अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीमो तरबियत के लिए आज ही मजर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें मजीद रابطے के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन मैनेजिंग डायरेक्टर मजर स्कूल सिस्टम 03000027234 निसार अहमद मेमन प्रिंसिपल मजर स्कूल सिस्टम मेहरापुर 03013865453
2: इरशाद ऑटोस एंड होंडा शोरूम मेहरापुर Honda Motorcycle Jupur Etmat ay ba akhtiyar idaro Elshad Autos ay Honda Showroom Mehrapur 9 Motorcycle G Sale Company aje mukarrar kar rate te dastiyab ahe Service Center Atlas Honda Limited jo Warranty Claim Center Service Area jite Honda Motorcycle ji behtareen service kai vendi ahe Honda Company aja tamam genuine spare parts khususi riayat te maujood Elshad Autos te panji Honda Motorcycle ji karayo training Computerized Japanese Testing Machine ذریعے جہاں میں ملے تھی موٹر سائیکل جی کار کردگی تمام بہتر Fuel Adjustment RPMG Adjustment Computerized Japanese Machine ذریعے کئی ونیے تھی Honda جے Qualified Technician جی زیر نگرانی Irshad Autos Halani Road Mehrapur رابطے دلائے 03201800003

0: कॉलम में मौजूद आहिन फौजी भाइरन लाए खुसूसी रियायत होंदी राबते लाए फौजी अब्दुल करीम 0301-54-31-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-16-23-793।
1: खुशखबरी खुशखबरी हाणे अवां जे पंहिंजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन ऐं नहन एलर्जी कॉस्मेटिक ऐं वचड़ंदड़ बीमारियुनि जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोज़ानो शाम जो असर निमाज़ खां इशा जे निमाज़ ताईं ऐं हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक नज़द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहराबपुर। वधीक राबते जे लाइ 0300-3385-569-0300-3855-69।

0: तो मेरा फैन।
1: व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा, विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फौरी एब्जॉर्ब हो जाएं, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाएं, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। व्हाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमबी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुम्मे छंछर आचर।

जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 मिंटन ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क।

0: शकीर अहमद 0306-1623-793
1: इरशाद ऑटोज आई होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जोपुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोज आई होंडा शोरूम मेहरापुर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद इरशाद ऑटोज ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज्ड जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी इरशाद ऑटोज हालानी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाए 0320180003
2: मेहरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड
3: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तयाब आई
2: हाँ यचो मेहरान आयरन स्टोर नज़द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी
3: राब्ते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 0300320437202
1: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर एटलस होंडा मोटरसाइकिल जोपुर एतमाद आई बा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कयल रेट ते दस्तयाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वञे थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नज़द रेलवे लाइन मेहरापुर राब्ते जे लाइ आसिम हुसैन आराई 0307-359-2120
4: खुशखबरी हाणे अवां जे पंहिंजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन ऐं नहन एलर्जी कॉस्मेटिक ऐं वचड़ंदड़ बीमारियुनि जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोज़ानो शाम जो असर निमाज़ खां इशा जे निमाज़ ताईं ऐं हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक नज़द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर वधीक राब्ते जे लाइ 0385-569-3855-69
5: अस्सलाम वालेकुम अदा
6: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
5: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
6: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
5: न अदा
2: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो मो पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे
5: मुझे दुकान जी बे डरंदी
6: हां दा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए
5: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
2: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज़द गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर
6: राब्ते लाए हाकिम अली जिसकानी
7: 0301-399-2836

0: This time check is brought to you by
1: White-ish Beauty Cream Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज GAFM 94

0: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीट्स और जदीद माइक्रो बीट्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में। डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
1: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेरा पर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम बी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर।

0: वठणी पवंदी माहिर अमराज नक कन गलो पुराणो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमजोरी कन जो वहण कन जो सूर घट ॿुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी ख़ारिश फट फुरड़ियूं ॿारनि में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-9196-801।
1: खुशखबरी खुशखबरी हाणे अव्हां जे पंहिंजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन ऐं नहनि एलर्जी कॉस्मेटिक ऐं वचड़ंदड़ बीमारियुनि जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोज़ानो शाम जो असुर निमाज़ खां इशा जे निमाज़ ताईं ऐं हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक नज़ रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर। वधीक राब्ते जे लाइ 0303-85-569।
2: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़ररु कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज्ड जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाइ 0320180003।

तव्हां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लॻे थी। हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो। पेश आहे वाइट एश ब्यूटी क्रीम, अव्हां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अव्हां खे रेडियंट लुक। रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट। हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एश ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गीअ सां गॾु। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान। जिंदगी गुज़ारियो एतमाद सां, कुरान खे समझी ॿुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोज़ानो सुबुह 9:05 ते सिर्फ़ GFM 88 नेटवर्क।

0: पाकिस्तान जो अमन वारी कोशिशूं रंग ॾेखारण लॻियूं। ईरान अमरीका ॻाल्हियुनि में अहम अकबराई, ईरान जे मुंजमंद असासन बाबति ब्रेक थ्रू थियण जा इम्कान। वफ़ाक़ी घर वज़ीर मोहसिन नक़वी वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ सां मुलाक़ात बाद तहरान फाथल। मोहसिन नक़वी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो अहम पैगाम ईरानी सुप्रीम लीडर ताईं पहुचाईंदो। अरब मीडिया मूजिबि मोहसिन नक़वी अहम दौरे ते तहरान पहुतो आहे। अमरीका ऐं ईरान विच में मुंजमंद असासन जी बहाली वारे मामले ते अकबराई थी आहे। घर वज़ीर मोहसिन नक़वी ईरान ऐं अमरीका विच में थींदड़ माहिदे ते मुशावरत कंदो। सदर ट्रंप ईरान सां ॻाल्हियुनि जो मुदो 60 ॾींहं रखणु चाहे थो। मुंजमंद असासन जी बहाली ते बि ॻाल्हियूं थींदियूं।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज। आप सुन रहे थे
2: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है। सुनते रहो GAFM 94।